0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 5:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान कार्यक्रम।
1: गोबर और गोमूत्र पशुधन का उत्सर्जित पदार्थ है। प्रायः उत्सर्जित पदार्थ त्याज्य होता है, लेकिन गोधन का उत्सर्जित पदार्थ त्याज्य नहीं ग्राह्य है और अनादि काल से ग्राह्य है। आज साहित्य में गोबर में लक्ष्मी का और मूत्र में गंगा का निवास है। यह श्रद्धा बस नहीं बल्कि इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर प्रयोग द्वारा प्रमाणित कर कहा गया है। गोबर में कार्बोलिक एसिड एवं मैग्नीज होता है, जिसके कारण यह कीटाणुनाशक, जीवाणुनाशक, व्याधिनाशक है। यह दुर्गंध नाशक, शोषक और पोषक दोनों है। जो दुर्गंध किसी साबुन से समाप्त नहीं होता वह गोबर के प्रयोग से समाप्त हो जाता है। यह मुलायम, जल युक्त, रवादार, खाए गए भोज्य पदार्थ का गुण लिए हुए विभिन्न रंग का होता है। हम आपको शाकाहारी गोधन से प्राप्त गोबर के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हमारा देश पर प्रधान, तीर्थ प्रधान, आध्यात्मिक देश है। हम लोगों ने सदा से गोधन को अपना अभिन्न अंश और पवित्र माना है। पवित्रता की हद यह है कि कोई भी धार्मिक उत्सव में इसके गोबर से भूमि को लीप दी जाती है। पूजा पाठ में पंचगव्य का व्यवहार किया जाता है। पंचगव्य एक अति लाभदायक औषधि है, जिसका प्रयोग विभिन्न तरह के चर्म रोग, जैसे आग से जलना, चर्म रोग में, नक्सीर में, छाले में, नासूर में कितना गिनाया जाए प्रयोग होता है, सब ठीक हो जाता है इससे। व्यवहारिक रूप में जो अंदाज किया जाता है कि गोवंश जितना भोजन और जल पीता है उसका चौथाई अंश अवशिष्ट के रूप में हमें मिलता है। यह दोनों पदार्थ धरती माता का पौष्टिक भोजन है। गोबर के खाद यानी कंपोस्ट में से जिसे बनाने की कोई जटिल विधि नहीं है, लेकिन धरती की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए इससे बढ़िया और कोई खाद ही नहीं है। रासायनिक खाद खेतों के लिए दवाई है, लेकिन गोबर का खाद खेतों के लिए भोजन है और सरस भोजन है। लेकिन वर्तमान में इसकी मात्रा सिर्फ 9.6% है, जिससे खेत भूखी रह जाती है। भूखी धरती माता कितना अन्न दे सकती है? रासायनिक उर्वरक तो फसल को उत्तेजना प्रदान करता है। रासायनिक खाद का प्रयोग तो मनुष्य को शराब पिलाने के समान है, या भूमि को मरुभूमि बना देती है। रासायनिक उर्वरक से प्राप्त अन्न, फल, साग सब्जी स्वाद रहित, विषैला और व्याधि युक्त होता है। अतः अभी का सौंभिक मानव कोष का स्वास्थ्य व्याधों का घर हो गया है। गैस की बीमारी, जोड़ों का दर्द, गठिया बात,

0: यकृत की बीमारी कहाँ तक गिनाया जाए। रोग निरोधक क्षमता घट रहा है और दवाई डॉक्टर, दवाई की दुकान, निजी और सरकारी अस्पताल का बाढ़ सा लग गया है। सर्जन की छुरी रोज तेज होती है, एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। कबीर साहब की यह वाणी, तंधर सुखिया कौन ने देखा, जो देखा सो दुखिया, पूर्ण रूप से चरितार्थ हो रही है। इस भयंकर विभीषिका से कैसे बचा जाए, यह एक जटिल प्रश्न है। भोज्य पदार्थ का स्वाद ही बदल गया है और स्वाद पाने के लिए लोग मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मांसाहार के लिए मसाला बहुत जरूरी है, अतः अधिक मसाले का भोज्य पदार्थ से प्रयोग से विष के समान है। व्यक्ति अपने से ही अपना मौत का नारकीय जीवन का कुआं खोद रहा है। यह मिलावट का समय है, बिना मिलावट के कुछ होता नहीं है। हम सबों की भलाई इसी में है कि हम अपनी पुरानी पद्धति पर आवें। हमारा सर्वांगीण विकास खेती पर निर्भर है और खेती गोबर पर निर्भर है, क्योंकि खेतों की उर्वरक शक्ति और इसमें आर्द्रता या नमी गोबर पर निर्भर करती है। गोबर अपनी आर्द्रता के कारण धरती को सूखने से बचाती है। थोड़ी सी वर्षा होने पर भरपूर आर्द्र हो जाता है। भारत की भूमि, कृषि की भूमि रहती है। अभी हमारे हिंदुस्तान में 36 करोड़ एकड़ भूमि है जहाँ फसल होती है। हमारे पास पुरानी पद्धति से बना हुआ कंपोस्ट खाद बहुत कम है और यह सिर्फ 28 करोड़ टन गोबर से बनता है, जबकि 36 करोड़ एकड़ भूमि के लिए 40 करोड़ टन गोबर चाहिए।
1: अभी आप खेत खलिहान कार्यक्रम के अंतर्गत सुन रहे थे नरसिंह पंडित से वार्ता, विषय था गोबर का खाद। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार बुलेटिन सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेयर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेयर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन। आज चिंतन मनन में चिंतन गुरुमुख और मनसुख पर। वाचन स्वर सौरभ कुमार का है।
3: गुरुमुख और मनसुख बहुत पुरानी बात है। एक दिन गुरु अर्जुन देव के दरबार में कुला, भुला और भागीरथ नाम के तीन शिष्य गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज ने आने का कारण पूछा तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करते हुए बताया कि हमें मौत से बहुत डर लगता है, आप हमें जन्म मरण के दुख से बचाएं। इतना सुनने के पश्चात गुरु महाराज ने कहा, आप गुरुमुख बनकर मन सुखों वाले कर्म करना छोड़ दें। तभी कुला, भुला और भागीरथ ने कहा, महाराज हमें यह समझाइए कि गुरुमुख और मनसुख के लक्षण क्या हैं, इनके अंतर से भी हमें अवगत कराएं। इस पर गुरु महाराज ने कहा, गुरुमुख गुरु के विचारों को याद रखना, अपने ऊपर नेकी करने वालों की नेकी को याद रखना, सबकी भलाई के बारे में सोचना एवं सबकी भलाई चाहना, किसी के काम में विघ्न या बाधा नहीं डालना, खोटे या पाप कर्मों का त्याग करना, नेक कर्मों को ग्रहण करना, गुरु के उपदेशों को ग्रहण करके अपने आत्मस्वरूप को जानने वाला और अनेकों में एक को देखने वाला ही गुरुमुख होता है। जबकि मनसुख सभी से ईर्ष्या करना, किसी का भला होता देख दुखी होना, कभी किसी का भला नहीं सोचना, जो नेकी करे उसकी बुराई करना, सबके बुरे में अपना भला समझना, उपजीविका के लिए झूठ बोलना, अपनी इच्छा से काम करना, पुण्य और स्नान से परहेज करना, कथा कीर्तन में ध्यान नहीं लगाना, गुरु के उपदेशों को ध्यान से नहीं सुनना। गुरु महाराज के इन वचनों को सुनकर तीनों को संतुष्टि हुई और उन्होंने गुरुमुख के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। वर्तमान भौतिकवादी प्रतिस्पर्धात्मक समय में जीने की परिस्थितियां जटिल बनती जा रही हैं। प्रतिस्पर्धा में पीछे छूटने का भय और अधिक से अधिक संसाधन संग्रह करने की लालसा व्यक्ति को भागदौड़ और आपाधापी भरे माहौल में जीने को मजबूर कर रही है, जिस कारण व्यक्ति तनाव एवं अवसाद के भंवर में फंसा है। चित्त की व्याकुलता ही तनाव उत्पन्न करती है। आस्था के अभाव में व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, जबकि आस्था ही विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करने की हिम्मत देती है। महत्वाकांक्षाएं पूरा ना होने से व्यक्ति अवसादग्रस्त हो जाता है। अच्छे जीवन के विकास के लिए सही मार्गदर्शन का होना आवश्यक है और यह गुरु की सानिध्य में ही संभव है। गुरु की प्रेरणा से ही आत्मा चैतन्यमय बनी रहती है। बिना गुरु के आत्मदर्शन एवं परमात्मा का दर्शन संभव नहीं है। अतः वर्तमान परिदृश्य में व्यक्ति सुख एवं शांति के परमानंद को प्राप्त करना चाहता है तो उसे गुरुमुख के पथ पर अग्रसर होना होगा। मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखकर ही पूर्ण मनोयोग से ही हम परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं।
2: अभी आप चिंतन मनन में सुन रहे थे चिंतन मनसुख और गुरुमुख पर। वाचन स्वर सौरभ कुमार का था। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:10 हो रहे हैं। निवेदित है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले माँ भारती की वंदना, समूह स्वर में ये देश वंदना।

अभी आपने अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज़ों में सुना माँ दुर्गा की ये वंदना। एक बार फिर से अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज़ में सुनते हैं माँ की एक और वंदना।

माँ तभी आती है जब बाल अनवरत माँ को पुकारता रहता है, माँ से जब हमारा स्नेह अति हो जाता है, जब हमें ऐसा लगता है कि माँ के बिना मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब हर काम उनकी कृपा से ही होगा, तभी वो पुकार, वो करुणता आती है, वो कातरता आती है। जैसे हम देखें, बालक जो छोटे होते हैं, 1 साल 2 साल के, इतनी छोटी आयु के बच्चे जिनका माँ के सिवा कोई सहारा है नहीं संसार में, सब कुछ माँ पर ही निर्भर है। माँ माँ पुकारता रहता है, माँ कुछ भी करे, कहीं भी किसी भी काम में कितने भी व्यस्त हो, वो आ ही जाती है, क्योंकि उस करुण पुकार को माँ बहुत देर तक सुनती हुई नहीं रह सकती। इसी प्रकार जब हमें परमात्मा और जगन्न माता का प्रेम हमारे अंदर भर जाता है, जब पुकार हमारे हृदय से उनके लिए निकलती है, तो फिर वो हमारे लिए आ ही जाएंगी। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। उनका नाम लेकर हम पुकारते रहें, पुकारते रहें, पुकारते रहें, कभी न कभी आ ही जाएंगे। एक बहुत अच्छा भजन है, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।

0: इस भजन के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज़ में कुछ भजन सुने। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:35 हो रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है योग और नेचुरोपैथी से हृदय रोगियों को लाभ। वार्ताकार हैं सुरेश कुमार।
1: सभी जानते ही हैं कि हृदय रोग असाध्य रोग है। जब कोई डॉक्टर या जांच से हृदय रोग का पता चलता है तो मनुष्य का मन भय, चिंता, शंका वो परेशानी में पड़ जाता है। कभी कभी रोगी को तो बातचीत करते करते भी हार्ट फेल हो जाता है। इसी कारण हृदय रोग में हमेशा धीरज, विश्वास व आत्मबल की कमी पाई जाती है। कितनी ही अच्छी दवाई या चिकित्सा किया जाए, यदि इस रोग में आत्मबल या मनोबल की कमी रोग पर काबू पाना मुश्किल होता है। मानसिक चिंता, तनाव या किसी विशेष कारण परेशानी पर बार बार सोचना इस रोग का मुख्य कारण होता है। हृदय रोग का कारण श्रम कम करना, कब्ज, अपच, भोजन का असंतुलन, समय पर न सोना, समय पर नहीं जगना भी अन्य कारणों में से एक है। इसके लिए योग पहला कदम शिथिलीकरण अभ्यास, ध्यान एवं योग निद्रा रामबाण होता है। पवन मुक्तासन भाग 1, 2, 3 आसन अभ्यास के बाद शवासन, मकरासन आदि आराम का आसन करें। ब्रजासन, शशांकासन, नारी शोधन, उज्जायी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करते समय धीरे धीरे करें एवं श्वास रोके नहीं। श्वास जितनी शांत या ध्वनि रहित तथा प्राकृतिक बनी रहे उतना अच्छा है। कपालभाति धीरे धीरे करना हितकर है। पेसमेकर लगाने के बाद कपालभाति नहीं करना चाहिए। ध्यान, मेडिटेशन एवं योग निद्रा का अभ्यास 10-10 मिनट कम से कम करना चाहिए। प्राकृतिक उपचार, जल नेति क्रिया बराबर करें। 1 चम्मच शुद्ध शहद खाने से हृदय की शक्ति मिलती है। एलोवेरा एवं आंवला का

0: रस पिए, कद्दूकस से रस निकालकर सुबह पिए। भोजन का चार्ट, सुबह 6 से 7 बजे नींबू पानी पिए, 9 बजे इलायची अदरक काली मिर्च से उबालकर थोड़ा पानी दूध लें, इसके साथ कोई फल लें, दूध एवं खजूर भी उबालकर ले सकते हैं। 10 बजे सुबह कोई फल, संतरा, मौसमी, अंगूर या हरी सब्जी का सूप लें। 12 से 1 बजे तक भोजन में 4 घंटा पहले गूथे आटे की 2 चपाती, सलाद, उबली सब्जी तथा बिना खट्टा वाली दही आधा पेट खाएं। 5 बजे शाम कोई एक फल या 1 कप दूध लें। 5 बजे शाम केवल फल लें। 8 बजे रात्रि हरी सब्जी का सूप, हल्का भुना चना लें। शाकाहारी भोजन ही करें। अपथ्य, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशीली पेय, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, मांसाहारी भोजन, तली भुनी चीज़ें, बासी भोजन, वसायुक्त पदार्थ, घी, तेल, मक्खन कम से कम खाएं। वसा एवं प्रोटीन युक्त भोजन न केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है बल्कि धमनियों की भित्ति में जमे चर्बी या वसात्मक जमाव को पुनः द्रवीभूत कर अच्छा बनाता है। मशरूम सब्जी भी खाएं। सावधानी, खाने के बाद व्यायाम एवं सैर नहीं करें। दूसरा, एक समय में वसा युक्त भोजन करने के बजाय थोड़ा थोड़ा अंतराल में कुछ खाएं। खांसी रहने पर ठंडा पानी, आइसक्रीम, दही, केला, टमाटर नहीं खाएं। तली हुई भोजन नहीं करें। सुबह 5 से 7 योग करें, पैदल 1 किलोमीटर तक चलें। शरीर को शिथिल रखें, काम के साथ मनोरंजन भी करें। तनाव एवं क्रोध से बचें, पूरी नींद सोएं, चिंता नहीं करें। फेफड़े एवं गुर्दे को सक्रिय रखें। खुलकर दिन में 3 बार हंसें, इससे हृदय शक्तिशाली होता है। संगीत धुन, गीत, भजन, कीर्तन में भी रहें, सत्संग में भी जाएं। योग निद्रा 30 मिनट तक आँख बंद कर रुचिकर संगीत आनंद लें। ज्यादा भारी सामान नहीं उठावें। शिलाजीत सत लें। अमृत क्वाथ एवं अर्जुन छाल का काढ़ा दिन में 2 बार लें।
1: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुन रहे थे वार्ता योग और नेचुरोपैथी से हृदय रोगियों को लाभ। वार्ताकार थे सुरेश कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:40 हो रहे हैं। निवेदित है श्री रामचरित मानस गान। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरण और बी मिताली सिंह का है। संगीत सतीश भाटिया का।
2: एपिसोड नंबर 255

रावण के साथ श्रीराम की कुटी के समीप पहुंचकर मारीच स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लेता है। उस अत्यंत विचित्र और सुंदर हिरण को देख सीता जी के मन में उसकी खाल प्राप्त करने की इच्छा बलवती हो उठती है। उनके आग्रह करने पर श्रीराम उनकी रखवाली का दायित्व लक्ष्मण को सौंपकर स्वर्ण मृग के आखेट को निकल पड़ते हैं। जिन प्रभु की महिमा का बखान करने में वेद भी असमर्थ हैं, वही एक कपट मृग के पीछे भाग रहे हैं। भागता छिपता मृग रूपी मारीच उन्हें बहुत दूर ले जाता है। अंत में श्रीराम तीक्ष्ण वाण से मारीच की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। मन ही मन श्रीराम का स्मरण करते हुए मारीच घोर गर्जन के साथ लक्ष्मण को पुकारता है। विपत्ति सूचक पुकार सुनकर सीता जी के मन में आशंका उत्पन्न होती है। वह लक्ष्मण की अनुनय विनय की अवहेलना करके उन्हें बड़े भाई की सुधि लेने के लिए जाने को बाध्य कर देती है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। मुख्य गायन स्वर ए हरिहरण और मिताली बी सिंह का था। संगीत सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 6:50 हो चुके हैं। कार्यक्रम विवरण, इसके अंतर्गत आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके समयों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी प्रातः 7 आप सुनते हैं प्रत्येक दिन अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। आज इसके अंतर्गत रसंग में कलाकार होंगे गांधी कुमार मिस्त्री। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम के अंतर्गत ही 7:20 पर आज आप सुनेंगे कथा सागर। इसके अंतर्गत कहानी प्रसारित होगी प्रतिस्पर्धा की करुणा, प्रतिस्पर्धा करुणा की, ये शीर्षक कहानी का है। कहानीकार होंगे उमाकांत भारती। इसके अलावा गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम में रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं, मौसम की सूचनाएं, अखबारों की सुर्खियां, आज का इतिहास भी होगा और फिल्मी नगमों की सौगातें भी होगी। सब कुछ होगा प्रातः 7:00 to 7:55 के बीच। 9:06 आप सुनते हैं नगमे नए पुराने कार्यक्रम। 9:30 पर आज आप सुगम संगीत कार्यक्रम में चंद्रशेखर को सुनेंगे। 3:10 फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम प्रसारित होगा। 10:30 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर आभा पूर्वे का लिखा हुआ नाटक।

खोया हुआ खत प्रस्तुतकर्ता होंगे शेखर कैमूरी। दिन के 11 बजे नई फिल्मों से कार्यक्रम होगा। 11:30 पर फिल्मी नगमों का एक और कार्यक्रम होगा गुलदस्ता।

दोपहर बाद 3 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में कलाकार होंगे चंदन दास। 3:20 पर देशभक्ति गीत समोसर में प्रसारित होगा। 3:25 से संध्या 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। संध्या 5 बजे आप सुनते हैं युवावाणी कार्यक्रम। 5:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा। संध्या 6 बजे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम प्रसारित होगा। संध्या 7:10 पर लोकगीत कार्यक्रम में आज कलाकार होंगी आशा देवी। 7:52 पर आज आप सुनेंगे सुरलहरी में उदय नारायण राय को। रात्रि 8 बजे फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा रजनीकंधा। रात्रि 9:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, क्षमा करें, रात्रि 9:30 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम होगा। और रात्रि 10 बजे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज आप शाहिद परवेज का सितार वादन सुनेंगे राग झिंझोटी में। 10:30 पर फिल्मी नगमों का कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। अभी आप कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शीर्ष मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा और उसके प्रसारण समयों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला और आज इस कार्यक्रम को लेकर आया हूँ मैं, आपका दोस्त रविंद्र। श्रोता मित्रों, मौसम कल से बदला है हमारे आसपास क्षेत्रों में। कल संध्या काल कुछ घटाएं छाईं, थोड़ी हवाएं चली और फिर लू और बहुत अधिक उमस वाली गर्मी से थोड़ी राहत मिली। अब ऐसा होने ही वाला है क्योंकि अब तो मानसून सक्रिय होने का समय आ गया है, तो वर्षा तो हो ही रही थी, बीच में कुछ दिन रुकी और फिर बारिश होने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अनुमान कह रहा है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग के एकांश से ये सूचना हमें प्राप्त हुई है। इसके अनुसार मौसम के लिए जो पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है, इसमें भागलपुर जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में कहीं एक दो जगह हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और तापमान 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्षिक आर्द्रता प्रातः बेला में 70 से 80 प्रतिशत तक और दोपहर में 24 से 30 प्रतिशत तक रहने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं किसी दिन इन 5 दिनों के अंदर, और छिटपुट बादल आकाश में छाए रहेंगे। कहीं कहीं वर्षा की संभावना भी बनेगी और मौसम कुछ अनुकूल बनेगा। ये मौसम सूचनाएं हमने साझा किया ग्रामीण कृषि मौसम सेवा विभाग सबौर से हमें प्राप्त हुई थी ये सूचना। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त हुआ है 7:02:40। आज 18 जून है। श्रोता मित्रों, आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। किस परिप्रेक्ष्य में? अगर हम इस पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि 18 जून भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है, और ख़ासकर तब जब किसी नारी ने तलवार थामकर अंग्रेजी हुकूमत के बंदूकों के सामने उसके नाकों चने चबा दिए। यहाँ आज रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में एक मराठी परिवार में हुआ था। हालांकि उनके जन्म पर सही जन्मतिथि के लिए आज भी संशय बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नवंबर 1828 में उनका जन्म हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मणिकर्णिका रखा। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट तो आप सबने जाना ही होगा, तो वाराणसी में पैदा होने के कारण उनके माँ ने उनका नाम रखा मणिकर्णिका। लोग उन्हें प्यार से ही मनु बुलाने लगे। सिर्फ 4 साल की आयु में मणिकर्णिका की माँ का निधन हो गया। अपने पिता के साथ मणिकर्णिका पेशवा आ गई। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाला। यहाँ उन्हें लोग प्यार से छबीली बुलाते थे। जब रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई तो उन्हें युद्ध कला और तलवारबाजी, घुड़सवारी जैसे युद्ध क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह के असामान्य पालन पोषण के कारण वह अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तुलना में अधिक स्वतंत्र थीं। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवलकर के साथ हुआ। यहाँ से उनका नाम बदलकर मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई हो गया। कुछ वर्षों बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। हालांकि केवल 4 साल की आयु में उनके पुत्र का निधन हो गया। इसके बाद राजा ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया। हालांकि इसके कुछ दिनों में ही राजा की भी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने अवसर देखकर झांसी पर हमला बोल दिया। झांसी ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और इसमें अनेक अंग्रेज अफसरों को मौके खाने पड़ी और कई अंग्रेज मारे गए। 17 जून को रानी लक्ष्मीबाई का
अंतिम युद्ध शुरू हुआ। युद्ध जब चरम पर पहुंचा तब रानी दत्तक पुत्र को पीठ पर बांध घोड़े की लगाम मुंह में दबाए दुश्मनों से निर्भीकता पूर्वक युद्ध करने लगी। अंग्रेजों ने युद्ध करते हुए वह सोन रेखा नाले की ओर बढ़ चली अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, लेकिन दुर्भाग्यवश रानी का घोड़ा इस नाले को पार नहीं कर सका। उसी समय अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया। इसी दौरान रानी का एक सैनिक उनके पास आकर उन्हें सुरक्षित मंदिर में पहुंचाने के लिए आया, जहां पुजारी से रानी ने कहा, मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना और अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। इतना कहते हुए रानी ने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद वहां मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानों में लकड़ियां एकत्रित कर रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार किया। ये कहानी है भारत की उस पुत्री की, जिन्होंने पुत्री होते हुए भी पुत्र के समान या यूं कहें उससे कहीं बढ़कर ऐसा कार्य किया कि जब तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास रहेगा रानी लक्ष्मीबाई का नाम रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने स्वतंत्र भारत की शान के लिए अपने जान न्योछावर कर दिए। कभी नहीं सोचा उन्होंने कि मैं एक स्त्री हूँ, हमारा योगदान इस युद्ध में क्या हो सकता है। उन्होंने जो किया वह अविस्मरणीय है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है और अनुकरणीय है। हम भारतवासी अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए जब तैयार हों तभी हमारा देश सर्वरूप से विश्वगुरु बनेगा, क्योंकि देश प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिनमें देश प्रेम नहीं, जिनमें मातृ प्रेम नहीं, पितृ प्रेम नहीं, जिनमें अपने परंपरा संस्कृति सभ्यताओं से प्रेम नहीं, जिनमें मानवता से प्रेम नहीं, वह मनुष्य नहीं हो सकता है। आज रानी लक्ष्मीबाई के पुण्यतिथि

0: उपलब्धि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के उस पार रेल आवागमन संबंधित सूचनाएं और रसरंग, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। समय हुआ है 7:10। रसरंग में आइए सुनते हैं गांधी कुमार मिस्त्री से सूरदास की ये भक्ति रचना।
6: या

कौन सुने यह बात हमारी। अभी आपने सुना सूरदास की भक्ति रचना कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में रसरंग में। अभी आप गांधी कुमार मिस्त्री को सुन रहे हैं। समय हुआ है 7:14 और 50 सेकेंड। रेल आवागमन संबंधी सूचनाएं हम आपसे साझा करना चाहते हैं। ये सूचना हमें भागलपुर रेलवे स्टेशन की पूछताछ कक्ष से प्राप्त हुई है। इसके अनुसार कुछ रेलगाड़ियों की समय सारणी है इस प्रकार है। गाड़ी संख्या 1 5 5 5 3 भागलपुर से चलकर जयनगर जाती है प्रत्येक दिन 7:50 पर प्रातः वेला में अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1 3 0 1 6 जमालपुर से चलकर हावड़ा जाती है। जमालपुर कविगुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1 2 3 6 8 आनंद विहार से चलकर भागलपुर आती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रातः 8:15 पर अपने नियत समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। गाड़ी संख्या 1 5 6 5 8 ब्रह्मपुत्र मेल भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने का इस रेलगाड़ी का सही समय है प्रातः 8:05, लेकिन आज ये रेलगाड़ी अपने नियत समय से लगभग 3 घंटे से अधिक विलंब से भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने की सूचना है। यानी दोपहर 11 बजे के आसपास ये रेलगाड़ी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या है 5 3 4 1 6 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर प्रातः 8:37 पर भागलपुर रेलवे स्टेशन से साहिबगंज के लिए रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1 3 4 0 3 राजेश से चलकर भागलपुर आती है। वनांचल एक्सप्रेस प्रत्येक दिन प्रातः 9 बजे आज भी ये रेलगाड़ी अपने सही समय से आएगी। गाड़ी संख्या 6 3 4 3 1 साहिबगंज से चलकर जमालपुर जाती है। MEMU 9:15 पर अपने सही समय से भागलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1 3 4 0 9 मालदा से चलकर क्यूल जाती है। इंटरसिटी एक्सप्रेस भागलपुर रेलवे स्टेशन से ये रेलगाड़ी 9:35 पर रवाना होगी। गाड़ी संख्या 1 3 2 4 1 बांका से चलकर राजेंद्र नगर जाती है। इंटरसिटी भागलपुर रेलवे स्टेशन से यह रेलगाड़ी रवाना होती है 10:15 पर। आज भी ये रेलगाड़ी अपने सही समय से चलेगी। और गाड़ी संख्या 1 2 3 6 7 भागलपुर से चलकर आनंद विहार जाती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस दोपहर 11:55 पर यह रेलगाड़ी रवाना होगी। अभी आप रेल आवागमन संबंधित सूचनाएँ प्राप्त कर रहे थे। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला रसरंग में। गांधी कुमार मिस्त्री से आइए सुनते हैं तुलसीदास की ये भक्ति रचना।

तू दयाल दीन है, तू दानी हम भिखारी। अभी आपने गांधी कुमार मिस्त्री से रसरंग सेगमेंट के आखिर में तुलसीदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। रसरंग के बाद अब बारी है कथा सागर की। 7:20 हुए हैं। कथा सागर में आज उमाकांत भारती से सुनते हैं उनकी स्वरचित कहानी। कहानी का शीर्षक है प्रतिस्पर्धा करुणा की।

दूसरे कमरे में बिस्तर पर पड़ी ज्योति की पीड़क आवाज टनटन कानों में पड़ रही है। यह यमदूत के पच्चाप हैं। कुछ नहीं कर पाने का दर्द आंखों में उतर गया है। तन मन अचेत है। कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे वे कोई मूर्ति हों। नाना जी, क्या मम्मी मर जाएंगी? श्रद्धा ने निशान से पूछा है। उसे भरोसा है उसके नाना उसकी मम्मी को बचा लेंगे, उसे अनाथ नहीं होने देंगे। बचपन से लेकर अभी तक उसे सिर्फ नाना की छत्र छाया मिली है। पिता तो उसके जन्म के एक महीने के अंदर ही गुजर गए थे। नाना जी, कोई जवाब नहीं। ऐसा पहली बार हुआ था? बैठे बैठे सो गए क्या? फिर आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आप बोलते क्यों नहीं? इस बार शब्द के साथ साथ उसके हाथ भी बोले। श्रद्धा ने उन्हें झकझोरा। बंद पलकें खुली, कई बूंद आंसू टपक पड़े जो अभी तक पलकों में कैद थे। नाना को रोते हुए उसने कभी नहीं देखा था। सुना था छतनार बटवृक्ष रोते नहीं। फिर, नाना जी ये आंसू क्यों? अपने गम को चुपचाप पी रहे थे लेकिन आंसू ने चुगली कर दी थी। ज्योति के किडनी प्रत्यारोपण का मामला खटाई में पड़ चुका है। डॉक्टर ने कहा था 1 करोड़ में एक किडनी मिल जाएगी लेकिन विक्रेता नहीं मिला, पैसा हार गया था। डायलिसिस पर ज्योति की सांसें चल रही हैं लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। अब अधिक से अधिक 1 सप्ताह और, डॉक्टर ने कहा था बताते हुए निशांत के आंसुओं का बांध टूट गया। आज 5वां दिन है। उसके बाद मम्मी भी पापा के पास चली जाएंगी। श्रद्धा व्याकुल होकर बोली, मैं किडनी दूंगी। माँ के लिए बेटी के बलिदान का संकल्प था। कमरे में शब्द बम का जैसे विस्फोट हुआ था। धमक की गूंज से ज्योति की अर्ध चेतना हलक फाड़ कर चिल्लाई, नहीं नहीं, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी किडनी नहीं लूंगी। ज्योति की चिल्लाहट रुदन में बदल गई थी। पहले श्रद्धा भागती हुई मम्मी के कमरे में पहुंची और उसके पीछे पीछे निशांत। डरी सहमी ज्योति ने बेटी को सीने से लगा लिया। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी किडनी क्यों नहीं लेंगी? चुप, एक बार कह दिया ना, नहीं लूंगी तो नहीं लूंगी। बीमारी की वजह से बोलने में भी उसे तकलीफ हो रही थी, सांसें फूल रही थी, लेकिन क्यों? एक किडनी से कैसे जिएगी तुम? तुम्हें भी कुछ हो गया तो? माँ बेटी अपनी अपनी जिद पर अड़ गए थे। मैं अपनी किडनी दूंगा। तब निशांत ने शब्द का ढेला फेंका ताकि झगड़ा शांत हो जाए। जबकि 80 पार के निशांत की किडनी अपने शरीर का भार ही नहीं उठा पा रही थी। डॉक्टर ने किडनी दान के उसके प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। बाबूजी, मैं दीदी को मरने नहीं दूंगा। सुपरिचित आवाज से निशांत की आंखों में थोड़ी हलचल हुई। यह गुलाब मांझी की आवाज़ थी। मामा, श्रद्धा उससे लिपट गई, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन कैसे? मैं अपनी किडनी दूंगा। यह विदेश से हनुमान बनकर आया है। बिना किसी पूर्व सूचना के उसका आना निशांत को आश्चर्य में डाल दिया था। लेकिन सुखद अनुभूति भी हुई उन्हें। इस कठिन वक्त में उसका यहाँ आना भरोसे का नाम था। अकेले आए हो? मेरी पुत्र बधू कहाँ है? होटल में ठहरी है। बड़े बाप की बेटी है ना, वे वहीं रहेगी, फ्रेश होकर आएगी यहाँ। ज्योति के ब्लड ग्रुप से गुलाब का ब्लड मैच हो गया है। किडनी प्रत्यारोपण की सारी शर्तों को पूरा कर रहा था वह। डॉक्टर ने हरी झंडी दी लेकिन निशांत को यह स्वीकार नहीं हुआ। अगर गुलाब उनका खुद का बेटा होता तब बात कुछ और थी। 25 साल पहले का दृश्य उनकी आंखों में उतर गया। दातुन, नीम का दातुन, घर के बाहर से आवाज़ आ रही थी। नीम के दातुन से ही वे दांत साफ करते थे। आवाज़ सुनकर वे बाहर आए थे। वह एक आदिवासी महिला थी। उसके साथ उसका 7-8 साल का बेटा था। दोनों के सर पर दातुन की गठरी थी। नीम, सखुआ और बबूल की दातुन बेचती थी वह। एक मुट्ठा दातुन 10 रुपये में उसे मिल गया। बाबू, पानी, चिलचिलाती धूप,
पसीने से भींगे हुए दोनों, ठंडा पानी लाकर उन्होंने दिया। दोनों को खाली पेट पानी पीते हुए देखकर उनके मन में करुणा भाव जगा था। दो रोटी और गुड़ की भेली लाकर दी। माँ ने बच्चे को खिला दिया और खुद खाली पानी पीकर ही संतुष्ट हो गई। फिर महिला ने दो मुट्ठी और दातुन उन्हें देना चाहा। इसका पैसा नहीं, मुफ्त नहीं लेने का भाव था, रोटी के बदले दातुन, जिसे वे स्वीकार नहीं कर पाए थे। आती रहना, पहाड़ पर रहती थी वह, पहाड़ की जड़ी बूटी, दातुन और फल फूल उसकी जीविका थी। लोकल ट्रेन से आती थी और उसी से लौट जाती थी। जिस दिन बिक्री नहीं हो पाती, उस दिन रेलवे प्लेटफार्म का कोना उसका आश्रय होता था। एक दिन उन्होंने उससे पूछा था, कितना कमा लेती हो एक दिन में? 200-300, अगर दिन भर में बिक्री हो गया तब बेटा को स्कूल क्यों नहीं भेजती? बच्चों की अनिवार्य शिक्षा और उपयोगिता पर उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दे डाला। धैर्य पूर्वक महिला ने सुना, फिर बोली, बाबू इसे अपने पास रख लो, पढ़ाओ, आदमी बना दो, नौकर बनाकर घर में रख लो, पढ़ाने की हमारी औकात नहीं, पेट की भूख भी हम शांत नहीं कर पाते, ऐसे में पढ़ाई लिखाई। उसका वह आग्रह उनके मन में उतर गया था। गुलाब की स्कूली शिक्षा प्रारंभ हो गई। वे खुद भी उसे पढ़ाते थे। उसकी विलक्षण

0: बुद्धि उन्हें चकित करती रही। उनके घर में वह ऐसे घुल मिल गया था जैसे उनका ही बच्चा हो। स्कूली शिक्षा के बाद कॉलेज और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी उसकी पूरी हुई। धीरे धीरे उसकी माँ का आवागमन कम होता गया और एक दिन खबर मिली कि वह चल बसी। पहली बार गुलाब की आँखों से दो बूंद आंसू टपके थे। हम हैं ना तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे पालक भगवान कृष्ण के यशोदा मैया और नंदलाल जैसे। सचमुच उन्होंने और उनकी पत्नी ने ज्योति और गुलाब में कभी भी किंचित भेदभाव नहीं किया था। उनकी पत्नी की मृत्यु पर खूब रोया था। मुखाग्नि मैं ही दूंगा बाबूजी, सगे संबंधियों और समाज के ठेकेदारों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। मुखाग्नि गुलाब नहीं दी। बाबूजी किस सोच में डूबे हैं, हमारे पास समय कम है, आज ही किडनी प्रत्यारोपण करना होगा, एक एक मिनट भारी पड़ने वाला है, डॉक्टर ने कहा है। एक किडनी देने से क्या इसकी उम्र कम नहीं हो जाएगी, क्या इसी दिन के लिए उन्होंने उसे पाला है? नहीं, मुझे स्वीकार नहीं। उनके बोलने के पहले ही ज्योति की कमज़ोर आवाज़ से सभी चौंक गए थे। बहन, भाई का फर्ज पूरा करने दो मुझे, एक किडनी भी मुझे जिंदा रखेगी और दूसरी किडनी मुझे खुशी देगी, मेरी खुशियाँ मुझसे मत छीनो दीदी। तभी गुलाब की पत्नी ने कमरे में कदम रखा। गुलाब, तुम किडनी नहीं दोगे, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, मेरा आग्रह नहीं, मेरा निर्णय है यह। गुलाब के कानों में पत्नी की आवाज़ तो पड़ी, लेकिन उसके इरादे अटल रहे। मैं आदिवासी हूँ, हमें एक बोलिया जात कहा जाता है, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया वही होगा। निशांत के आगे गुलाब घुटने के बल बैठ गया। उनका पैर पकड़कर बोला, बाबूजी आपने मुझे आदमी बनाया, माँ बाप का प्यार दिया, इतना दिया कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। यह घर मेरे लिए मंदिर है, इसे खंडहर होते हुए नहीं देख सकूँगा, जिंदा लाश बन जाएगा आपका बेटा। कमरे में मौन था, वही मौन जो सुकृति का संकेत होता है। श्रद्धा की आंखों में उम्मीद की रोशनी कांप रही थी। निशांत ने अनायास खिड़की से बाहर देखा। संध्या का आकाश धुंधला था। उन्हें लगा जैसे दूर पहाड़ों के पार कोई स्त्री मुस्कुरा रही हो। वर्षों पहले उसने एक बेटा सौंपा था, आज वही बेटा जीवन थामे खड़ा था। संवेदना कभी व्यर्थ नहीं जाती।
1: कथा सागर में आज आपने ये मार्मिक कहानी सुनी। कहानी का शीर्षक था प्रतिस्पर्धा करुणा की। कहानीकार थे उमाकांत भारती। कथा सागर संपन्न हुआ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में आगे बढ़ते हुए अब बारी है फिल्मी नगमों की। 7:31 हो चुके हैं। फिल्मी नगमों के इस तरानों में सबसे पहले आइए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये नगमा। आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: भोर भय पनगट पे। अभी आपने लता मंगेशकर को सुना सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में। गीत आनंद बख्श ने लिखा था, संगीत बद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: Cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: Good morning, विक्रमशिला कार्यक्रम में। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोता मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। समय हुआ है 7:38 और 25 सेकेंड। अब आज के अखबारों को टटोलते हैं। आज के अखबार क्या कहते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के सेगमेंट में। आज के अखबारों की सबसे पहली और बड़ी सुर्खी है, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे बाढ़ से पहले 172 पिलर गाड़ने का लक्ष्य, 1 से 4.5 मीटर तक होगा व्यास। भागलपुर के स्थानीय खबर है ये। 625 करोड़ रुपए की गंगा जल योजना में तेजी, बनेगी सुरक्षा दीवार। इसके अलावा दूसरी खबर छपी है, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए बना फंड, 3 साल तक बैंक में जमा रहा राशि, गांव प्यासे रहे, DMF खाते में 44 लाख पड़े रहे। ये नाकामी विभाग की, आज के अखबारों ने इसे लिखा है। इसके अलावा भागलपुर शहर से ही जुड़ी हुई एक और खबर है, तिलकामांझी चौक सौंदर्यीकरण पर विवाद, बिना स्वीकृति के काम शुरू, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने योजना पर उठाए सवाल और दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। ये अखबारों की सुर्खी है। इसके अलावा मौसम के बारे में अखबार लिखता है, अगले 3 दिनों में आंधी बारिश होने की आशंका अधिक, जिले भागलपुर जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में 3 दिनों में आने वाले 3 दिनों के अंदर गरज चमक के साथ आंधी चलने और हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके अलावा भागलपुर से ही जुड़ी एक और खबर है, मायागंज हॉस्पिटल से लेकर OPD काउंटर पर AC लगाने का काम शुरू, मायागंज अस्पताल की OPD में रजिस्ट्रेशन कराने आने वाले मरीजों को जल्द गर्मी से मिलेगी राहत, अस्पताल प्रशासन ने OPD स्थित रजिस्ट्रेशन काउंटर पर AC लगाने का काम शुरू किया। इसके बाद खबर है, बोर्ड को भागलपुर के परियोजना से ई निविदा जारी हुई, नगर निगम क्षेत्र के सड़कों और नालों का बदलेगा स्वरूप, लगभग 9 करोड़ 42 लाख रुपए होंगे इस पर खर्च, 6 से 8 महीने में कार्य पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा भागलपुर से बाहर की खबरों की तरफ अगर हम रुख करें तो राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव की बैठक में सहमति, सत्र 2026-27 से लागू होगी योजना, कॉलेजों में पढ़ाई के साथ नौकरी भी, 12,300 रुपये का स्टाइपेंड देने का कि ये योजना है। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों से जुड़े 13 कॉलेजों में रोजगार परक पढ़ाई शुरू होगी। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को लोकभवन में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसके लिए हैदराबाद के सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। CREICP के संस्थापक सदस्य RS जूलियन ने बताया कि यह योजना सत्र 2026-27 से लागू होगी। इसके अलावा अगर हम देखें आगे के खबरों की तरफ तो विश्वविद्यालय से ही जुड़ी एक और खबर छपी है, शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय से रिक्ति का रोस्टर मांगा, राज्यपाल के विश्वविद्यालयों में फिक्स्ड टर्म फैकल्टी नियुक्ति में नए डिग्री कॉलेज को प्राथमिकता मिलेगी, अभी सिर्फ पुराने कॉलेजों में नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया है। इसके अलावा आज के अखबार लिखते हैं, राज्य के 11 प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री पर लगी रोक हट गई है। बिहार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 29 एजेंडों पर लगी मुहर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। इसके अलावा लोकभवन में होनी थी सुनवाई, नई तिथि भी तय नहीं, शीर्षक से अखबार लिखता है, दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन की सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने किए निर्देश पर लोकभवन पहुंचा मामला। तो ये आज के अखबारों की कुछ राज्य स्तरीय और भागलपुर स्तरीय खबरें हमने आपसे साझा की। अब एक नज़र अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में नवी मुंबई और गुवाहाटी भी, ये आज के अखबार लिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार प्री वर्साय 2026 द्वारा जारी दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट ने बनाई जगह। इस सूची में भारत का नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल है। एक्सपर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट का चयन केवल सुंदरता के आधार पर नहीं बल्कि नवाचार, यात्री अनुभव, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर किया गया है। इस सूची में शामिल दोनों भारतीय एक्सपोर्ट इस सूची में शामिल दोनों भारतीय एयरपोर्ट्स ने पारंपरिक भारतीय तत्वों को आधुनिक वास्तुकला के साथ जोड़कर वैश्विक पहचान बनाई है। इसके अलावा अखबार की एक और सुर्खी है, मानसून से जुड़ी हुई खबर है। मानसून 8 जून से अटका, 21 से 23 जून तक प्रगति दोबारा शुरू होने की उम्मीद। लगातार तीसरे साल जून में मानसून का लंबा ब्रेक हुआ। पिछले 2 साल ब्रेक के बाद भी ज़्यादा बारिश हुई थी। देश का बड़ा हिस्सा बारिश के लिहाज से नो वार्निंग श्रेणी में अब भी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान छपा है, डील अगर पसंद नहीं आई और ईरान ने आनाकानी की तो फिर बम गिराऊंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति बोले। इसके अलावा खेल की खबरों में अगर हम डटोलें तो पिछली रनरअप फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हराया। एम्बापे फ्रांस के टॉप स्कोरर रहे। इसके अलावा हैट्रिक के बाद भावुक हुए मेसी, कहा यह सिर्फ आंकड़े और कुछ नहीं। फीफा वर्ल्ड कप में अल्जीरिया के खिलाफ अपने ओपनिंग मुकाबले में 3 गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने ही दागे। इसके अलावा फुटबॉल से जुड़ी हुई एक और खबर छपी है, 52 साल बाद वर्ल्ड कप खेल रहे कांगो और पुर्तगाल का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। कांगो ने रोनाल्डो के पुर्तगाल को रोक दिया। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे मैच में 170 रन से हराया। शुभमन गिल की कप्तानी में सीरीज जीत गया है भारत, जिसमें ईशान किशन ने बनाए 125 रन और शुभमन गिल ने बनाए 110 गेंदों पर 154 रन। तो ये आज के अखबारों की कुछ सुर्खियां थी। अब समेटते हैं आज के अखबारों को और आपको सुनवाते हैं एक और प्यारा सा नगमा, ये है फिल्म शागिर्द से। आवाज़ एक बार फिर से लता मंगेशकर की ही है। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में इस अंतराल से पहले आपने सुना था शागिर्द फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और अब आज की तिथि यानी 18 जून के इतिहास के बारे में टटोलते हैं, क्या है आज का इतिहास। तो इस कड़ी में आज सबसे पहले जो अभी हमने साझा किया आपसे, आज झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की पुण्यतिथि है, शहीद दिवस है उनका, बलिदान दिवस है। इसके अलावा आज के इतिहास में बुल्गारिया में सबसे बड़ी रैली हुई थी, जिसमें महिलाओं को समानता के अधिकार के लिए आंदोलन हुआ था। और आज नवीन सिंह, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज, उनका जन्म भी हुआ था। तो ये आज का इतिहास। और अब चलते चलते एक और प्यारा सा नगमा, यह फिल्म गीत गाता चल से, आवाज़ आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की, गीत और संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया है।

अभी आपने गीत गाता, चल फिल्म का नगमा सुना। आरती मुखर्जी, जसपाल सिंह की आवाज़ें थी, गीत और संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया था। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के आखिर में इतिहास के पन्नों को टटोलते टटोलते कुछ और चीज़ें हमें जो मिली हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि 2017 में 18 जून को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीत लिया था। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर हुआ 1989 में 18 जून को। इसके अलावा भारतीय नौकायन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ी, भारत के श्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाने वाले होमी डैडी मोतीवाला का जन्म हुआ था 1958 के 18 जून को। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सरसंचालक के सुदर्शन का जन्म हुआ था 1931 में 18 जून को। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक दादा धर्मदास 18 जून को। इसके अलावा मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध धावक थे, लोग उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानते थे। उनका निधन हो गया था 2021 में 18 जून को। तो आज के इतिहास के पन्नों को अब सपेटते हैं हम और आज के इस कार्यक्रम को समेटने की अनुमति चाहता है रविंद्र। कल प्रातः 7 बजे फिर गुड मॉर्निंग विक्रमशिला कार्यक्रम अपने नए कारवां के साथ आपके लिए लेकर आएगा बहुत कुछ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मीटिंग वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने ही वाले हैं। समाचारों के लिए आइए शामिल होते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
8: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
3: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
9: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
10: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
11: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
9: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
12: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
9: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
13: We have a huge pool of talent.
14: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
15: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमेरिका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
16: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की मरबूत और कसीर जहती हिकमत अमली जिसमें मुनज़्ज़म सिक्योरिटी कार्रवाइयां माली वसाइल की बंदिश और तेज रफ्तार तरक्याती प्रोजेक्टों का नफाज शामिल था मुल्क को नक्सलिज्म और माओ नवाजों की दहशतगर्दी से पाक बनाने में कामयाब रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया था कि 31 मार्च 2026 तक पूरे मुल्क से नक्सलिज्म का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा और अब ये हदफ हासिल कर लिया गया है। गुज़श्ता बरसों में कई अहम सिक्योरिटी कार्रवाइयों ने माओ नवाजों के नेटवर्क की कमर तोड़ने में फैसला कुन किरदार अदा किया। 2022 में झारखंड के बुदा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम दिया गया जबकि इसी साल फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के जरिए झारखंड के गुमला लोहरदगा और लातिहार जिलों को नक्सलिज्म से आजाद कराया गया। इसी तरह 2022 में ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला मगरबी सिंहभूम और खूंटी जिलों में माओ नवाजों के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाया गया। 2025 में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सरहद से मुत्तसिल तकरीबन 50 किलोमीटर तवील और 37 किलोमीटर चौड़े पहाड़ी इलाके में चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बाकी मानदा माओ नवाज कारिंदों को शदीद नुकसान पहुँचाया। छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले एक शख्स ने हुकूमत की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि मुल्क को नक्सलिज्म से पाक बनाने का वादा पूरा कर दिया गया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो पूरे मोदी सरकार को और अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
0: जमीनी सतह पर इस मरबूत हिकमत अमली के नतीजे वाज़ह तौर पर सामने आए हैं। 2024 में 217 माओ नवाज हलाक किए गए जबकि 2025 में ये तादाद बढ़कर 256 हो गई। साल 2026 में अब तक 26 माओ नवाज हलाक किए जा चुके हैं। इस दौरान कई बड़े नक्सल रहनुमा भी मारे गए। इन सिक्योरिटी इकदाम के नतीजे में नक्सल से मुतासर इलाकों में तरक्की के एक नए सिलसिले का आगाज हुआ। झारखंड के जिला गुमला के रहने वाले तेम्बू ओराव ने कहा कि मोदी हुकूमत की तश्कील के बाद नक्सलिज्म बतदरीज खत्म हो गया और आज लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
2: एक दशक पहले हमारा गांव क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद के जब्त में था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं। बाकी गाँव का विकास हो रहा है, धीरे धीरे रोड सड़क बन गया है, काफी अच्छा है।
0: आज नक्सलिज्म से पाक भारत की कहानी इस बात का सबूत है कि जमहूरियत, तरक्की और आईन ने कई दहाइयों पर मुहित तशद्दुद पर कामयाबी हासिल की है। दिल्ली से अक्षित वेदियान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजश्कियान ने वर्चुअल वसीले से 14 निकाती मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को खत्म करना, अब नए हुरमुज को दोबारा खोलना और ईरान के जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक हतमी माहदे के लिए 60 रोजा मुजाकराती अमल शुरू करना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने पेरिस में फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान इस मुफाहमतनामे पर ज़ाती तौर पर दस्तखत किए। ईरान की वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की है कि मुफाहमतनामे के मतन को हतमी शक्ल देकर दोनों फरीकों की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं। इस माहदे के तहत अमरीका अपनी बहरी नाकाबंदी और मुतल्लिका पाबंदियों को खत्म करने का अमल शुरू करेगा जबकि ईरान इब्तदाई 60 रोजा मुद्दत के लिए अपने हुरमुज़ से तजारती जहाजों की महफूज और बिला मुआवजा आमदोरफ्त को यकीनी बनाएगा। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान लखनऊ में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 49 ओवर 5 गेंद में 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 रन और ईशान किशन ने 125 रन बनाए। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
4: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है G7 इजलास में मोदी और ट्रंप की दोतरफा मुलाकात। वजीर आजम ने मोदी ने कहा कि अबनाए हुरमुज का खुला रहना दुनिया के लिए इंतहाई जरूरी है। उन्होंने भारतीय मल्लाहों के तहफ्फुज़ पर भी जोर दिया। सर ट्रंप ने वजीर आजम मोदी की तारीफ की। रोजनामा प्रताप ने अपने सफे अव्वल पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है विकसित भारत के लिए रियासतों को मरकज की अच्छी हुक्मरानी की पहल को अपनाना चाहिए। इसी अखबार ने मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान के बयान को नुमाया किया है। वजीर आजम ने मोदी ने स्वच्छता को आवामी तहरीक की शक्ल दी। रोजनामा इंकलाब ने फीफा

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। और मौसम विभाग की आज

0: हुआ रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी, उत्तर पूर्वी जिले अररिया किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने विकसित होने वाले ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब रैयत राज्य आवास बोर्ड को अपनी जमीन बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद से अनुमोदित निजी निवेश परियोजनाओं के लिए निवेशक भी सीधे रैयतों से भूमि खरीद सकते हैं या लीज पर ले सकते हैं।
1: इसमें ये चूंकि अभी जो रोक लग गई थी, इसके कारण कई सारे लोगों को भूमि विक्रय करने की आवश्यकता थी। अभी सरकार ने यह प्रावधान किया है कि इसको बिहार राज्य आवास बोर्ड उनसे सीधे खरीद सकेगा। आप अवगत हैं कि कुछ दिनों पहले ही बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि योजना का प्रथम चरण आगामी 15 जुलाई से अगले वर्ष 15 जनवरी तक संचालित किया जाएगा।
1: इसके अंतर्गत जो राज्य में उपलब्ध हेलीकॉप्टर है उससे पटना से वाल्मीकि नगर, पटना से राजगीर और पटना से कैमूर जाने के लिए और साथ ही साथ पटना में हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए प्रावधान किया गया है। इसके लिए 10-10 सीट उपलब्ध हैं प्रति सप्ताह और इसकी राशि भी निर्धारित की गई है। जैसे पटना वाल्मीकि नगर के लिए प्रति यात्री किराया 5,000 है, पटना कैमूर के लिए 6,000 है, पटना राजगीर के लिए 4,000 है और जॉय राइड जो 10 मिनट का होगा उसके लिए 2100 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है।
0: श्री चौधरी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने लद्दाख स्थित सिंधु नदी दर्शन के लिए राज्य के मूल निवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी योजना को मंजूरी दी। इसके तहत तीर्थयात्रियों को यात्रा पर हुए खर्च का 50% या प्रति यात्री 20,000 रुपये जो भी कम हो प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कला और संस्कृति विभाग के तहत बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप समिति के गठन और इसके निबंधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य में 500 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से यातायात की निगरानी की जाएगी।
1: इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS की स्थापना एवं क्रियान्वयन हेतु बिहार सड़क सुरक्षा निधि से कुल 622 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें ANPR कैमरा इत्यादि भी रहेंगे और यह अपेक्षा की जाती है कि इसको लगाने से लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन और बेहतर तरीके से करेंगे। यह अनुमान किया गया है कि लगभग इससे जो दुर्घटनाएं हैं उसमें 22% की कमी होगी।
0: कैबिनेट ने कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 7वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च तक इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सीवान और

0: प्रदेश मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के नव नामांकित 5000 गृह रक्षकों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी परेड की सलामी लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा बिहार गृह रक्षा वाहिनी की महानिदेशक शोभा ओह हटकर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के फ्यूल फिलर कैप के आसपास चीटियां जमा हो रही हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा झूठा है और E20 ईंधन को चीटियों के आकर्षण से जोड़ने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यूनिट ने कहा कि E20 ईंधन में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं होता है जिससे चीटियां या अन्य कीड़े वाहनों के फ्यूल कैप के आसपास इकट्ठा हों। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है, हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्वी और दक्षिण मध्य हिस्सों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं अररिया, किशनगंज और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। मद्य निषेध कारा और परिवहन विभाग में सिपाही तथा कक्षपाल की नियुक्ति के लिए कल आयोजित परीक्षा में 37 अभ्यर्थी कदाचार में संलिप्त पाए गए। इनमें से 28 को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सबसे अधिक दरभंगा में 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार पुलिस ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को तय मापदंड के अनुसार सुरक्षा दी गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार पुलिस ने कहा कि वर्तमान में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को अलग अलग अंगरक्षक, आवास कार्ड, एस्कॉर्ट कार्ड और पायलट के अतिरिक्त बुलेट प्रूफ वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा सादे लिबास में भी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए हैं। भोजपुर के शाहपुर में पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल तानने वाले युवक की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि युवक पुलिस पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, इस दौरान युवक के पैर में गोली लगी। पीएमसीएच में इलाज के क्रम में युवक की मौत हो गई। मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता था। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल होंगे। वहीं पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

0: उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी समारोह में शामिल होंगे। पूर्व विधायक अंबिका यादव का निधन हो गया। वे कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा शोक जताया है। राजगीर मलमास मेले में इस बार 3,82,00,000 श्रद्धालु पहुंचे। मेले की समाप्ति पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी श्रद्धालु राजगीर पहुंचे और ब्रह्मकुंड समेत अन्य पवित्र कुंडों में आस्था की डुबकी लगाई। नालंदा जिले के पावापुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सम व शरण मंदिर के पास एक बस में करंट दौड़ने से एक दंपति की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य झुलस गए। वहीं जिले के तिलहाड़ा थाना क्षेत्र के गंगा बीघा पुल पर एक मोटरसाइकिल और ई रिक्शा के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भू अर्जन कार्यालय के निम्न वर्गीय लिपिक आकाश को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। उसे पिछले दिनों 30,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। सुपौल जिले के भपटियाई थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरा खुर्द गांव से पुलिस ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 मैगजीन और 5 कारतूस बरामद किए गए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य में पीपीपी मोड पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को मंजूरी, कैमरे से 500 स्थानों पर यातायात की निगरानी। दैनिक जागरण ने लिखा है, ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन खरीद बिक्री को मिली छूट। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, अगले माह से हर प्रखंड के सरस्वती विद्यानिकेतन में पढ़ाई। दैनिक भास्कर लिखता है, कॉलेजों में पढ़ाई के साथ नौकरी, 12,300 का स्टाइपेंड। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पटना टाउनशिप का नाम पाटलिपुत्र होगा। आज अखबार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा होगा। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के दायरे में आने वाले रैयतों को विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद बिक्री और लीज की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के तहत 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने कहा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से 1 साल तक के लिए मान्य होगी। और मौसम विभाग की आज भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में लू की चेतावनी। उत्तर पूर्वी जिले अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
2: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रसारित।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी नगमों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए इस नगमे के साथ। फिल्म का नाम है जीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

अभी आपने सुना अजीत फिल्म का नगमा। समीर ने इसे लिखा था, संगीत बद किया था नदीम श्रवण ने, आवाजी थी कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। अब आइए सुनते हैं विश्वात्मा फिल्म का ये नगमा।

0: अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और साथियों को, फिल्म विश्वात्मा में गीत आनंद बख्शी ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था विजू शाह ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी न्यू एज बलेनो एंड गेट अमेजिंग बेनिफिट्स, इजी फाइनेंस ऑप्शंस एंड इनक्रेडिबल एक्सचेंज डील्स। रश टू योर नियरेस्ट नेक्सस शोरूम टुडे एंड टेक होम द न्यू एज बलेनो विद अमेजिंग ऑफर्स एंड 1 लाख किलोमीटर और 3 ईयर वारंटी। TNC अप्लाई।
2: नेक्सस।

0: अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को फिल्म मिस्टर इंडिया में। गीत जावेद अख्तर ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम है नगमे नए पुराने।
1: ए हिंद, पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

0: कार्यक्रम नगमे नए पुराने की आखिरी पेशकश थी फिल्म करम से। गीत लिखा था इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने, आवाज़ अल चनाई की थी। इसके साथ ही नगमे नए पुराने कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं चंद्रशेखर। कार्यक्रम के आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे हैं सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार हैं चंद्रशेखर। कबीरदास के इस भक्ति रचना को सुनने के बाद अब आइए इनसे सुनते हैं सूरदास की ये भक्ति रचना।

अभी आपने मैथिली शरण गुप्त की ये गीत रचना सुनी। कलाकार है चंद्रशेखर, कार्यक्रम है सुगम संगीत। अब आइए सुनते हैं जानकी वल्लभ शास्त्री की गीत रचना।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कार्यक्रम, कलाकार थे चंद्रशेखर। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में काजल फिल्म के इस नगमे के साथ।

अभी आपने सुना है काजल फिल्म में मोहम्मद रफ़ी को। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया था रवि ने। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।

अभी आपने सुना झुक गया आसमान फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, गीत लिखा था शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। अब आइए सुनते हैं हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा।

अभी आपने सुना हरियाली और रास्ता फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम है पुराने फिल्मों से।

0: अभी आपने सुना गीता मेरा नाम फिल्म का नगमा, राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा था, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज़ लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम है पुरानी फिल्मों से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

अभी आप सुन रहे थे फकीरा फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन ने तैयार किया था। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं प्रोफेसर फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीत हजरत जयपुर ने लिखा है, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: कार्यक्रम के आखिर में आपने सुना प्रोफेसर फिल्म का नगमा। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा था, संगीत बद्ध किया था शंकर जयकिशन ने, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी। पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे नाटक एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: Feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
0: अब आइए सुनते हैं डॉक्टर आभा पूर्वे का लिखा हुआ नाटक खोया हुआ खत। प्रस्तुत करता है शंकर कैमूरी।
5: देखो सिंहेश्वरी, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे मान जा। इसमें तुम्हारे माँ बाप की भी भलाई है और तुम्हारी भी। अब तुम बच्ची भी नहीं रही, 12 से कम नहीं हो रही होगी तुम्हारी उम्र, और देखते ही देखते 16 की हो जाओगी, और फिर 20।
6: तो पटेल काका, इससे आपको क्या लेना देना?
5: ये तुम क्या बोल रही हो सिंहेश्वरी? मुझे पटेल काका भी कहती हो, और फिर यह भी कि तुम्हारी उम्र से मुझे क्या लेना देना?
6: ठीक ही तो बोल रही हूँ पटेल काका।
5: तुम पागल हो गई हो। पागल नहीं होती तो ऐसी बात नहीं कहती। अरे सोचो सिंहेश्वरी, लड़की जात हो, शादी तो होनी ही होनी है, और तुम्हारे माँ बाप के पास इतने रुपए पैसे कहाँ कि तुम्हारे हाथ पीले कर दें?
6: मेरे माता पिता नहीं करेंगे तो क्या आप मेरे हाथ पीले करेंगे?
5: मैं भी नहीं कर सकूँगा। करेंगे प्रताप बाबू, जिसके यहाँ मैं तुम्हें रखना चाहता हूँ।
6: प्रताप बाबू? ये प्रताप बाबू कौन है और आप मुझे वहाँ क्यों रखना चाहते हैं?
5: तुम नहीं जानती हो प्रताप बाबू को, लेकिन इलाके भर के सभी लोग जानते हैं। देखो सिंहेश्वरी, अपने घर परिवार के लिए तुम्हें काम तो करना ही है। वो चाहे शिवचंद बाबू के यहाँ करो या कि प्रताप बाबू के यहाँ। हाँ, प्रताप बाबू के यहाँ काम करोगी तो प्रताप बाबू की बेटी की तरह रहोगी, और ऐसा खाना खाओगी, ऐसे कपड़े पहनोगी कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
6: ये प्रताप बाबू कहाँ रहते हैं?
5: शहर में रहते हैं। वो अभी महीने भर के लिए आए थे, फिर विदेश लौट जाएंगे, अमेरिका। तुमने अमेरिका का नाम नहीं सुना है सिंहेश्वरी? कई देशों का देश है वह, जानती हो? वहाँ गायें भी अखरोट और किशमिश खाती हैं।
6: अच्छा, तो क्या मुझे वो विदेश ले जाएंगे?
5: तो इसने आश्चर्य ही किया है। यहाँ जंगल के बीच बकरियाँ चराती हो, वृक्षों के नीचे सोती हो और झरने का पानी पीती हो। विदेश में रहोगी तो दुख के ये दिन बदल जाएंगे।
6: लेकिन मुझे तो झरने का पानी और झुरमुटों की छाया ही अच्छे लगते हैं। मैं तो यहीं रहूंगी।
5: यहीं कैसे रहोगी? सिंहेश्वरी, तुम्हारी माँ से मैंने बात कर ली है और उसने हाँ भी कह दिया है।
6: अगर माँ ने हाँ भी कह दिया है तो क्या होता है? एक बार मैं अपने भोलू से तो पूछ लूँ।
5: भोलू? वही छंगरी का लड़का? उससे तुम अपनी राय लोगी?

0: काका
1: चलो भोलू मेरे साथ वहाँ उस झोपड़ी में बैठेंगे।
0: अच्छा अच्छा काका,
1: तुमसे कुछ बातें करनी है।
0: बोलो ना काका।
1: बैठ, यहाँ बैठ भोलू।
0: हाँ।
1: अच्छा भोलू,
0: हाँ?
1: ये बता कि तुम सिंहेश्वरी को बाहर जाने से क्यों रोकते हो?
0: मैं क्यों रुकूंगा काका? और फिर वह बाहर कहाँ जा रही है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम।
1: तुमको सब मालूम है भोलुआ, और मुझसे ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। कान खोलकर सुन लो कि तुमने सिंहेश्वरी को अमेरिका जाने से रोका तो तुम्हारी वो धुनाई करूंगा कि इसे तुम 7 जन्म तक याद रखोगे, समझे?
0: क्या सिंहेश्वरी गांव में नहीं रहेगी, विदेश जाएगी?
1: हाँ हाँ, विदेश जाएगी। अब उसे भिखमंगी की तरह इस गांव में नहीं रहना और न किसी भिखमंगे के साथ जीवन काटना है, समझ गया?
0: आप क्या कह रहे हैं काका?
1: मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे चुपचाप सुनो, और अगर सिंहेश्वरी तुमसे इस संबंध में राय ले तो याद रखना कि हां के सिवा कुछ भी नहीं कहोगे। अब मैं जाता हूं, मेरी बात याद रखना।
2: भोलू, भोलू।
0: हाँ मंटू।
2: क्या क्या बोल रहे थे पटेल काका, बड़े गुस्से में थे वे?
0: हाँ, बोल रहे थे कि सिंहेश्वरी को वह विदेश भेजना चाहते हैं और उसे मैं रोकू नहीं।
2: क्या सिंहेश्वरी विदेश जाएगी और वह भी तुम्हें छोड़कर?
0: हाँ यार।
2: अरे अरे, तो तू क्यों उदास होता है भोलू? देख भोलू, पटेल के देवता भी चाहेंगे ना तो सिंहेश्वरी गांव से बाहर नहीं जाने वाले। हाँ
0: हाँ हाँ मंटू, तू ठीक कहता है, मेरा भी यही विश्वास कहता है। लेकिन यार, सुख मौज किसे नहीं भाता।
2: सुखा

0: संगेश्वरी।
1: हाँ बोलो।
0: तो तुमने क्या सोचा है?
1: मेरे सोचने का क्या है, ये तो बताओ कि तुमने मेरे बारे में क्या सोचा है।
0: देखो सिंहेश्वरी, मैंने सब जान लिया है। पटेल काका कल तुम्हारी माँ से मिले थे, उन्होंने तो पहले भी हाँ कह दिया था। रहे तुम्हारे पिताजी की बात, तो वो क्यों चाहेंगे कि तुम इस गांव में रहो? अपने पिता होते तो कुछ सोचते भी, मगर
1: ओ, तो तुम्हें ये भी मालूम हो गया?
0: हाँ, और मुझे ये भी मालूम हो गया कि तुम्हारे पिता ने कहा है बेटी कमाएगी तो घर में भी कुछ न कुछ भेजेगी।
1: अच्छा छोड़ो माँ बापू की बातें, अपनी बात करो भोलू। और कुछ नहीं कह सकते तो इतना तो बताओ कि मेरा जाना तुम्हें अच्छा लगेगा।
0: यही

0: मुझसे ही कर रही हो?
1: और नहीं तो मैं किससे करूंगी? तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन जिससे अपने मन की सारी बातें करूं?
0: अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें रोक लिया या फिर मेरे कहने पर भी तुमने गांव नहीं छोड़ा तो इसका परिणाम जानती हो तुम?
1: बस यही सोचकर तो मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ।
0: तुम्ही गौ सिंहेश्वरी, क्या आखिर हम क्या कर सकते हैं? बस बस एक ही रास्ता है, वो देखो वो दूर उस पहाड़ी पर हम दोनों खड़े हो जाए और जिस खाई में ये झरना समाता है उसी में हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए समा जाए।
1: नहीं नहीं नहीं बोलू, नहीं, ये तो सबसे बड़ी कायरता होगी। जानते हो बोलू, जब से पटेल काका ने मुझसे विदेश जाने की बात कही है तब से ही मैं रोज रोज सोते जागते एक ही सपना देखती हूँ कि मुझे किसी दैत्य ने किसी चट्टान के नीचे छुपा दिया है। मैं लगातार चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरे राजकुमार तक मेरी चीख नहीं पहुंच पा रही है।
0: नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा सिंहेश्वरी, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं।
2: तो हमारी राजकुमारी यहाँ बैठी है और मैं हूँ कि इन्हें आरी बारी सभी जगह खोज कर आई। क्या समझती है, घर का सुअर मैं चराऊं और तुम बकरी लेकर झरने पर रास रचाओ? अरे जो घर में 4-5 दिन है तो घर का काम तो संभाल दिया कर। विदेश जाएगी तो कौन सा घर का काम करने आएगी? अरे भलुआ, सुना है तुम सिंहेश्वरी का कान भरा करता है रे?
3: क्या बोलती हो काकी, मैंने सिंहेश्वरी को कब क्या कहा?
2: अगर कुछ नहीं कहा तो कभी कुछ नहीं कहेगा, समझा? पटेल बाबू तुम पर बहुत गुस्सा हो रहे थे। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कहीं गांव छोड़कर ही जाना पड़े।
1: माँ, तुम भोलू से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि भोलू?
2: हाँ हाँ, मैं तो खूब अच्छी तरह जानती हूँ। भोलू तुम्हारा होने वाला दूल्हा नहीं है। कान खोल कर सुन ले, चल उठ, उठ यहाँ से, चल घर। मैं कहती हूँ तुरंत उठ यहाँ से।

0: बोलू?
1: हाँ बोल मंटू।
0: एक बात कहूं?
1: बोल बोल।
0: तुम्हें 10 रोज से परेशान परेशान देख रहा हूं। देख बोलू, सिंहेश्वरी को तो यहां से जाना ही था। विदेश नहीं जाती तो विवाह के बाद किसी के घर चली जाती, लेकिन तुम उसके लिए इस तरह क्यों पागल पागल हो रहे हो बोलू?
1: मंटू मेरे यार, तुम्हें तुम्हें मैं क्या बताऊं कि सिंहेश्वरी जब से गांव छोड़ कर गई है तब से बस यही लगता है यार कि ये गांव मेरे लिए शमशान बन चुका है। और न जाने क्यों हर बार बार बार यही लगता है कि मैं जीते जी किसी चिता पर जल रहा हूं यार, जल रहा हूं। बस प्राण नहीं जाते, बस यार तड़पता रहता हूं।
0: भोलू
1: तड़पता रहता हूं।
0: भोलू ये तुम्हारा पागलपन है भोलू। सिंहेश्वरी के गए 10 रोज से भी ज्यादा बीत गए हैं। अब तो उसकी चर्चा भी कोई नहीं करता, पटेल काका तक नहीं। आखिर क्यों करे, रोजी रोटी के चक्कर

0: में तो लोग परदेश तक जाते ही हैं। अब बस समझ लो कि सिंहेश्वरी भी चली गई।
1: कैसे कैसे कैसे अपने दिल को समझाऊं? बोल यार, कैसे समझाऊं? देख देख, अब मैं तुम्हें किसी तरह भी नहीं समझा सकूंगा। सिंहेश्वरी के बिना मेरा जीवन कितना सूना हो गया है रे। पहले पहले पहले ऐसा कभी नहीं महसूस किया था जैसा अब महसूस कर रहा हूं। अगर मेरा बस चलता तो सचमुच मैं रोक लेता सिंहेश्वरी को यार, रोक लेता।
0: चलो सिंहेश्वरी पर नहीं चला तो कम से कम अपने पर तो बस चलाओ भोलो। देख, तुम जानते नहीं यार कि तुम्हारे इस तरह कटे कटे रहने से लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहने लगे हैं। मैं तुम्हारा मित्र हूं ना भोलू, अच्छा नहीं लगता है भोलू।
1: लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, इसे जानना छोड़ दिया है यार। तू भी सुनना छोड़ दे। वैसे भी अब मुझे अपने जीवन के प्रति आकर्षण तो रह भी नहीं गया है। सोचा था शहर जाकर बहुत कमाऊंगा, लेकिन अब वो भी इच्छा मर गई। अब तो बस मेरा मरना ही बाकी रह गया है। अब तो मेरा मरना ही बाकी रह गया है यार।

0: देखो सिंहेश्वरी, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये अमेरिका है। यहां तो कुत्ते और बिल्ली भी सलीके से रहते हैं, लेकिन तुम जिस बेतरतीब ढंग से घर में उछला कूदा करती हो, तुम्हारी मालकिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सभ्य लड़की की तरह रहना सीखो।
1: अजी ये क्या सुधरेगी, महीने भर में इसने मुझे इतना परेशान कर दिया है जितना मैं 50 साल में नहीं हुई। इधर की चीजें उधर रख देती है और उधर की चीजें इधर, समझाओ तो बस हंसकर सारी बातें भुला जाती है। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि गांव के चूहे चूहियों को उठाकर नहीं लाना है, मकान ही गंदा करेंगे, पर मेरी सुनता ही कौन है, आपने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया।
0: अरे देवसुता, इस तरह नाराज होने से काम भी नहीं चलेगा। अब विदेश की संस्कृति को नहीं जानती है तो जान जाएगी क्या सिंहेश्वरी, अब तो कोई गलती नहीं करोगी?
2: नहीं, नहीं, नहीं मालिक, ये लीजिए, मैं कान पकड़ कर कहती हूँ कि अब से कोई भूल नहीं होगी।
0: ठीक ठीक है, चलो ठीक है।
1: खाक भूल नहीं करेगी, अब तो इसे किसी भी तरह से गांव भेजना भी मुश्किल है, 1000-2000 की बात भी तो नहीं है।

0: क्या बात है भोलू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है?
1: मंटू यार, यार तुम्हारे कहने पर मैंने सिंहेश्वरी को बुलाने की बहुत कोशिश की, जैसे तैसे, लेकिन कल एक अजीब सा डरावना स्वप्न देखा।
0: सपना?
1: हाँ यार, देखा देखा सिंहेश्वरी प्रताप बाबू की हवेली से भाग गई है और अमेरिका की सड़कों पर अकेली बदहवास से भटक रही है, किसी अपने आदमी की तलाश में, कभी इधर कभी उधर। वो परेशान परेशान है यार, 5 रोज से उसने खाया पिया नहीं। यार मैंने कभी ऐसा सपना नहीं देखा यार, ऐसा सपना नहीं देखा।
0: अरे सपना तो सपना होता है भोलू, इस बात के लिए इतना परेशान क्या होना है? अब फिर तुम ही सोचो कि सिंहेश्वरी प्रताप बाबू की हवेली से क्यों भागेगी, कौन सा दुख भला उन्हें मिलेगा जो वह भागने की बात सोचेगी।
1: सो तो मैं नहीं कह सकता यार, सिंहेश्वरी के गए साल भर हो गए और आज तक मैंने कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा। न जाने क्यों मन बहुत बहुत बहुत घबरा रहा है यार, बहुत घबरा रहा है।
0: संभालो भोलू, सबसे पहले तुम अपने आप को संभालो। इस बात को तुम समझते क्यों नहीं हो कि सपना भी कभी सच नहीं होता? अरे सपना तो सपना है, पानी का बुलबुला उठा और फूट गया, उसकी अपनी कोई दुनिया नहीं होती भोलू। ये बात तुम किसी से कहना भी नहीं, लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल, और किसी पागल खाने में डाल आएंगे।

0: है पागल, वो भी कहाँ हो पा रहा हूँ यार, वो भी कहाँ हो पा रहा हूँ। हो जाता तो गांव भर में हका हका कर कहता कि सिंहेश्वरी मेरी थी, सिंहेश्वरी मेरी थी, सिंहेश्वरी मेरी थी। उसे उसे पटेल काका ने प्रताप बाबू के हाथ बेच दिया। मंटू मंटू यार, मनाओ मनाओ कि मैं पागल हो जाऊं यार, मैं पागल हो जाऊं, पागल हो जाऊं यार।
1: संभालो संभालो संभालो संभालो संभालो संभालो।

0: नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं हो सकता मुझसे। बहुत बर्दाश्त किया। ठहर ठहर, मैं तुम्हें अब बताती हूँ। क्यों री, क्या समझती है अपने आप को? क्यों किया ऐसा? क्यों, क्या समझती है अपने आप को, बता ना।
1: छोड़ दीजिए मालकिन, मालकिन छोड़ दीजिए, अब ये गलती कभी नहीं करूंगी। नहीं मालकिन,
0: ना ना, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ सकती। मैंने तुम्हें कमरा दिया था रहने के लिए, और तुमने तुमने ये क्या किया? कमरे की दीवारों पर तोते, मैना और हिरणों की तस्वीरें बना रखी, कहीं झरना तो कहीं बॉक्सिंग। वाह, क्या समझ के क्या रखा है तुमने मेरे घर को? घर को जंगल समझ रखा है क्या?
1: छोड़ दीजिए मालकिन, मैं
0: छोड़ दीजिए मालकिन,
1: मैं सारी तस्वीरें हाँ, मिटा दूंगी मालकिन।
0: हाँ, हाँ, क्यों नहीं, ताकि मेरी दीवारें और भी गंदी हो जाएं। क्यों, शैतान कहीं की, मैंने यहाँ पर प्लास्टिक के फूल लगाए थे, वहां तुमने जाने कहां से बाजारों फूल लाकर जमा दिए। यहां तक तो मैंने फिर भी तुम्हें बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नहीं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त कर सकती। आने दो, आने दो, अब तुम्हारे मालिक ही तुम्हें बचा सकते हैं।
1: चोटी छोड़ दीजिए मालकिन, सर में दर्द होने लगा।
0: दर्द, तुमने साल भर से जो मेरे माथे में दर्द कर रखा है, उसका क्या ख्याल है उसका? अब तुम इस घर में रहोगी या मैं? कल तुम्हारे मालिक लौटते हैं ना, तब मैं तुम्हारी व्यवस्था करवाती हूँ। ठहर जा।
1: आप मुझ पर क्यों इतना गुस्साती, क्यों इतना गुस्साती है? मैं गांव के झरने और वृक्षों की छाया के नीचे पली हूँ, चिड़ियों का कलरव मुझे जीवन देता है। मैं जिस कमरे में रह रही हूँ, वहां तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी तो

समझ रहे हैं। मालकिन सो रही है, मालिक भी सो रहे हैं। बस यही समय है कि मैं अपने भोलू के नाम चिट्ठी लिख लूं। और विशु ने कहा ही है कि वो चिट्ठी डाक में गिराएगा, ज़रूर डालाएगा वो, क्योंकि वो भी तो इस घर का नौकर ही है। एक नौकर ही नौकर के दुख को ज़रूर जानेगा। और फिर विशु ने उस दिन देखा ही था कि मालकिन मुझे इस तरह से पीट रही थी। महीने भर की तो पुरानी बात है, लेकिन कैसे लिखूं पत्र? गांव में रहकर ज़्यादा पढ़ लिख भी तो नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, 5 अक्षर तो लिख ही लूँगी। चलो जल्दी से खत लिख लूँ। भोलू, अब तक मैं तुम्हारे बिना जी गई, लेकिन लगता है अब नहीं जी सकूंगी। मैं तुम्हारे साथ जिस झरने के नीचे और जिस वृक्ष की छाया में बैठा करती थी, वो सारी चीज़ें मुझसे छीन गई हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं 1 महीना और बचना चाहूँगी। मुझे जैसे भी हो यहाँ से निकालो। मैं आग में जलकर नहीं मरना चाहती। तुम मुझे इस पते पर लौटती डाक से उत्तर दो। मैं तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा करूँगी। तुम ये निश्चित समझो कि महीने भर के बाद भी अगर तुम्हारा जवाब नहीं मिला, तो तुम ये समझना कि मैं इस धरती पर नहीं हूँ। और इसके बाद मेरे बारे में तुम खोज खबर भी नहीं लेना, क्योंकि तब तक मैं धरती पर नहीं होंगी। मैंने अपने मरने का इंतज़ाम कर लिया है। एक पल में सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन महीने भर में मैं अपनी मालकिन की प्रताड़ना सहती रहूंगी, मरती रहूंगी। सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी सिंहेश्वरी।

0: प्रणाम डाकिया काका, जंगल की ओर किसको डाक पहुंचाने आ रहे हैं?
1: अरे भोलू, तुम्हें ही यह चिट्ठी देने आया हूँ। क्या कहूँ, तुम्हारे नाम से यह चिट्ठी तो महीने भर पहले आया था।
0: अच्छा,
1: लेकिन देखो ना, यह कहीं चिट्ठी इधर उधर रखा गया था, मिल नहीं रहा था। अब नहीं मिल रहा था तो तुम्हें क्या कहता? आज मिला है, फाइल में दवा पड़ा था। लो बेटा, रख लो, अमेरिका से आया है यह पत्र।
0: अमेरिका से?
1: हाँ भोलू, अमेरिका से आया है।
0: नहीं हूँ, और इसके बाद मेरे बारे में तुम कुछ खबर भी नहीं लेना, क्योंकि मैं तब धरती पर नहीं होंगी। मैंने अपने मरने का इंतजाम कर लिया, एक पल में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन महीने भर मैं अपनी मालकिन की प्रताड़ना सहती रहूंगी, मरती रहूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए।

अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आभा पूर्वे का लिखा नाटक खोया हो।

वक्त प्रस्तुत करता थे शंकर कैमूरी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 11 बजे हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 11:02 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर 2 का गीत, जिसके लिए आवाज़ें हैं सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और साथियों की।

कार्यक्रम के अंत में ये सुनते हैं मिस्टर समिया और हल्का याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म चाइना टाउन का ये दो गाना।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों, गुलदस्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे चर्चा की थी फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। दोस्तों, आइए एक बार फिर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं 70 के दशक के उत्तरार्ध में, जहां पर कई विधाओं में फिल्म फेयर अवार्ड प्रदान किए गए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में एक है फिल्म फेयर अवार्ड, जिसे पाना केवल सम्मान ही नहीं, गर्व का भी विषय होता है। तो 1976 में यशराज चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई कभी कभी, जो तो ये फिल्म हर विधा में सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन इसके संगीत ने क्या कमाल किया, इसके हर गीत सुपरहिट हुए। आइए ऐसे फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और साथ में ये भी आपको बता रहे हैं कि इस फिल्म के संगीतकार थे खय्याम, जिनके द्वारा रचित धुनों ने इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड दिला दिया।

1978 में फिल्म आई सत्यम शिवम सुंदरम। फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: पता है जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
2: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: दोस्तों, इसी कड़ी में आइए सुनते हैं किशोर कुमार का गाया फिल्म गोलमाल का ये गीत।

1980 में एक फिल्म आई कर्ज, पूर्व जन्म पर आधारित। इस फिल्म ने खूब नाम कमाया, इस फिल्म के गीतों ने भी खूब नाम कमाया। ऋषि कपूर के अभिनय ने सफलता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक लोकप्रिय गीत।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक।

नारी लोक सुन रही सभी बहनों को भारती का नमस्कार। बहनों, आज के नारी लोक को आरंभ करने से पहले आइए हम जान लें कि आज इसमें क्या खास है। बहनों, आज हम बहनें सुनेंगी कहानी और काव्य पाठ, इसके अलावा फिल्म संगीत भी होगा। आइए बहनों, आरंभ करते हैं आज की चर्चा। महिला उद्यमिता एवं आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जब महिलाएं व्यवसाय शुरू करती हैं तो वे रोजगार सृजित करती हैं, आय बढ़ाती हैं, गरीबी कम करती हैं। यह महिलाओं को सशक्त बनाता है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय वृद्धि करता है। बहनों, महिला उद्यमी अन्य महिलाओं को रोजगार देती है, जिससे स्थानीय स्तर पर आजीविका में सुधार होता है। व्यवसाय के माध्यम से महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है।

0: जिससे परिवार में उसका निर्णय लेने का अधिकार बढ़ता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आय बढ़ने से गरीबी का स्तर कम होता है। महिलाओं की समान भागीदारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आय बढ़ने से गरीबी का स्तर कम होता है और सामाजिक आर्थिक विकास होता है। महिलाओं की समान भागीदारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देती है, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलती है। बहनों, आज महिलाओं को अपने पैर पर खड़ा होना अनिवार्य है, चाहे वह नौकरी पाकर करें या स्वरोजगार आरंभ करके। विकसित भारत की पहचान आत्मनिर्भर महिला से ही होगी। बहनों, अपनी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ, 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
4: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अंतराल के बाद बहनों, आइए वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम की ओर और आनंद उठाते हैं काव्य पाठ का। बहनों, कविता को सुनना मनमोहक होता है। आइए आज के काव्य पाठ का आनंद उठाते हैं। कवित्री है स्वाति सिन्हा।
5: नमस्कार, मेरी पहली कविता का शीर्षक है 40। 40 अंत नहीं शुरुआत है, 40 अंत नहीं शुरुआत है, परेशानी नहीं एक नई बात है। कौन कहता है ये बुढ़ापे की सीढ़ी है? मान्यताएं मान्य नहीं, क्योंकि हम नई पीढ़ी हैं। ये समय है जिम्मेदारियों से उबरकर कुछ अपने लिए करने का, ये समय है जिम्मेदारियों से उबरकर कुछ अपने लिए करने का, थोड़ा अपने साथ जीकर थोड़ा अपने लिए सवरने का। हाँ, ली चुटकी मेरी किस्मत ने भी, हाँ ली चुटकी मेरी किस्मत ने भी, कहा थोड़ी देर से पहुंची हो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ रुक गई थी थोड़ा जिंदगी जीने के लिए। क्यों जरूरी है सिर्फ माँ, बेटी, पत्नी और बहन बनकर रह जाना? क्यों जरूरी है सिर्फ माँ, बेटी, पत्नी और बहन बनकर रह जाना? क्यों जरूरी है जिम्मेदारियों के नाम पर सब सह जाना? क्षमा, क्षमा चाहती हूँ देवी की उपमा पाकर बड़ा नहीं बनना, क्षमा चाहती हूँ देवी की उपमा पाकर बड़ा नहीं बनना। इच्छा है उन्मुक्त, बेफिक्र, निश्चिंत सी अपने बचपन सा पलना। चलो आपको आज कुछ नया दिखाती हूँ, चलो आपको आज कुछ नया दिखाती हूँ, मेरे जीवन के दोनों पहलुओं को समझाती हूँ। क्यों मुझे प्रेम की भूख छोड़ प्रेम सिर्फ देना चाहिए? क्यों मुझे प्रेम की भूख छोड़ प्रेम सिर्फ देना चाहिए? क्यों मुझे वांछाओं, लालसाओं और अधिकारों को छोड़ सिर्फ कर्तव्यों को जीना चाहिए? परिपक्वता ये नहीं कहती कि मैं लड़प्पन छोड़ दूँ, परिपक्वता ये नहीं कहती कि मैं लड़प्पन छोड़ दूँ, सबका मन रखूँ और दिल अपना ही तोड़ दूँ। क्यों दोस्तों के साथ बाहर जा नहीं सकती?
6: क्यों दोस्तों के साथ बाहर जा नहीं सकती, भाई बहनों के साथ बेबाक होकर ठहाके लगा नहीं सकती, क्यों मेरी तहजीब को मेरी स्कर्ट की साइज से नापा जाता है, क्यों मेरी तामील को मेरी तर्जी लिबास से आका जाता है, क्यों नजर उठा के नजरिए को थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते, क्यों नजर उठा के नजरिए को थोड़ा बड़ा नहीं कर सकते, क्यों अपनी छोटी सोच को उठा कर खड़ा नहीं कर सकते। बस उम्र ही तो है, बस उम्र ही तो है, 40 को 40 क्यों बनने दूं, अरे एक ही तो मिली है जिंदगी ये नामुराद, इसे खलिश क्यों बनने दूं, इसे खलिश क्यों बनने दूं। अब आपको लिए चलती हूं अपनी दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है अवकाश। कब तक, आखिर कब तक 9 से 5 के शेड्यूल पर चलते रहेंगे, कब तक 9 से 5 के शेड्यूल पर चलते रहेंगे, कब तक पैसे बचाएंगे और मैनेजर की डांट सुनते रहेंगे, कब तक मन मार कर अपना थकाऊ उबाऊ सी जिंदगी जीते रहेंगे, कब तक छुट्टियां जोड़ जोड़ तनख्वाह की जेब भरते रहेंगे। चलो चलो अपनों के साथ कहीं घूम आते हैं, शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के 2-4 दिन चुराते हैं, जहां कोई शोर ना हो, जहां कोई शोर ना हो, कुछ पूरा करने की कोई होड़ ना हो, जो देखे आंखें नायाब इतना कि उसका कोई जोड़ ना हो, व्यस्तता से दूर अपने आप को एक ऐसा दे अवकाश, व्यस्तता से दूर अपने आप को एक ऐसा दे अवकाश, शांति हो मन में और कोई उलझन ना हो पास, बादलों के गांव जैसा, बचपन के छांव जैसा, भूल जाएं कुछ पल के लिए अपने अस्तित्व को जहां, और रम जाएं उसमें जो वहां वर्तमान हो, बसा लें उसकी छवि खुद में, या डूब जाएं खुद ही में, खुद ही उसमें, चाहे वो कितना भी अजनबी हो। बड़े दिनों से कुछ दिया नहीं जिंदगी को अपने, बड़े दिनों से कुछ दिया नहीं जिंदगी को अपने, चलो इसे कुछ खास दे दें, खूबसूरत यादों की बुनकर एक स्वेटर, इसे तोहफे में नई आवाज दे दें। वहां जहां धूप की बिखरी छटा मिल जाए, वहां जहां धूप की बिखरी छटा मिल जाए, रंगीन खूबसूरती उढ़ेलती घटा मिल जाए, जहां जाकर छोड़ आए हम गमे जिंदगी अपनी, काश ऐसी जगह जाने की एक वजह मिल जाए, काश ऐसी जगह जाने की एक वजह मिल जाए। मेरी तीसरी कृति बात करती है एक साथ के विषय में। जरूरी नहीं कोई रिश्ता हो उससे, जरूरी नहीं कोई नाम हो उसका, जरूरी नहीं कोई रिश्ता हो उससे, जरूरी नहीं कोई नाम हो उसका, हां पर हो कोई जिससे बांट लूं अपनी बेबाकी, जिसको बता सकूं डर अपना, जिससे बात करूं झल्लियों वाली पागल बनकर, जिसको सता सकूं कभी भी, जो मिल जाए हरदम जब चाहूं, जो मजे ले मेरी बदस्तूर बकबक के, जो कभी पीछा ना छुड़ाना चाहे मुझसे, जो कभी खेले साथ मेरे खेल बच्चों वाले, कभी बातें करे और खोले मेरे उलझनों के ताले, कोई जो बिन मांगे मुझे समय दे दे अपना, जिसके लिए खास हो मेरा भी सपना, जिससे मैं कुछ भी ना छुपाऊं, जिसके सामने कुछ और उभर कर आऊं, जिसके होते कभी अकेली ना रहूं, जिसके होते कभी अकेली ना रहूं, कोई खुशी हो मेरी या गम हो मेरा, उसे अकेले ना सहूं, प्यार हो ना हो उससे, कुछ तो हो मजबूत बंधा सा, भरोसा हो उस पे ऐसा जैसे कोई अंधा सा, पर जरूरी नहीं कोई रिश्ता हो उससे, जरूरी नहीं कोई नाम हो उसका, हाँ पर हो कोई। अब जुड़ते हैं मेरे नए छंद से, जो है वो अमरूद का पेड़। दुखा था उस रोज वो मासूम सा दिल, दुखा था उस रोज वो मासूम सा दिल, जब जा रहा था वो मुझे छोड़कर, दुखा था उस रोज वो मासूम सा दिल, जब जा रहा था वो मुझे छोड़कर, सारी यादें दौड़ रही थी नजरों के सामने, कोई नहीं था उस जैसा हाथ थामने, मेरा आंगन सूना हो गया उसके बिन, मेरा आंगन सूना हो गया उसके बिन, हंसने का जिसे साथी मानते थे मेरे खुशियों के दिन, आज तक नहीं मिली उस जैसी शीतलता और मिठास, आज तक नहीं मिली उस जैसी शीतलता और मिठास, ढूंढते हैं अब तक उसकी अनुभूति है बस पास, जिसके साथ समय बीत जाता था कैसे पता ही नहीं चलता था, जिसके साथ समय बीत जाता था कैसे पता ही नहीं चलता था, अब कौन घंटों मेरी कॉमिक की कहानियां सुनता, कितनी ही दोपहरी काटी उसकी छांव में, कितनी ही दोपहरी काटी उसकी छांव में, कितने शाम गुजारे उसके नीचे झूलते खेलते, हाँ जब भी उड़ाता मेरी खिल्ली भाई और सता जाता छेड़, तब तब याद आता मुझे मेरी आंगन का वो अमरूद का पेड़। अब हम आते हैं मेरे अगले संबोधन की ओर, जो एक बेटे की है, खोए से पिताजी। जब बैठता हूँ हर शाम अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर, जब बैठता हूँ हर शाम अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर, मेरे सामने का खाली सोफा लगता है कुछ पूछता है शायद मुझसे। जब बैठता हूँ हर शाम अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर, मेरे सामने का खाली सोफा लगता है कुछ पूछता है मुझसे, शायद पूछता है कहाँ है उस सोफे का हकदार, शायद पूछता है कहाँ है उस सोफे का हकदार, पूछता है कहाँ है इस घर का संसार। वो सारे संसार थे इस घर का, वो संसार थे इस घर का, या ये घर ही संसार था उनका, ये शायद द्विअर्थी पहेली है। वो संसार थे इस घर का या ये घर ही संसार था उनका, ये शायद द्विअर्थी पहेली है। अब जब हर सुबह चाय की प्याली आती है मेरे सामने अकेले, वो भी शायद ढूंढती अपनी सहेली है। हमारे सिर के वो आशीष वाले हाथ, हमारे सिर के वो आशीष वाले हाथ, या मेरी माँ का श्रृंगार और प्यार, मेरी कभी ना चुप रहने वाली माँ की नोकझोंक का वो साझेदार। सीधे साधे होकर भी जिम्मेदारियों में खड़े रहने वाले, सीधे साधे होकर भी जिम्मेदारियों में खड़े रहने वाले, हम हो जाएं कितने भी बड़े, हमारे बीच हमसे बड़े रहने वाले, वो बचपन से अब तक के मेरे हर समझदार और नासमझी भरे फैसले में उनकी स्वीकृति, वो बचपन से अब तक के मेरे हर समझदार और नासमझी भरे फैसले में उनकी स्वीकृति, उनके निश्चित स्वभाव की ना भूल पाने वाली पुनरावृत्ति। खोना चाहता हूँ, खोना चाहता हूँ उन पलों में जो देती है कुछ धूमिल कुछ स्पष्ट से स्मृति, और गढ़ती है जो मेरे मन में एक सुकून भरी आकृति। बड़े ही साधारण से जो असाधारण एहसास दे गए, बड़े ही साधारण से जो असाधारण एहसास दे गए, पूर्ण करके हमें अपूर्णता वाली याद दे गए। इन सब का सार एक ही है, इन सब का सार एक ही है, एक ही मूल है इन रिक्तियों का, इन सब का सार एक ही है, एक ही मूल है इन रिक्तियों का। अब ये भार जिम्मेदारियों का या उनके सजाए संसार का, मुझे ही उठाना होगा। काश वो खुशनसीब दिन मिल जाते मुझे जिसमें हक से कह पाता कि पापा आपको आना ही होगा, पापा आपको आना ही होगा। मेरी आखिरी कविता का शीर्षक है पहचान। कल और काल दोनों समय के परिचायक हैं, ज्ञात है ये दोनों एक दिन बीत जाएंगे, पर विषय ये है कि हम कब तक इस पर विजय पाएंगे। विजय अर्थात यह नहीं कि उसका कद छोटा कर स्वयं बड़े बन जाएं, तात्पर्य मात्र इतना है कि त्रेता से राम नहीं, राम से त्रेता जाने जाए। लड़ाई बीते हुए कल की नहीं, अपने अस्तित्व और मान की है, लड़ाई बीते हुए कल की नहीं, अपने अस्तित्व और मान की है। समय हमसे नहीं, हम समय से हैं, बात सिर्फ अपनी एक अलग पहचान की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने काव्य पाठ को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।
0: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ, कवयित्री थीं स्वाति सिन्हा। अब सुनते हैं कहानी। आज की कहानीकार हैं बेबी कुमारी। बहनों, कहानी सत्य को उजागर ही नहीं करता वरन हमारा मनोरंजन भी करता है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। उम्मीद है यह आप बहनों को भी पसंद आएगी।
7: ये कहानी है उस बेटे की जो अपना जीवन अपने ही जन्मदाता के प्रति समर्पित करना चाहती है, पर उसे इस रास्ते पर चलने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। छाया अपने घर की लाडली है, उसमें ही मानो उनके माँ पापा और भाई की खुशी और जिंदगी दोनों बसती है। छाया का बचपन बड़े लाड और प्यार से बीता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सभी की जिंदगी में माँ पापा एक भाई और छाया एक प्यारा सा परिवार। जिंदगी इतनी अच्छी चल रही थी, गम का दूर दूर तक बसेरा नहीं था। पर वे कहते हैं ना कि ज़्यादा खुशी गम दिनों की ही मेहमान होती है। छाया के परिवार के साथ भी यही कहावत सत्य साबित हो गई। हंसी खुशी से भरे परिवार में एक दिन मातम का सन्नाटा पसर गया। छाया का एक लौता भाई जो पूरे परिवार का जान था, एक सड़क दुर्घटना में अपनी जिंदगी को अलविदा कह गया। इस घटना से मानो उस घर की जिंदगी थम सी गई। भाई की मौत के बाद उनके माँ पापा अब जीना भूल चुके थे। छाया लाख कोशिश करती अपने माँ पापा को खुश करने की, जिससे उन्हें कुछ सहज महसूस हो, लेकिन हर बार वह नाकाम ही रहती थी। इसी तरह दिन रात में और रात महीनों में और महीने साल में बदलते चले गए, लेकिन छाया के घर की कोई खुशी कभी नहीं लौटी। कई वर्ष बीत गई, देखते ही देखते अब छाया की उम्र शादी की हो गई। आस पड़ोस सभी लोग छाया की शादी को लेकर कहा सुनी करने लगे। ये सब बातें सुनकर छाया दुखी रहने लगी। फिर अगर मेरी शादी हो गई तो उनके माँ पापा को कौन संभालेगा? अभी छाया के मन ही मन इन सब सवालों का उथल पुथल चल ही रही थी कि इतने में ही उनके पापा ने आकर छाया से कहा, बेटा कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अपने पापा से यह सुनकर छाया काफ़ी मायूस हो गई, क्योंकि छाया ने अपने पिता की आंखों में एक मायूसी दिखी। उसने पिता का दुख देखा जो छाया के लिए असहनीय था। रात भर वह सोचती रही कि एक बेटी चाह कर भी अपने पापा की खुशी नहीं ला सकती। वह लाडली तो बन जाती है, पर अपने माँ पापा का सहारा नहीं बन पाती। अगले ही सुबह छाया ने अपने पापा से कहा, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती। छाया की ऐसी बात सुनकर उनके माँ पापा हैरान हो गए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? तुम कुछ और कहना चाहती हो? बोलो बेटा, हम तुम्हारा ब्याह वहीं करवाएंगे जहां तुम चाहती हो। अपने पापा के इतने सारे सवालों का छाया के पास कोई जवाब नहीं था, पर उसने बस एक ही बात कही, पापा मैं अपनी जिंदगी माँ और आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। आप दोनों का सहारा बनना चाहती हूँ। मैं आप दोनों से अलग नहीं रह सकती। छाया की बात सुनकर माँ कहने लगी, बेटा माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो बेटा होता है। बेटियां तो पराया धन है, जिसे एक दिन दूसरे के घर का सहारा बनना पड़ता है। अपनी माँ की बात को सुनकर छाया के आंखों में आंसू आ गए और वह अपने माँ से लिपट कर कहने लगी, आखिर क्यों माँ, बेटियों को पराया समझा जाता है। क्यों नहीं बेटियां अपने माँ पापा के बुढ़ापे का सहारा बन सकती है? बेटा हो या बेटी, दोनों का जन्म तो एक ही घर में होता है, तो बेटियां हमेशा बेघर क्यों हो जाती है? इतना प्यार और लाड़ से रखने के बाद भी उसे पराया क्यों कहा जाता है? कहने को तो ससुराल घर होता है बेटियां का, पर ज़्यादातर बेटियां तो ससुराल जाने के बाद कहीं की नहीं रहती। माँ बाप का प्यार दुलार और उनकी छाया बेटियों की जिंदगी से जैसे खत्म हो जाती है। मैं पापा की छाया हूँ और अपने दोनों से कभी भी अलग नहीं हो सकती हूँ। आपने इतने सारे सवालों से छाया ने अपने माँ पिता का दिल झकझोर दिया। उनके लाख समझाने पर भी छाया शादी के लिए राजी नहीं हुई और अपने निर्णय पर अड़ी रही। अब छाया ने बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपने माँ पापा के साथ रहने लगी, पर मायूसी जैसे उनके घर में डेरा बनाकर बैठ गया, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो अब उन्हें छाया की शादी की भी चिंता सताने लगी। परिवार का हर सदस्य जैसे दुखों और चिंता की रूपी दलदल में फंसते चले जा रहे थे। अब हर क्षण छाया यही सोचती रहती कि क्यों एक बेटी अपने पापा को बोझ लगने लगती है? क्यों समाज वाले हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि बेटी अपने माँ पापा का सहारा नहीं बन सकती? क्यों हर बार बेटी को ही अपने त्याग करना पड़ता है? क्या रिश्ते सिर्फ त्याग से ही बनते हैं, समर्पण से नहीं? अगर एक बेटी बहू बनकर सास ससुर की सेवा कर सकती है, तो फिर एक बेटा क्यों नहीं दामाद बनकर अपने सास ससुर का सहारा बन सकता है? ऐसे ही अनगिनत सवालों के उलझन में फंसी छाया ने अहम फैसले ले लिया। वह फैसला यह था कि उसने अपने माँ पापा के समक्ष यही शर्त रखा कि जो मेरे माँ पापा को अपना माँ बाप समझकर और आजीवन हमारे पास रहेगा, मैं उसी से विवाह करूँगी, अन्यथा नहीं करूँगी। पर आपने तो सुना ही होगा कि एक बहू के रूप में बेटा तो अक्सर मिल जाती है, पर एक दामाद के रूप में पर आपने तो सुना ही होगा कि एक बहू के रूप में बेटी तो अक्सर मिल जाती है, पर एक दामाद के रूप में बेटा मिलना बड़ा मुश्किल होता है। छाया के इस फैसले के कारण लगभग 10 से 12 वर्ष बीत गए और अब छाया के पिता भी काफ़ी बीमार रहने लगे। चूँकि छाया केवल ट्यूशन पढ़ाकर ही सारा खर्च उठा रही थी, इसलिए उसे काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ता था। तभी एक दिन छाया के पिताजी को हार्ट अटैक का दौरा आ गया। पिताजी के इलाज के खर्च में असमर्थ छाया काफ़ी डर गई और अपने पापा की पुश्तैनी जमीन बेचकर पापा के इलाज कराया। पापा तो बच गए, लेकिन अब छाया की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी। उसने माँ से कहा कि माँ, अब मेरी इतनी सी कमाई से घर का खर्च और पापा की दवाइयों नहीं हो पा रही है। चलो माँ पापा, हम शहर चलते हैं, वहाँ मैं कुछ ज़्यादा रुपए कमा सकती हूँ। और छाया अपने माँ पापा को लेकर शहर चली आई और कुछ ही दिनों के प्रयास से छाया को एक प्राइवेट कंपनी में कलर की नौकरी मिल गई। चूँकि छाया पहले से ही होनहार थी, उसको ऑफिस में भी उसे सभी चाहने लगे। उसके अच्छे व्यवहार और काम के प्रति उनका समर्पण देखकर छाया को बॉस उसे मन ही मन चाहने लगी। एक दिन छाया के ऑफिस में मीटिंग के दौरान उनके बॉस ने छाया के समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। छाया डर गई और कहा, नहीं सर, मैं शादी नहीं कर सकती। पर छाया क्यों, बॉस ने पूछा। छाया ने कहा सर मैं अपने माँ पापा की इकलौता सहारा हूँ, मुझे उनका ख्याल रखना है। सर ने कहा, ख्याल तो तुम शादी के बाद भी रख सकती हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने देखा है, कई प्रयासों के बाद जब छाया को यह विश्वास होने लगा कि वाकई समर बॉस मेरे माँ पापा का ख्याल रख सकते हैं, छाया ने शादी के लिए हाँ कर दिया। बड़े ही शान से छाया और उसके बॉस समर की शादी हो गई और शादी का सारा खर्च छाया के बॉस सर ने ही उठाया। सब लोग मानो अच्छे से लिपट गया और उनके माँ पापा काफ़ी खुश रहने लगे, मानो जिंदगी उन्हें फिर से रंगीन लगने लगी। महीने साल बीतते गए, छाया मानो अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाकर काफ़ी खुश थी। इसी बीच उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई और इसी बीच उनकी मौत हो गई। छाया पर फिर एक बार दुखों का सैलाब उमड़ गया। उसके पति भी छाया का सहारा बनने से मुकरता नजर आया। जब छाया ने कहा कि माँ, अब आप मेरे साथ रहेंगे, तो छाया के पति ने वृद्ध आश्रम में रखने की बात करने लगे। छाया यह सुनकर चिल्लाई और बोली, मेरे रहते हुए मेरे माँ वृद्ध आश्रम क्यों जाएगी, अभी इनकी बेटी है इसकी सेवा करने के लिए। पर उनका पति कहने लगा कि छाया, माँ हमारे साथ कैसे रह सकती है, यह मेरी सास है, माँ नहीं। उनका यह एक वाक्य छाया को झकझोर कर रख दिया। वह समझ चुकी कि उनका सवाल सही था, कोई भी दामाद कभी बेटा नहीं बन सकता है। छाया वहीं रुक गई और वापस अपने माँ के साथ आ गई। उनका पति लाख विनती करता रहा, पर छाया ने बस एक ही जवाब दिया, यह मेरी माँ है, कोई वस्तु नहीं जिसे मैं कहीं रखकर चली जाऊँ। आप अपने वादे से मुकर सकते हैं, पर मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकती। अब छाया फिर से वहीं आ पहुँची जहाँ से वो आगे बढ़ी थी और बार बार अपने किस्मत को कोसती कि जिंदगी ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया है, बस माँ है और जिसे वो बहुत ज़्यादा चाहती है। एक लड़की आजीवन अपने सास ससुर की सेवा करती है, पर एक लड़का कभी भी अपने सास ससुर को नहीं अपना सकता। यदि ऐसा होता, शायद आज छाया का घर बर्बाद ना होता।
0: अभी बहनें सुन रही थी कहानी। आज की कहानीकार थी बेबी कुमारी। अब बहनों, चलते चलते उठाते हैं गीत का आनंद और अब सुनते हैं प्यारा सा गीत।

आप सुन रहे थे महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम नारी लोक, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। नीचे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: नंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
3: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर

चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
2: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
2: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
2: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो।
1: हाँ।
2: रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
0: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच

0: एक भाई है, है? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
2: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
4: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
4: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
4: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
5: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
4: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर का ठीक 1 बज रहा है। लीजिए सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारा कलाकार हैं सुलेखा कुमारी। आरंभ में आइए इनसे सुनते हैं ये लोक भजन।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारी कलाकार हैं सुलेखा कुमारी, इन्हीं के गाए लोक गीत आप एक बार फिर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद।

0: करने का निर्देश दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अपने आदेश में रांची के एसएसपी को मंदिर परिसर के बाहर 24 घंटे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती का निर्देश दिया है। अदालत ने 23 जून तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाला मामले में आरोपी अमित गुप्ता ने औपबंधिक जमानत देने का आग्रह करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान याचिका इसलिए खारिज कर दी क्योंकि रिम्स की ओर से निचली अदालत को बताया गया था कि रिम्स में इलाज की पूरी व्यवस्था है। बता दें कि अमित गुप्ता ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए रिम्स की जगह कहीं बाहर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए औपबंधिक जमानत याचिका दायर की थी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल उन्मूलन नक्सल मुक्त भारत अभियान का सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रभावित क्षेत्र के लोग केंद्र सरकार की इस पहल से लाभान्वित हो रहे हैं।
1: पहले और अभी में बहुत ही अंतर आया है क्योंकि इससे पहले हमारे गांव के लोग बहुत ही डरे सहमे रहते थे और कब क्या हो जाएगा किसी को अंदाजा ही नहीं था। हालांकि कुछ महीना से देखा जा रहा हमारे क्षेत्र में जो गतिविधियां थी नक्सलियों का वो भी थम सा गया है और विकास का गति तेज हुआ है और इससे हम सभी बहुत ही खुश हैं।
0: झारखंड में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल उद्योग को अतिरिक्त सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी पूर्वी सिंहभूम जिला उद्योग केंद्र के GM रविशंकर प्रसाद ने बिष्टुपुर चैंबर भवन में आयोजित हस्तशिल्प निर्यात विपणन जागरूकता कार्यक्रम में दी। उन्होंने उद्यमियों को इस सब्सिडी का लाभ उठाने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जामताड़ा में उत्साह का माहौल है। महिलाएं योग अभ्यास केंद्रों से जुड़कर नियमित योग अभ्यास कर रही हैं। जामताड़ा के कोट रोग योगाभ्यास केंद्र की संचालिका प्रीति सिंह ने बताया कि महिलाओं का मानना है कि स्वस्थ जीवन शैली में नियमित योग अभ्यास अत्यंत जरूरी है।
2: पहले योगा के प्रति लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री योगा के बारे में बताना शुरू, तब से लोग थोड़ा सा जागरूक हुए हैं। महिलाएं घर से निकल के योग के प्रति थोड़ा सा ध्यान दे रही हैं, योगा क्लास में आ रही हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज योगा रेगुलर कीजिए। एक स्वस्थ नारी ही एक स्वस्थ परिवार की गठन कर सकती है। आप सभी रेगुलर योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए।
0: टाटा जूलॉजिकल पार्क में 16 वर्षीय अफ्रीकी शेरनी जोया की मौत के बाद उसी के साथ दक्षिण अफ्रीका के प्रीटोरिया से 2011 में लाए गए 17 वर्षीय अफ्रीकी शेर की हालत भी चिंताजनक है। टाटा जू के निदेशक डॉक्टर नईम अख्तर ने बताया कि शेर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है। घरेलू शेयर बाजार आज दोपहर से पहले तक मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक गिरकर 77,051 पर और निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,050 पर था। इधर राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,55,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप कल से शुरू हो गई। खेल विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने नव निर्मित अत्याधुनिक स्केटिंग रिंक का उद्घाटन कर पहली रेस को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह में ओलंपियन अनीश राज और के शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान जारी। तीनों प्रत्याशियों ने विधायकों के समर्थन से

0: अपनी अपनी जीत का दावा किया। केंद्र सरकार झारखंड बिहार समेत देश भर के कई राज्यों में वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का करेगी निर्माण। राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग ने अधिकारियों को वित्त वर्ष 2026-27 में 27,000 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर रांची एसएसपी को 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने का दिया निर्देश। और राजधानी रांची में 12वीं रैंकिंग नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोक गीतों के कार्यक्रम लोक रंग का शेष भाग। आज के हमारे कलाकार हैं सुलेखा कुमारी। आइए इस भाग के आरंभ में इनसे सुनते हैं पहले ये झूमर।

आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज की हमारी कलाकार थी सुलेखा कुमारी। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए धारावाहिक गंगा के सुरताल की छठी कड़ी।

0: पहाड़ प्रकृति की एक अनोखी रचना है। जिस प्रकार इसकी भौगोलिक रचना विशिष्ट है, ठीक उसी प्रकार यहाँ के निवासियों की जीवन शैली भी विशिष्ट है। भौगोलिक रचना की जीवन शैली पर जो छाप हमें दिखाई देती है, वो उनके गीत संगीत में भी दिखाई पड़ती है, फिर चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊं।
1: हमारी इस कड़ी में गंगा पहाड़ी क्षेत्र से उछलती कूदती ऋषिकेश की समतल धरती पर प्रवेश करती है।
0: ऋषियों की तपस्थली ऋषिकेश के प्रवेश द्वार के रूप में लक्ष्मण झूला में गंगा का स्वागत बड़े बड़े आश्रमों, मंदिरों एवं विशाल घाटों पर किया जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल एवं सायंकाल में गंगा की वंदना अर्चना विधि विधान से की जाती है। यहाँ गंगा शास्त्रीय नृत्य मुद्रा में बड़ी मनोहारी लगती है।
1: लक्ष्मण झूला से लगभग 1 किलोमीटर आगे राम झूला पुल है। बाएं तट पर स्वर्गाश्रम आदि अनेक दर्शनीय मंदिर हैं, जिनके दर्शन हेतु हजारों तीर्थयात्रियों की भीड़ प्रतिदिन उमड़ती रहती है।
0: ऋषिकेश में मिश्रित संस्कृति एवं लोक भाषा बोलने वाले निवास करते हैं। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग आकर बस गए हैं और उनकी संस्कृति एवं परंपरा में गंगा हर तरह से जुड़ गई है।
1: यहाँ के लोकगीतों में हमने कुमाऊं क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति को गंगा के सुरताल के माध्यम से सजाया है।
0: प्रत्येक लोकगीत को गाने का माध्यम ऋतु, समय, स्थान या पर्व होता है।
1: मांगलिक गीत जो विभिन्न संस्कारों के समय जैसे पुत्र जन्म, छठी, नामकरण, यज्ञोपवीत तथा विवाह आदि में गाए जाते हैं।
0: रात्रि जागरण में अक्सर देवी देवताओं की स्तुति होती है। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु एक विशिष्ट शैली में वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत को गाया जाता है।

0: इस गीत में देवी के रूप में गंगा की आराधना की गई है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश के उच्च हिमखंडित शिखरों पर स्थित गोमुख से निकलकर गंगा हिमालय क्षेत्र की संस्कृति तथा प्राकृतिक समतल धरती ऋषिकेश में प्रवेश करती है। गंगा आगे आगे जहां तक बढ़ती गई, लोगों को नया जीवन दान मिला और भागीरथ के पूर्वजों को श्राप से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा जाता है।
1: गंगा की चमचमाती धारा अपनी मस्ती में पहाड़ों से उतर रही है। चारों तरफ हरे भरे वन हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फ सफेद मखमली चादर की तरह ढकी हुई है। पशु पक्षियों का कलरव, फूलों की मधु सुगंध चारों तरफ फैल रही हो, तो ऐसे मौसम में यदि पति पत्नी से दूर होता है तो उसके लिए ये विरह की वेदना असहनीय हो जाती है। कुछ ऐसे ही भाव हैं इस गीत के।

0: प्रस्तुत गीत में एक पत्नी की विरह वेदना को दर्शाया गया है। चांदनी रात है, पत्नी विरह वेदना में तड़प रही है। तभी पहाड़ी पर उसे कस्तूरी मृत दिखता है, जिसकी चपलता को देखकर उसे अपने प्रियतम की याद आती है और वो प्रियतम से मिलन के उपाय सोचने लगती है।
1: प्यार के लिए चांद सूरज को नीचे लाने की बात हो या तारे तोड़ने की, सब कुछ अत्यंत सहज और आसान सा लगता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसी बातों का महत्व कम होता जाता है।
0: बढ़ती उम्र में विरह की वेदना का कारण ईश्वर होता है और मिलन स्थल तीर्थ स्थान में बदल जाता है।

0: अभी इस गीत में पति अपनी पत्नी गोपुली से कहता है, हे गोपुली, चल सामान बांध, हम दोनों गंगा स्नान करने चलते हैं। गंगा किनारे फूल आदि चढ़ाकर उसकी पूजा कराते हैं।
1: गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक बहते बहते न जाने कितने लोगों का कल्याण करती है। करोड़ों लोग इसमें डुबकी लगाकर अपने को धन्य मानते हैं। इसमें चाहे कितनी भी गंदगी समा जाए, फिर भी ये पवित्र है और सदैव रहेगी। मानव समाज पर गंगा के उपकार को नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए वेद पुराणों से लेकर आज तक इसके गुणों का बखान होता आ रहा है।

0: प्रस्तुत गीत मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला चांचरी गीत है, जिसमें गंगा की महत्ता का वर्णन किया गया है।
1: गंगा मानव पर सदियों से उपकार करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी।
0: बसंत का महीना, पहाड़ों में चारों तरफ हरियाली, लहलहाते खेत, चहचहाते पक्षी, मधुर सुगंध बिखेरते फूल, इस सब को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग इन पहाड़ों पर ही केंद्रित है।

प्रस्तुत गीत में जहां एक ओर प्रकृति का चित्रण किया गया है, वहीं पहाड़ी महिलाओं के उस पक्ष को भी चित्रित किया गया है जिसमें वो जीवन यापन के लिए संघर्ष करती हैं। संघर्षमय जीवन में भी लोग मनोरंजन के साधन ढूंढ ही लेते हैं। इस गीत में प्रेमी प्रेमिका से मेले में चलने का आग्रह करते हुए कहता है, जिंदगी दो चार दिनों की है तो क्यों ना इसे हंस खेल कर जिए, इसलिए चलो दोनों साथ चलकर मेले का आनंद लें।

0: ज्यों ज्यों आदमी की उम्र बढ़ती जाती है उसका वैराग्य भाव बढ़ने लगता है और वो मेलों में नहीं तीर्थ स्थलों में जाने की बात करता है, गंगा में नहाने की बातें करता है।
1: इस गीत का भाव कुछ ऐसा ही है। पति अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारी चौथी अवस्था आ गई है, अब हम किसी तीर्थ स्थान की ओर चलें जो गंगा के किनारे हो, जहां पर उत्सव मनाया जा रहा हो। अब हम वहीं पर अपना बसेरा करेंगे।

0: युग युग से गंगा की पूजा अर्चना होती आई है।
1: ऋषिकेश में गंगा स्नान या गंगा दर्शन का विशेष महत्व है।
0: गंगा के सुरताल में ऋषिकेश में बसने वाले कुमाऊं के लोकगीतों में गंगा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन सुनने को मिला।

0: इस गाने में हुड़का, ढोलक, थाली और हारमोनियम आदि साजों के साथ कुमारी संगीता, दिव्या जोशी, देवेंद्र प्रसाद जोशी, राजन पंत, विनोद पंत, सतीश, कैलाश चंद्र जोशी आदि कलाकारों ने इस कड़ी को सजाया।
1: मोमेंटस प्रोडक्शन और उनके तकनीकी सहयोगी दासमती चार्टर, अशोक शरण, अखिलेश अखिल, नारायण साहू एवं विकी के साथ अगली कड़ी में हम गंगा की महत्ता और उसके इतिहास के साथ फिर प्रस्तुत होंगे।
2: हर हर गंगे, हर हर गंगे।

आप सुन रहे थे धारावाहिक गंगा के सुरताल की छठी कड़ी। इस धारावाहिक के लेखक थे रमेश रमण। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारी शूटिंग घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। आइए शामिल होते हैं पटना के प्रसारण सभा में प्रादेशिक समाचारों के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को नए जोश के साथ संरक्षित, प्रोत्साहित और आगे बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर पुरातन वस्तुओं की वापसी से लेकर आध्यात्मिक और तीर्थयात्रा संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक के प्रयास लोगों को भारत की शाश्वत परंपराओं से फिर से जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमान के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत एवं पारण परेड समारोह में 5,009 प्रशिक्षित गृह रक्षकों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा, आपदा के समय सहायता तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में होमगार्ड जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण है और जनता की सेवा ही उनका सर्वोच्च दायित्व है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विभूति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर भी समारोह में मौजूद रहेंगे। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र की वैधता उसे जारी करने की तिथि से एक साल तक के लिए मान्य होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तिथि से 31 मार्च को इसकी वैधता समाप्त हो जाती थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सीवान और गयाजी में यह सेवा केंद्र खोले गए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए पटना, खगड़िया, जमुई, नवादा, नालंदा, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और समस्तीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा वर्षा के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की प्रबल संभावना है। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के सकाफती विरसे को नए जोशो खरोश के साथ महफूज आगे बढ़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि विरसा भी तरक्की भी के नुक्ते नज़र से मुतासिर होकर कदीम नवादिरात की वापसी से लेकर रूहानी और ज़ियारती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तक की कोशिशें लोगों को भारत की लाजवाब रवायतों से दोबारा जोड़ रही हैं। मरकजी हुकूमत माली साल 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से ज़्यादा देही सड़कों की तामीर करेगी। वजारत देही तरक्यात के मुताबिक वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबा PMGSY और मुतालका देही राबता पहलों के तहत देही सड़कों की तामीर के लिए 18,900 करोड़ से ज़्यादा रुपए अलॉट किए गए हैं। देही सड़क राबता प्रोजेक्टों की रफ्तार का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही जायज़ा मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग की सदारत महकमा देही तरक्यात के सेक्रेटरी रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई रियासतों के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में रियासतों को वज़ीर आज़म देही सड़क मनसूबा और PM जनमान के तहत ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्टों पर तेज़ी से काम करने की हिदायत दी गई है। इसमें खसूसी तौर पर कमज़ोर आदिवासी ग्रुप की बस्तियों पर ध्यान मरकूज किया गया है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना के गांधी मैदान में मुनक्दा बिहार होमगार्ड के कन्वोकेशन और पारण परेड तकरीब में 5,000 नए तरबियत याफ्ता होमगार्डों के पासिंग आउट परेड की सलामी ली और परेड का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ और आफात के वक्त मदद और कानूनी निज़ाम को बनाए रखने में होमगार्ड जवानों का किरदार अहम होता है और अवाम की खिदमत ही उनकी अहम जिम्मेदारी है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। बिहार के पहले नायब वज़ीर आला बिहार विभूति

0: अनुग्रह नारायण सिंह का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर बिहार कानून साजिया के कैंपस में मुनाकिद खसूसी सरकारी तकरीब में वज़ीर-आला सम्राट चौधरी ने बिहार विभूति के मुजस्मा पर गुलपोशी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इधर पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का यौम तासीस भी आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुनाकदा प्रोग्राम में वज़ीर-आला सम्राट चौधरी मेहमान खसूसी की हैसियत से शरीक होंगे। वज़ीर हायर एजुकेशन संजय सिंह टाइगर भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रियासती हुकूमत ने कहा है कि माली तौर पर कमज़ोर तबका EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इसे जारी करने की तारीख से एक साल तक के लिए वैलिड होगी। पहले इसे जारी किए जाने की तारीख से 21 मार्च तक इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती थी। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी है। रियासत के 6 अजला में 20 जून से पासपोर्ट सर्विस सेंटर काम करने लगेगा। रीजनल पासपोर्ट दफ्तर पटना से मौसूला इत्तला के मुताबिक मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी, मगरबी चंपारण के बेतिया, अररिया के फॉरबेसगंज, गोपालगंज, सीवान और गयाजी में ये सर्विस सेंटर खोले गए हैं। महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ घंटों के लिए पटना, खगड़िया, जमुई, नवादा, नालंदा, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और समस्तीपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वस्त दर्जा की गरज, बिजली और बारिश के साथ 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवा चलने का पुरजोर इम्कान है। एक्साइज सिपाही भर्ती इम्तहान के दौरान दरभंगा के मुख्तलिफ इम्तहान मराकज से 6 नकली उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के बाशिंदा हैं। मुलजिमीन के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक अशिया बरामद किए गए हैं। इस मामले को लेकर जिला के मुख्तलिफ थानों में मामला दर्ज कराया गया है। अररिया जिला के भारत नेपाल सरहद से मुंसलिक बसमतिया थाना हल्का से पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगहर थाना हल्का के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए अब रोजगार सूचना सुनिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एवं कंप्यूटर असिस्टेंट के कुल 543 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा हो या ओ लेवल या

हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण सभा में दोपहर समाचार के लिए। कृपया कुछ पलों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति की शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाट बद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
3: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू। शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशन में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और FM के 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली का एक दो गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

कर्म का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कुर्बान से, आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार। विज्ञान

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: लीजिए सुनिए 10 नंबरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर से।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। आज हम आपको इस कार्यक्रम में चंदन दास के गाए कुछ गजल सुनवा रहे हैं। आइए आरंभ में इनसे सुनते हैं ये निदा फासली का कलाम।

आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार थे चंदन दास। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे थे देशभक्त गीत मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्स और एफएम के 110.1 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद के 3:25 हो चुके हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें खरीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देखकर खरीद ली जाती हैं चीजें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देख कर घबराइए मत, अपितु उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजा कर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीजें ही क्यों ना हो, तो बिल्कुल सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जो ऐसी चीजें जो इतनी जरूरी नहीं भी है आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीजें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीजें हमें नहीं मंगानी चाहिए ऑनलाइन। और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
0: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज के कपड़े, खराब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षा यानी रिव्यूज जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफंड की जो नीतियां हैं, इन सब चीजों को एक बार जांच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है, यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
1: बिल्कुल। और चंचल देखो एक अंतराल का समय हो गया
0: जी।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज के मंगवाए थे उसे साइज में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और व्हाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था, मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीजें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीजों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीजों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेते हैं।
0: लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब की चीजें खराब भी आती हैं।
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं
0: जो
1: उनको पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूं तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएं देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी, बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहां पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी के जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचली इतना अच्छा, इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है। वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि एक गीत सुनने
1: पहले गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, गीत सुन लेते हैं।

0: इनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो भाई खाना बनाते समय कुछ जरूरी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे श्रोताओं ने हमें लिखकर
4: बहुत कुछ लिख डाला है भाई और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं, और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना जरूरी है, और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है? बना कर देगी, स्वाद में अंतर जरूर नजर आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
3: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा ये जो कार्यक्रम है,
4: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
3: लेकिन मैंने कहा अमूमन ही
4: हाँ, ये तो है
3: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
4: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
3: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
4: अच्छा।
3: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
4: जी। बिल्कुल,
3: चाय की एक बूंदी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी टिप है,
4: बहुत जरूरी।
3: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वहीं पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते हैं। तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंदी गिरी है तो वो ना हो,
4: एकदम साफ सुथरा किचन मिले बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं, तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं, और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है, और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
3: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं, तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें, इससे वो काले नहीं पड़ेंगे, और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगो कर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अरे
4: वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मजेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है, उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ
3: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
4: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
3: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज कम या ज्यादा ना हो जाए।
4: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी छोटी छोटी गोलियां बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
3: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उस पर थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
4: बिल्कुल। और चंचल जी हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने

0: लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं है तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट ले और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
3: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत जरूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे

0: खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य, जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
1: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन हैं उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
0: बिल्कुल।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा।
1: हाँ हाँ, जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता है इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, मैं लक्ष्मण सिंह चंदेल बात कर रहा हूं मैम, ग्राम बोतराई, तहसील पथरिया, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से।
0: तो आपका गांव कैसा है, जरा गांव की कुछ विशेषता बताइए अपने।
1: गांव बहुत बड़ा है मैम, यहां की मतलब आबादी 5000 की समथिंग है मैम।
0: और पैदावार क्या होती है?
1: यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती है सोयाबीन की।
0: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच प्रोटीन होता है।
1: जी जी मैम।
0: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
1: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
0: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूँ धान, इन सब में क्या होता है सादा पैदावार?
1: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
0: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
1: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
0: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने तो 4-5 बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
1: नहीं नहीं मैम, गांव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं इसके 5-6 पेड़।
0: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
1: देवफासनम का सुनना है मैम।
0: कौन सा?
1: अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
0: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में ऐसा गाने?
1: नहीं नहीं मैम, तरफ पर नहीं, नहीं पसंद नहीं है मैम।
0: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं, और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है, और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टेल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाते हैं वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चल रहा है, गर्मी भी है लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी,
0: 48
1: नॉर्मल सी लगती
0: जी। तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं, उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगह पर जाते हैं जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ है, चाहे अगर आप पहलगाम की बात करेंगे सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्र की, तरह की नदियाँ हैं जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है, और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान
0: वो,
1: आपको पता है ये पहलगाम कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के मौसम में गए थे। अच्छी बात ये है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा ही देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: बहुत बड़ी बात
1: वहाँ
0: बताई, रेडियो अब
1: हाँ
0: मिलते
1: अपन
0: नहीं
1: आते
0: है।
1: हैं, हाँ 5 बैंड 3 बैंड रेडियो
0: बंद हुआ।

0: बहुत दिक्कत
1: दिक्कत होती थी।

0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: मनोहरलाल गांधी विजयनगर तो बोल रहे था
1: जी, आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
0: कॉल लगाई आज विविध भारती
1: पर गर्मी बहुत गर्म सुना है हमने।
0: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम
1: तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन गाना सुना?
0: गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं इस प्यार मेरी तरफ देखो।
1: जी, आप तो गाते भी अच्छा खासा।
0: जी यहाँ कहते हैं करोके म्यूजिक, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
1: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि आपके पास फुर्सत के लम्हे, आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
0: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
1: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
0: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
1: क्या काम कर रहे हैं आपका?
0: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
1: तो साथ में रेडियो
0: यही
1: चलता
0: अपना
1: रहता?
0: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, अब ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है, वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल,
0: आजाद
1: बिल्कुल।
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन होता
1: होगा। ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर लगता
1: बिल्कुल,
0: है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब।
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा,
1: वैसे देखा जाए तो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गोरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल आते नहीं, तो चकली का या गोरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में। मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गोरैया बहुत है, अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है तो पक्षियों के पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी, बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन, यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है,
0: हाँ।
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा रहता है क्योंकि पवन रहता है और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है, लेकिन नीचे से ठंडा रहता है। ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर?
1: नहीं, नदी तो साबरमती नदी है और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी। और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल,

0: यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती है।
1: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
1: तो अब बातचीत करते हैं खत्म, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधान छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने आए हैं, मैं अपनी बेटी के लुक को लेकर।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, कौन से आम है, कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के, इधर हमारे पूर्वज जो है ना यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे हम आम खाने के लिए।
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपके पूर्वजों ने आम लगाया और वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़ पौधा लगाया है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है, बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ

0: लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन के गुठले होती हैं, आप वहां पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहां पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
1: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी दीदी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और इसी परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं तो लेके जाए लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि मैं पानी की वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सब जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे

0: सूखे नहीं।
1: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाए जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करते हैं तो।
0: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है, तो घर में जैसे की गाय है भैंस है, तो उन लोग का गोबर होते हैं, उनको भी जैसे कि गड्ढा खन के मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
1: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो गाँव में और क्या क्या खासियत है गाँव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
0: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे।
1: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
0: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत
1: हुआ
0: होता था
1: करता
0: जब
1: था।
0: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते हैं ना, उस टाइप का था।
1: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
0: जी।
1: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
0: जी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का

0: आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

औरों का धन सोना चांदी, अपना धन तो प्यार रहा। दिल से जो दिल का होता है वो अपना व्यापार रहा। गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ मैं प्रशांत कुमार आर्य स्वागत करता हूं आप सभी श्रोताओं का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी मेरी ही तरह कुशलता से होंगे। साथियों, आज के कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में बताऊं तो सबसे पहले आप जानेंगे सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के बारे में, फिर आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी जानेंगे। तत्पश्चात आज के साप्ताहिक स्तंभ आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में आप सुनेंगे नशा मुक्त भारत सप्ताह पर युवा साथियों से हमारी एक खास बातचीत, एवं इसके इतर आप जानेंगे 18 जून को इतिहास में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, एवं रोज की तरह करंट अफेयर्स पर भी चर्चा करेंगे। और कार्यक्रम के दौरान हम लोग कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का भी लुत्फ लेंगे। तो आइए कार्यक्रम के आरंभ में जानें सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे यानी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस के बारे में। साथियों, 18 जून को दुनिया भर में सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। यह दिन पर्यावरण, संस्कृति तथा भोजन के बीच के गहरे संबंध को समझने और बढ़ावा देने का अवसर है। गैस्ट्रोनॉमी का सीधा अर्थ है भोजन बनाने और खाने की कला। इसे किसी विशेष क्षेत्र की पाक शैली या खाद्य संस्कृति भी कहा जाता है। जब इसमें सतत शब्द जुड़ता है तो इसका अर्थ ऐसी पाक कला से होता है जो पर्यावरण, प्रकृति तथा इंसानी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए बिना की जाती है। वर्तमान समय में दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण तथा संसाधनों की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। सतत गैस्ट्रोनॉमी इन समस्याओं को कम करने में मदद करती है। यह स्थानीय स्तर पर उगे मौसमी फल एवं सब्जियों के उपयोग पर जोर देती है। जब भोजन को दूर देशों से नहीं मंगाना पड़ता तो परिवहन में ईंधन कम खर्च होता है तथा प्रदूषण भी घटता है। यह हर समाज की पारंपरिक कला को और व्यंजनों को जीवित रखने में भी मदद करता है। साथियों, भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि पृथ्वी की सेहत के लिए भी जिम्मेदार है। हमारी थाली में मौजूद भोजन का हर दाना प्रकृति एवं समाज से जुड़ा है। यदि हम आज से ही समझदारी से भोजन का चयन तथा सम्मान करना शुरू कर दें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और खुशहाल ग्रह सौंप सकेंगे। दोस्तों, चर्चा में अब हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। इस गीत की शब्द रचना की है समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने, युगल आवाजें हैं कुमार सानू एवं अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना।

0: दोस्तों अब आइए जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भारत के इतिहास का एक अत्यंत गौरवशाली तथा प्रेरणादायक दिन है। हर साल 18 जून को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन करता है। सन 1858 में इसी दिन ग्वालियर के कोटा की सराय में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह पंक्तियाँ सुनते ही रगों में देशभक्ति का संचार होने लगता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत और शौर्य की प्रतिमूर्ति थीं। 18 जून का ये दिन हमें उनकी अदम्य साहस, राष्ट्र प्रेम और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। साथियों, चर्चा में आज इतना ही। अब आइए जान लेते हैं कार्यक्रम से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संदेशों को।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: बदलो बदलो, आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
6: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के विकास।

0: समाज के जन कल्याण के।
1: साथियों, इस छोटे से अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अब लीजिए सुनिए आज के साप्ताहिक स्तंभ में नशा मुक्त भारत सप्ताह पर ये बाह्य ध्वन्यांकित सामग्री। दोस्तों, युववाणी के साप्ताहिक स्तंभ आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में आज हम हैं अपने स्टूडियो से बाहर नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर अपने युवा दोस्तों को जागरूक करने। इसी कड़ी में हमारे साथ हैं सदर अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट सर। आपका हमारे साथ इस बातचीत में स्वागत है। पहले हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए।
2: मैं निशांत आजाद हूँ, मैं सदर अस्पताल भागलपुर में कार्यरत हूँ।
1: सर, जैसा कि आपको पता ही है कि 17 तारीख से नशा मुक्त भारत सप्ताह शुरू हुआ है, तो सर हमारे श्रोताओं को इस सप्ताह का बताइए, भारत सरकार इसको क्यों मना रही है?
2: इस सप्ताह का मेन उद्देश्य है, इस बार का जो थीम है हमारा 2026 का नशा मुक्त भारत अभियान का
1: जी,
2: विकसित भारत की पहचान, ये हमारा इस बार का थीम है और इसे हर जिले में मनाया जा रहा है। और चूंकि नशा से जो मेन इसका प्रभाव पड़ता है हमारे युवाओं को पड़ता है और जो आने वाले भविष्य उस पर पड़ता है
1: जी,
2: क्योंकि नशा एक तरह का भटकाव जो कि हमें हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधक उत्पन्न कर।
1: हमारे देश भारत में नशा एक गंभीर समस्या क्यों बनता जा रहा है?
2: ये गंभीर समस्या इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये हमें आर्थिक रूप से भी हानि पहुंचाती है, सामाजिक रूप से भी पहुंचाती है और शारीरिक रूप से भी पहुंचाती है, और यूं कहें तो मानसिक रूप से तो पहुंचाती ही पहुंचाती है। और जो इसके साथ साथ जो नशा करने वाले के साथ साथ जो उसके परिवार हैं, है ना, ये उसे भी समान रूप से नुकसान पहुंचाती है, चाहे वो नशा करे व ना के परिवार को भी समान रूप से नुकसान हो।
1: और सर, ज्यादातर तो ये देखने को अभी मिल रहा है कि युवा ही किल्लत में सर पड़े। तो सर, युवाओं में नशे की जो प्रवृत्ति है बढ़ने के प्रमुख कारण सर क्या क्या हो सकता है?
2: युवाओं में अब मेन कह सकते हैं जो हमारे जो ज्यादातर जो विद्यार्थी अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए घर से दूर हैं, है ना
1: जी,
2: या फिर जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो करियर बना रहे हैं, ज्यादातर हम अगर देखेंगे तो नशे में वही लिप्त, चाहे वो नशा तंबाकू हो या फिर शराब हो, और आजकल जो BS स्मैक ज्यादा चल रहा है या इंजेक्शन सूखा नशा जिसे कहते हैं, दवाई का नशा है, ये युवाओं पे ज्यादा आजकल प्रभाव पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे के साथ परिवार साथ समय नहीं व्यतीत कर पा रहे हैं। पहले क्या था, हमारे लाइफ में भटकाव कम थी और कनेक्शन भी कम थी, फोन के कारण आज क्या हो रहा है ना, हम वहाँ पहुँच जा रहे हैं जो हमें नहीं जानना चाहिए, जो हमें नहीं पता चाहिए, हम उस एज तक भी पहुँच जा रहे हैं जिस एज तक हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। छोटे जब बच्चे भी क्या है ना, बड़ों की तरह बात करते हैं, बिहेव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो पहले खेलते थे छोटे बच्चों के साथ, तो हम बच्चों से सीखते थे कैसे खेलना है, और हम बड़े हो गए और ये लोग क्या करें ना, आजकल आसानी से मिल भी जा रहा है और यूं कहें तो बंदिशें काफी कम हो गई है।
1: नशा छोड़ने के लिए सर व्यक्ति क्या क्या कदम उठा सकते?
2: नशा छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम तो ये उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी तो है नहीं कि उसका इलाज किया जाए, ये एक आदत, और आदत सबसे पहले उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो आदत है ये गलत, तभी तो हम उसके बारे में सोचेंगे ना, हमें छोड़ना, जब हमें नुकसान ही नहीं होगा, जब हमारे लिए वो गलत ही नहीं लगेगा तो हम कैसे छोड़ पाएंगे, कभी नहीं छोड़ पाएंगे। तो हमें वो पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ, हमें इससे हर प्रकार से नुकसान हो रहा है और अगर हम इसे अपने जीवन से हटा देंगे तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
1: अक्सर ऐसा देखा गया कि एक बार नशे की लत को छोड़ चुका व्यक्ति फिर उसी दलदल में सर दोबारा प्रवेश कर, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सर हम लोग क्या रोकथाम उन्हें प्रोवाइड करें?
2: जो पहला बात है, छोड़ना बहुत मुश्किल है और आसान भी। मुश्किल इसलिए है क्योंकि जो नशा के बाद जो एक अलग दुनिया उसकी हो जाती है, जो उसे मजा आता है, वो उसे छोड़ना उसके लिए मुश्किल है, और आसान इसलिए है क्योंकि आजकल हमारे अस्पताल में हो गया या फिर बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र में हो गया, या बहुत सारे काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है जो कि आपको काउंसलिंग के द्वारा छोड़ने में मदद करती है, और लगातार मतलब अगर कभी ऐसा हो जो लोग छोड़ चुके हैं तो उसे कभी ऐसा लगे तो उसे रेगुलर काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से मदद लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर से भी मिलने।
1: सर, नशे से पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से भी बहुत कमजोर हो जाता है, सर ऐसे व्यक्तियों को कैसे काउंसलिंग?
2: पहले तो काउंसलिंग उसकी की जा सकती है जो कि समझ सके कि हाँ ये है, उसके दवा के द्वारा पहले उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको कंट्रोल किया जाए, जो भी उसका विड्रॉल सिम्टम्स है नशा के कारण उसको कंट्रोल किया जाए, तब फिर वो समझ पाएगा कि हाँ ये हमारे गलत है, उसके रेगुलर काउंसलिंग कराने से ऐसा संभव है, और ऐसा होता ही
1: जी। सर, नशे से पीड़ित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसके परिवार और समाज पर भी इसका बुरा प्रभाव दिखता है, तो सर परिवार के लोगों को कैसे नशे से पीड़ित व्यक्ति को बचाना चाहिए?
2: देखिए, नशा कोई एक दिन में तो आदत नहीं होता है कि एक दिन में हो गया वो आदत, वो लंबे समय से कर रहा है, तो उस परिवार को भी लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए उस व्यक्ति पे कि हाँ, उसके व्यवहार में कोई बदलाव तो नहीं आ गया, उसकी दिनचर्या में कोई बदलाव तो नहीं आ गया, है, या फिर वो जो पहले जो परफॉर्मेंस था, चाहे उसके ऑफिस में है या फिर जो उसके फैमिली मेंबर्स में है, है ना, कोई परफॉर्मेंस में एक कमी आ गई तो फैमिली में पता होना चाहिए कि वो रीज़न क्या है, है ना। चाहे वो घर से ज़्यादा पैसा का डिमांड करे या फिर अपने ऊपर खर्च ना करके घर का जो पैसा पहले आता था, है ना, कमा के वो लगा देता था, वो पैसा नहीं दे पाए, ये सब अगर समझा जाए तो फिर परिवार समझ में आएगा उसका कारण तक पहुँचने पर। अगर इसका कारण नशा है तो उसे उसी समय अच्छे से समझा के एक काउंसलर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी चिकित्सक से सलाह लेने की अति आवश्यकता।
1: सर, हमारे भागलपुर में नशा मुक्ति के केंद्र कितने हैं सर, और कहाँ कहाँ हैं?
2: हमारे भागलपुर में नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ सदर अस्पताल में है
1: जी,
2: और मायागंज में है जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, वहाँ पे ओपीडी भी चलती है, और एक चमेली चक साइड है वहाँ पे एक एनजीओ है
1: जी,
2: वो चमेली चक साइड है सर, वहाँ पे जहाँ तक मुझे। बाकी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट भी हैं जो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, जो कि समाज को हर तरह से नशा से मुक्त करने के काफी कार्य कर रहे हैं।
1: सर, क्या नशा छोड़ने के लिए अस्पताल या रिहैब सेंटर में भर्ती होना आवश्यक है, या फिर मरीज घर पर रहकर भी इस समस्या से निजात पा सकते?
2: अगर कहा जाए अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% एफर्ट देना पड़े ना
1: जी,
2: और चूंकि स्टार्ट उसी माहौल से हुआ है, उसी ट्रिगर पॉइंट से हुआ है, वही माहौल है, वही घर है, वही दोस्त, जब तक हम उससे दूर नहीं रहेंगे तो दूर नहीं रह पाएंगे। हमें उससे दूर रहने के लिए उससे दूर रहना आवश्यक है ना
1: जी।
2: अगर हम उस दोस्त को देखेंगे, और नशा मुक्ति क्या वहाँ बंदी से, वहाँ पे आप एक कैदी के रूप में रहते हो, और वहाँ पे एक प्रॉपर टीम रहती है जो आपको सपोर्ट करती है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, काउंसलर हो, डॉक्टर्स हो, जो हमारे विड्रॉल सिम्टम्स हैं, जो शरीर में प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर्स मैनेज करते हैं, हमारे मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, है ना। और चूंकि आसपास वहाँ पे रहते हैं बहुत सारे जो छोड़ने आते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो ये 100% रिजल्ट के लिए अति आवश्यक है कि नशा मुक्ति केंद्र का सहायता लिया।
1: डॉक्टर साहब, आपके नशा मुक्ति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपना बहुमूल्य समय देकर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आशा है कि आपके विचारों से युवाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद। अभी आप आज के साप्ताहिक स्तंभ आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग में सुन रहे थे नशा मुक्त भारत सप्ताह पर हमारी ये खास बातचीत। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर, और लेते हैं सड़क फिल्म के एक प्यारे से गीत का आनंद, कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ों में।

इस गीत के बाद अब आइए बढ़ते हैं इतिहास दर्पण की ओर। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के बीच ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून को ही शुरू हुआ था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, जिसकी याद में हर साल 18 जून को ही गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ही 1815 में वाटरलू का युद्ध बेल्जियम के वाटरलू में लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई में नेपोलियन बोनापार्ट को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिस वॉज देयर फाइनेस्ट आर 18 जून को ही दिया था। दोस्तों, इतिहास दर्पण में आज इतना ही। अब आइए जानें देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। स्मृति मंधाना को टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 सूची में शामिल किया गया है। वह इस वर्ष इस लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र इंडियन प्लेयर हैं। उन्होंने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उनकी कैप्टेंसी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने 2024 और 2026 में वुमेन्स प्रीमियर लीग का टाइटल जीता। दोस्तों, समसामयिक खबरों में आज इतना ही। अब लीजिए सुनिए युववाणी कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। इस गीत के गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं जतिन ललित, फिल्म है मिस्टर आशिक और गायक कलाकार हैं कुमार सानू।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का युवावाणी कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर है। आशा करता हूँ आप सभी श्रोताओं को हमारी ये प्रस्तुतिकरण पसंद आई होगी। अगले कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त प्रशांत कुमार आर्य को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा वर्ग को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनाते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म संघर्ष का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है जतिन ललित का।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए आपको सुनाते हैं आदेश श्रीवास्तव की आवाज में फिल्म शिकारी का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है खुद आदेश श्रीवास्तव का।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
4: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनाते हैं फिल्म कसूर से अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब सुनिए अभिजीत की आवाज में फिल्म बेवफा का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए कार्यक्रम विवरण में जानते हैं हमारी आज की सभा की शेष और हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही पलों बाद यानी कि शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगी आशा देवी। आज शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, कलाकार होंगे उदय नारायण राय। आज रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। आज रात 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में साहित्य परवेश से सितार वादन राग झिंझोटी में। आज रात 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। अब एक नज़र हमारी कल की सभा की ओर। हमारी कल की सभा आरंभ होगी प्रातः 5:48 पर, जहां 5:55 पर आप सुनेंगे खेत खलिहान कार्यक्रम। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन कार्यक्रम। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कल प्रातः 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग से स्वास्थ्य लाभ पर सुरेश कुमार से वार्ता। कल प्रातः 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान पाठ, जहां गायक कलाकार होंगे हरिहरन और मिताली वी सिंह। कल प्रातः 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, जहां आप जानेंगे मौसम का मिजाज, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां और कल का इतिहास। साथ ही रसरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे सीमा बनर्जी से सुगम संगीत। कार्यक्रम में आगे 7:20 पर गांधी कथा में आप सुनेंगे गांधी और वैश्वीकरण पर डॉक्टर विजय कुमार से वार्ता। 7:30 से आप सुनेंगे फिल्मी गीत। कल दिन के 9:06 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे अनुपमा कुमारी। कल दिन के 10 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत कार्यक्रम, जहां कलाकार होंगे अरविंद कुमार यादव। कल दिन के 11 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत नई फिल्मों से। 11:30 पर आप सुनेंगे कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

गुलदस्ता। कल दोपहर 12 बजे से आप सुनेंगे नारी लोक कार्यक्रम, कल दोपहर 1 बजे से आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग, जहां कलाकार होंगे शिवशंकर कुशवाहा और उनके साथी। कल दोपहर 1:30 से आप सुनेंगे घर आंगन कार्यक्रम, कल दोपहर 2:30 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत चित्रपट से। कल शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम, 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल शाम 6 बजे से आप सुनेंगे ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम। कल शाम 7:10 पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आप सुनेंगे योग से रोगों का उपचार विषय पर योगाचार्य उमाकांत चौधरी से वार्ता। कल शाम 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी, जहाँ कलाकार होंगे वैशाखी प्रसाद। कल रात 8 बजे से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। कल रात 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल। कल रात 10 बजे से आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में अल्ताफ हुसैन से ख्याल गायन राग हेम में। कल रात 10:30 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेलों पर आधारित फरमाइसी फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न हुआ। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आप ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार
1: और सबों को कमली का भी नमस्कार। नमस्कार शंकर भाई।
0: नमस्कार कमली बहन, कहिए कैसी हैं आप सब? कुशल मंगल तो है ना?
1: हाँ, कुशल मंगल तो है ही शंकर भाई, लेकिन देखिए जेठ का जो महीना है और उस पर से ये जो पानी की आजकल किल्लत हो रही है, इससे ये जो समस्या बड़ी विकराल होती जा रही
0: बिल्कुल,
1: है
0: बिल्कुल।
1: और आप देखिए कि जल स्तर बहुत नीचे जाता जा रहा है, इस कारण से मनुष्यों को तो समस्या है ही, साथ ही पशु पक्षी जीव जंतु सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति देखकर शंकर भाई कहीं ना कहीं मन बहुत डरता है, भविष्य के लिए बहुत चिंता सी होती है।
0: बिल्कुल
1: मन में।
0: बिल्कुल कमली बहन, आपने बिल्कुल सही बात कही है। लेकिन आज पानी का जो किल्लत हो रहा है कमली बहन, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं।
1: जी,
0: एक कहावत है ना कमली बहन, जल है तो कल है।
1: जी,
0: ये सिर्फ एक कहावत और नारा नहीं है
1: जी, सच्चाई है।
0: हाँ,
1: इसमें पूरी
0: आज
1: तरह
0: की
1: से।
0: सबसे बड़ी सच्चाई है, धरती के 71% हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी है कमली बहन।
1: जी,
0: पर पीने लायक पानी की बात यदि हम करें तो सिर्फ 2.5% ही है,
1: बिल्कुल नगण्य।
0: हाँ,
1: मात्रा में
0: उसमें
1: पानी
0: भी
1: है।
0: जानते हैं 70% पानी बर्फ बनकर ध्रुवों पर जमी हुई है।
1: हाँ, या समुद्रों में है।
0: हाँ, यानी कि हमारे
1: है।
0: पास सिर्फ 0.3% पानी ही बचा है
1: जो कि मीठा पानी
0: मीठा
1: है, बाकी
0: पानी
1: जो
0: है।
1: पानी है वो खारा पानी है और किसी योग्य नहीं है।
0: नहीं।
1: तो ये जो एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है शंकर भाई। आप देखिए, कुछ समय पहले तक हमारे जो ग्रामीण हम लोग भाई बहन है, गंगा नदी में स्नान करने जाया करते थे, नदियां लबालब बारहों महीने रहती
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: थी।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन अब आप देखिए, नदियां जो है बरसाती नदियां बनकर रह गई है और इनमें पानी का प्रवाह बहुत थोड़ा
0: छोटी
1: है।
0: नदियों का, या जिनको कहिए आप गंगा की सहायक नदियां, वो तो लगभग समझ लिए नामो निशान उनका मिट चुका है।
1: जी,
0: वो बरसात के समय में ही थोड़ी बहुत पानी उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये स्थिति जो है ये बताता है कि अब हम लोग को जल संरक्षण करना चाहिए।
1: जी, हमें सचेत हो जाना चाहिए। डरावनी स्थिति है, अगर हम अभी सचेत ना हुए तो आगे की पीढ़ियां, लगता है कि जल के अभाव में उन्हें और सारी सुविधाएं तो हमने जुटा ली है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी अच्छी हो चुकी है, लेकिन जो हमारी मूलभूत जो जरूरतें हैं, अगर हम उन पर नहीं सोचते हैं तो ये बहुत ही विकट स्थिति है।
0: और जानते हैं कमली बहन, अगर भारत की हम बात करें तो दुनिया की 17% आबादी भारत में बसती
1: जी।
0: है, जिसे सिर्फ 4% पानी उपलब्ध है। और NIT आयोग के अनुसार ये कहा जाता है कि 2030 तक हम भारतीयों के पास सिर्फ 40% पीने योग्य पानी रह जाएगा। अब बताइए कितनी डराने वाली बात है।
1: बहुत ही ज्यादा।
0: बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कहीं की बात करें तो सभी क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर साल लगभग 1 मीटर नीचे जा रहा है।
1: इसका कारण है शंकर भाई कि हमने जो है जीवन शैली बहुत आधुनिक बना ली है और इस आधुनिकता की होड़ में हम पृथ्वी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: वनों को काट रहे हैं, पृथ्वी को बंजर बना रहे हैं और इसी कारण वन क्षेत्रों के कम होने से बरसात भी शंकर भाई देखिए कम होने लगी है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और साथ ही अगर कभी कभी बरसात होती है तो हमने अपने शहरों को ऐसा बना दिया है कि वो 2 घंटे की बरसात झेल नहीं पाते हैं और उसके कारण जो है जल जमाव की स्थिति हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति, क्योंकि हमने कच्ची जमीन छोड़ी नहीं है कि ताकि वो जल को, वर्षागत जल को सोख ले और जल संतुलन को अच्छा कर दे। तो ये हमारी कमी है।
0: आपने अभी पेड़ पौधे की बात की।
1: हाँ,
0: तो एक बात मैं बता दूं कमली बहन कि जल के संरक्षण का तो वन संरक्षण एक खुद ब खुद समझ में आने लगता है कि इसके बिना उसका कोई उपाय

0: नहीं है।
1: लेकिन एक पेड़, मात्र एक पेड़
0: जी
1: 2000 लीटर पानी जमीन में उतारने की क्षमता रखता
0: है। बिल्कुल। तो ये जो है, अगर आप देखिए, और वो पेड़ जो होते हैं उनके कारण वो बादलों को भी आकर्षित करते हैं, और उसके कारण जो है वर्षा होती है। और एक बात शंकर भाई, हमें कहा गया कि तरु हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तरु मित्र, हमें इनसे जरूर अपना साथ जोड़ना चाहिए। और शंकर भाई, अभी बरसात आ रही है तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी आम का मौसम है तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम आम खाते हैं, उनकी कुछ गुठलियां जो अच्छी हो उन्हें छत पर हम सुखा लें, या कुछ ऐसे ही फल हैं, लीची वगैरह, और फिर जहां हमें कच्ची जगह दिखती है हम बस कुछ नहीं करना, हमें फेंक देना है वहां। तो उससे क्या है, स्वतः वो बरसात के मौसम में अंकुरित हो जाएंगे, और अपने से ही जो पौधे अंकुरित होते हैं उन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और जब वो पृथ्वी से वृक्ष बनकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर वो छाया भी देते हैं।
1: ये तो जरूरी है ही कमली बहन, और सबसे जरूरी बात यह है कि जब हमें जरूरत पड़ती है, और स्वाभाविक है, हम मानव हैं, हमारे जीवन में अनेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो घर बनाने में, फर्नीचर में, घर में भाई खटिया चाहिए, चौकी चाहिए, पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो पेड़ तो जब पुराना हो गया तो उसे काटना ही है
0: और उससे कुछ बनाना है। लेकिन
1: ऐसे जगहों को पुनः खाली ना छोड़े,
0: ना छोड़े,
1: उस जगह पे फिर से नए वृक्षों को लगाएं, और लगाएं ही नहीं बल्कि इसका संकल्प लें और दूसरे को भी बताएं।
0: और साथ ही साथ शंकर भाई, हमें एक चीज और भी सोचनी होगी कि हमें जल को बचाना है।
1: अब जल वाली बात जब आपने कही,
0: हाँ,
1: तो आप अक्सर देखती होंगी जब आप रोड से गुजर रही होंगी तो कई जगह, सार्वजनिक जगहों पे जहाँ नल लगा हुआ है, यूं पानी बर्बाद हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं।
0: नहीं तो ये हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस नल को बंद कर देना। अगर कई बार वहां पे क्या होता है, नल टूट गई है, तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करके 10-15 रुपए की एक नल लगा दें तो बहुत लीटर पानी जो बर्बाद हो रहा है वो बच सकता है।
1: या अगल बगल वाले लोगों को कम से कम ये बताएं, भैया नल टूट गया है, थोड़ा सा उसको देख लो, किसी तरह से बंद कर दो। ये ध्यान आकर्षित कराना बहुत जरूरी है। और जानते हैं, ये तो भाई बात सार्वजनिक जगहों, घरों में भी ऐसा देखा जाता है
0: जी,
1: अब नहा रहे हैं 20 लीटर पानी में आप नहा सकते हैं,
0: झरना खोल,
1: अब यूं झरना खोल के पड़े हुए, अरे भाई बहुत गर्मी है, बहुत आनंद आ रहा है, 100 लीटर पानी
0: बर्बाद कर रहे हैं। शंकर भाई, जो अब विकसित सभ्य लोगों की बात है तो हम और भी बुरी स्थिति है, वो लोग तो पाइप लेके जो अपने वाहनों को धोते हैं, हजारों लीटर पानी उसमें बर्बाद हो जाया करता है। और ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं पृथ्वी को, हमारे जल व्यवस्था को पूरी तरह से डावाडोल कर रही है, तो हमें इन बात पे सचेत होना होगा। और एक और बात भी शंकर भाई, कि हमें वर्षा जल के संचय के और भी सोचना होगा।
1: हाँ, अपने छतों पे पानी जमा करने का वो,
0: हाँ, और हमें अपने छतों की व्यवस्था इस तरह से करनी है कि उसमें आजकल इंजीनियर इस ढंग से कर देते हैं कि छत की नलियों को पाइप के सहारे जमीन के भीतर इस तरह कर दें, ताकि या तो वो भूमिगत जल में चला जाए,
1: या फिर आप उसको जमा कर सकते हैं,
0: बनवा ली जाए ताकि उसमें उसको संचय हो सके।
1: और कुछ जरूरी आदतें, जैसे कि हम लोग टंकी भरते हैं पानी का,
0: हाँ,
1: तो मोटर चला दिए, ओवरफ्लो हो चुका है, पानी गिर रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं
0: जी,
1: है ना।
0: तो इसके लिए ऐसा करना होगा शंकर भाई, कि जब हम मोटर चलाएं तो हम या तो अलार्म लगा लें, या तो फिर हम उसी समय अपने जहाँ पे छत है पानी जमा होता है वहीं दूसरे,
1: और आज के समय में देखिए पानी की शुद्धता के लिए हम लोग क्या करते हैं, आरओ मशीन लगाते हैं,
0: हाँ,
1: और उसमें भी पीने योग्य पानी अलग निकल रहा है, और जो पीने योग्य नहीं वो अलग निकल रहा है।
0: कि ये एक बात है कि 1 लीटर पानी को शुद्ध करने में 4 लीटर पानी बहा दिया जाता है।
1: अब बताइए कि वो पानी जो बर्बाद हो रहा है तो उसको क्यों ना हम लोग पोछा लगाने में या किसी
0: कपड़े धोने में, हम
1: बागवानी में कपड़ा धोने में यूज कर, है ना,
0: कई तरह का प्रयोग कर लेने में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, साग सब्जी चावल ये सब जो धोते हैं पानी यूं हम लोग बर्बाद करते हैं,
0: उसको हम बगीचे में इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: उससे वो खाद का भी काम करेगा,
0: खाद का भी काम करेगा, और उसके पोषक तत्व जो है, जैसे चावल हम धोते हैं बहने, या चावल दाल धोते हैं, सब्जियां धोते हैं, तो उसके पोषक तत्व उसमें आ जाते हैं। अगर हम वो बागवानी में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी सब्जियां, हमारी फसलें और भी ज्यादा हरी भरी होंगी और अच्छी होंगी।
1: कमली बहन, हम लोग और भी इसी तरह आगे बातें करते रहेंगे, और जानकारियों के साथ अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में आगे हम सुनाएंगे बातें, और आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में
0: जी,
1: और सुनते हैं एक शिव भजन।
0: आइए सुनवाइए।

0: जी शंकर भाई, एक बात ये देखिए, जैसे हम लोग कह रहे थे अभी कि जैसे हमारा पर्यावरण है वो दिन पर दिन दूषित हो जा रहा है, जल भी स्तर उसका नीचे होता जा रहा
1: बिल्कुल
0: है,
1: बिल्कुल
0: तो क्या ये पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना क्या हम सबों की जिम्मेदारी नहीं है?
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये जो धरती है, ये जो हमारा विश्व है, या इसकी जो समस्याएं हैं, ये हम सबों की समस्या है।
1: बिल्कुल है।
0: अगर हम इसका सिर्फ दोहन करते हैं, सिर्फ अपना लाभ उठाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये सबका जीवन खतरे में पड़ रहा है और हम भी
1: बिल्कुल
0: इस दायित्व से मुंह नहीं चुरा सकते हैं। तो ये जो हमारा पर्यावरण है, इसको संतुलित बनाए रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है ना? तो इसी विषय पर एक पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
1: आइए सुनते हैं।
2: विश्व के समक्ष सबसे अधिक चिंता का विषय है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की समस्या के कारण मानव का, या जो कहे जीव जगत का अस्तित्व खतरे में पड़ा जा रहा है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि पर्यावरण क्या है। हम जिस वातावरण में रहते हैं, यानी हमारे आसपास चारों ओर जो प्राकृतिक आवरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। वायुमंडल, वन, पर्वत, नदियाँ, जल इत्यादि पर्यावरण के अंग कहलाते हैं। ये सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे अस्तित्व को कायम रखने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसलिए हमारे जीवित रहने की जितनी शर्तें हैं, उनमें पर्यावरण की शुद्धता जरूरी है। लेकिन आज हमारे ये पर्यावरण को ही प्रदूषित हो गया है। इस प्रदूषण के पीछे हम मानव का ही हाथ है, क्योंकि हमने अपनी सुख सुविधा और स्वार्थ के कारण प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ किया है और इसका परिणाम हुआ कि आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण के घटकों के संतुलन बिगड़ने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जानना आवश्यक है कि पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से रूप है। पर्यावरण प्रदूषण के रूप में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, रेडियो धार्मी प्रदूषण प्रमुख है। पर्यावरण को संरक्षित रखने में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वृक्षों के नहीं रहने से या इसकी कमी से पर्यावरण

0: पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। वैध अवैध तरीकों से बड़े पैमानों पर जंगलों की कटाई के कारण पर्यावरण संतुलन में बाधा उत्पन्न हुई है। पेड़ पौधे वायुमंडल के कार्बन का अधिशोषण करते हैं, इससे एक और वायुमंडल की स्थिति सामान्य बनी रहती है तथा दूसरी ओर इससे वर्षा होती है। साथ ही वनों से मिट्टी अंदर का जल स्तर ऊपर बना रहता है और मिट्टी की समस्या से भी निजात मिलता है। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा औद्योगिक कारण मोटर यान तथा कल कारखानों में अपार वृद्धि हुई है। इससे पर्यावरण में जहरीली गैस का समावेश हो रहा है, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण की समस्या दिनों दिन शुरशा की तरह बढ़ रही है। बड़े बड़े नगरों और औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले जहरीले अवशेष नदियों में गिराए जा रहे हैं, इससे जल प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है। वाहनों तथा कल कारखानों से होने वाली तेज आवाज के कारण ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। इसी तरह रासायनिक और कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से मिट्टी भी प्रदूषित हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है और संभावनाओं का खतरा बढ़ते जा रहा है। इसका सबसे भयावह प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। जहरीली गैस हवा में मिलती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, जिसका अक्सर मानव जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण में इस प्रकार के उथल पुथल से खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो रहा है। धरती की उर्वरा शक्ति का अनियमित वर्षा और प्रदूषित वायुमंडल के कारण हमारे खेती की उपज में भारी कमी हो रही है। ऋतु चक्र भी असर हो रहा है। गर्मी की अधिकता देखने को मिल रही है। पेयजल का संकट छा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ओजोन संकट उत्पन्न हो रहा है। आप ये जान लें कि धरातल से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर एक 20 किलोमीटर का गैस आवरण है, जिससे धरती की सुरक्षा होती है। इस आवरण को ओजोन मंडल कहा जाता है। इससे धरती के ऊपर वायुमंडल की सुरक्षा होती है तथा सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण ओजोन परत को पार कर धरती पर नहीं आ सकती है। किंतु आज ओजोन परत में छिद्र हो गया है। धरती के पर्यावरण को सुरक्षा देने में अब ये असमर्थ होते जा रहा है, तो खतरा बढ़ गया है। तेजाभी वर्षा के भय उत्पन्न हो रहा है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वृक्ष को लगाया जा रहा है। वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई से वायुमंडल में जल वाष्प की कमी हो गई है। वर्षा कम होने से जल स्तर जमीन के नीचे गिरते जा रहा है। इससे वाष्प निर्माण का संतुलन बिगड़ रहा है। परिणाम स्वरूप अकाल अनावृष्टि की समस्या हो रही है। मानव द्वारा ही पर्यावरण प्रदूषित की समस्या हो रही है। हम पर्यावरण की सुरक्षा करके बचाव का उपाय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पर्यावरण में हो रहे असंतुलन को हम रोककर आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और हमारा दायित्व भी बनता है कि हम पर्यावरण के प्रति सजग रहकर इसे प्रदूषण मुक्त रखें। इसके लिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, वनों की सुरक्षा की जाए, अंधाधुंध हो रहे वनों की कटाई को रोका जाए, वाहनों और औद्योगिक स्थानों से निकलने वाले धुआं हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए, इसे कम करने का प्रयोग किया जाए। शहरों के नालों और औद्योगिक स्थानों के मलबे को नदियों में गिराने से रोका जाए। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व स्तर की समस्या है, इस पर संपूर्ण विश्व को सोचना होगा। यही कारण है कि सभी देशों ने अपने अपने यहाँ पर्यावरण सुरक्षा को एक अभियान के रूप में लिया है। इस संबंध में अपने देश में कई कदम उठाए गए हैं। 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि की व्यवस्था की गई है। पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि 5 जून को आता है। पर्यावरण प्रदूषण निश्चय ही मानव जातियों के क्या संपूर्ण चराचर के लिए चिंतनीय विषय बन गई है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जन जन को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो जागरूक होना अभियान चला ही रही है, लेकिन जब तक हम पहल नहीं करेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और संभव भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ ना करे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग रहे और रहकर प्रदूषण को फैलने से रोकें, तभी मानव का अस्तित्व कायम रह सकता है।
1: जी, अगर हम पर्यावरण को अपने मूल स्वरूप में बने रहने देंगे, तभी हम जो है हम भी रहेंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रहेगी। सोचना है हमें इस बात पे और गंभीरता से सोचना है। और आगे बढ़ने से पहले शंकर भाई कुछ संदेशों को सुनते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे।
2: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt-hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
3: Nexa.
4: सुनो ना।
3: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
3: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
6: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
5: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
7: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
8: Nexa.
1: जी शंकर भाई, अब कुछ मौसम से संबंधित जानकारियां भी हम अपने श्रोता भाई बहनों को दे दें।
9: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज के लिए तो ऐसा सूचना है कि भारी वर्षा हो सकती है।
9: अच्छा।
1: और जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है और हल्की से भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है और सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है और इस अवधि में 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने की संभावना है।
9: चलिए, आपने तो मौसम सूचना दे दी और मैं किसान भाइयों को थोड़ा सा समसामयिक सुझाव भी दे देता हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल।
9: कि अभी धान के बीज बोने का समय चल रहा है और लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सब और श्री, स्वर्णा, सब एक, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, स्वर्णा, ये सारी किस्में जो है नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें। कहने का मतलब है कि जब
1: पानी
9: न बरसने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में आप खेत में उसे डालें और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर या पुआल ऐसे खाद का व्यवहार करें और जिस क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसका मतलब कहने का दसवां भाग, दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम वाविष्टिन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें
1: जी।
9: और बात आती है मक्के की, तो खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें और अनुशंसित मक्का, कहने का मतलब जो चल रहा है अभी बाजार में किसमें, वो जैसे सुआन है, देवकी है, शक्तिमान एक है, शक्तिमान दो, राजेंद्र शंकर, मक्का थ्री या गंगा 11, ये सारी चीजों को आप अपने खेत में कोई भी चुन के इसमें से लगा सकते हैं।
1: और खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी करें। स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए N53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर किस्में अनुशंसित हैं और प्याज के बीज की व्यवस्था किसी अच्छे प्रमाणित स्रोत से करें। बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें और बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए भी सलाह है कि गलाघोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराए जाने की जरूरत है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और नए गेहूं के भूसा को खिलाने से पहले 2 घंटा कम से कम पानी में भिगा दें और 50 ग्राम खनिज लवण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें।
9: बिल्कुल। और देखिए कमली बहन, अभी समय चल रहा है हमारे किसान भाई के खेत में जो मूंग लगा हुआ है
1: जी जी।
9: उसकी फली पकती है और वो तोड़ते हैं।
1: हाँ।
9: तो किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि जब आप फल तोड़ लेते
1: हैं,
9: तोड़ने के बाद जब वो पौधा बच जाता है तो उसको आप क्या करें कि हरी खाद के लिए उपयोग करें और उस खेत में जुताई करवाएं,
1: उसी तरह मिला दें।
9: हाँ, जुताई इस तरह करवाएं कि मिट्टी पलट जाए, बिल्कुल
1: पलट जाए
9: और जमीन में वो दब जाए।
1: हाँ।
9: और उसके बाद जब वर्षा होगी और जब वो सड़ेगा तो वो आपका डीएपी का काम करेगा,
1: बहुत
9: यानी हरित खाद वो जो है
1: तैयार हो जाएगी।
9: हाँ, इन सी चीजों पे ध्यान दें किसान भाइयों। और अब बात आती है आगे कार्यक्रम।
1: हाँ,
9: तो
1: अब बात आती है कि पपीते की खेती। आप ये जानते हैं शंकर भाई कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत अच्छी, अगर अच्छी तरह कोशिश की जाए तो पपीते की खेती बहुत अच्छे ढंग से होती है। और अगर हमारी जो बहनें हैं, कुछ हमारी तरह ही गृहस्थ बहनें, वो अपने प्रयास से बहुत अच्छा खेती की करती हैं और उसमें व्यावसायिक लाभ भी कमाती हैं,
9: तो गृहस्थी को संभालते हुए
1: भी
9: कार्य भी कर रही
1: हैं। तो ऐसे ही हम एक वाय ध्वन्यांकन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनते हैं। मनोरमा बहन इस बारे में बता रही हैं और इसके रिपोर्ट के संकलन करता है रविशंकर रवि। आइए सुनते हैं।
9: श्रोताओं, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कई विषयों पर, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र की बात हो या खेती गृहस्थी बात हो, हम तरह तरह के जानकार लोगों से बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं। इसी कड़ी में आइए आज हम एक पपीते की खेती करने वाली बहन जी से बात कर रहे हैं और उनके मुख से ही सुनते हैं ये पपीते की खेती किस प्रकार करती हैं और इनको पपीता की खेती करने से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। मनोरमा बहन, नमस्कार।
8: नमस्कार।
9: आप जरा बताएं हमारे श्रोताओं को पपीते की खेती के बारे में कि आप पपीते की खेती किस तरह करती हैं।
8: भाई साहब, बात दरअसल ये है कि पपीता एक ऐसा फल है, ग्रामीण इलाकों के हर घर में आपको एक दो पेड़ मिल ही जाएंगे देखने के लिए। इसका कारण है कि भाई साहब, पपीता एक ऐसा फल है जिसे हर दिन हम लोगों को पके या फिर कच्चे रूप में सब्जी बना के खाने चाहिए, क्योंकि इसके खाने से हमारे पेट की सफाई होते रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। मैंने इसी बात को ध्यान में रखकर दो पौधे लगाए हैं, लेकिन एक दिन की बात है, हमारे हाथे के अंदर लगे दो पौधे में काफ़ी पपीते फले थे और कोई पपीते का कारोबार करने वाला व्यापारी इधर से गुजर रहा था। उसने मुझसे पपीते बेचने की बात कही तो मैंने उनसे कहा कि भैया, मैंने तो इसे अपने खाने के लिए लगाए, इतना तो बेचने से मुझे क्या लाभ होगा। तभी व्यापारी ने बताया, बहन जी, आपके पपीते के पौधे में बहुत फल लदे हैं, आप चाहो तो एक पौधे का फल मुझे 15 रुपये केजी के दर से दे सकती हैं। उसकी बात मुझे अच्छी लगी और मेरा मन भी लोभ से भर आया, सोची कुछ फ़ायदा हो जाएगा। उसे मैंने लगभग 40 केजी पपीते तोड़कर बेच दिए। उसके जाने के बाद मेरे मन में एक बात आई कि हमारे घर के आंगन में बहुत जगह है, क्यों ना हम 10-15 पौधे और लगा दें। फिर क्या था, मैंने एक पका पपीता खाया और उसके बीज आंगन में जगह जगह छींट दिया। फिर एक दिन मेरे मन में बात आई कि पपीते की खेती किस तरह करनी चाहिए ताकि हमें अधिक से अधिक उपज मिल सके। इसके लिए मैंने एक दिन मोबाइल में देखा कि जब पौधा लगभग 1 फीट का बड़ा हो जाए तो उसे उखाड़ कर कतारबद्ध किसी अन्य जगह पर 2 से 3 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए और रोपने से पहले मिट्टी को गड्ढा कर थोड़ा गोबर, बकरी का भेनाड़ी, नीम की पत्ती या खल्ली उसमें डालकर उसे 15 दिन तक छोड़ देना चाहिए। पुनः 15 दिन बाद उससे मिट्टी हटाकर नया पौधा उसमें लगा देना चाहिए। ऐसा करने से पौधा जल्दी बढ़ता है और उसमें अधिक फल आता है।
9: वाह मनोरमा बहन, आपने तो हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन पपीते की खेती के लिए उचित समय क्या होता है, इसके बारे में जरा बताएं हमारे श्रोताओं को।
8: देखिए भाई साहब, मैं तो ठहरी गांव की रहने वाली, मैं तो उतना नहीं जानती, पर मैं जब भी पौधा लगाती हूँ तो लगभग 8 से 9 महीने में इसका फल बेचने योग्य परिपक्व हो जाता है और उसके लिए मुझे विशेष मिट्टी की भी पहचान नहीं है और ना ही पपीते की उन्नत किस्मों के बारे में भी जानती हूँ। मैं तो भाई साहब बचपन से बहुत जो देखते आ रही हूँ उसी हिसाब से अपनी खेती करते आ रही हूँ। मुझे आज तक इतना ही समझ में आया कि पपीता कम मेहनत में ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है।
9: अच्छा मनोरमा बहन, आप वर्ष में इससे कितने पैसे कमा लेती हैं?
8: भाई साहब, आप देख ही रहे हैं, अपने आंगन में लगभग 15 पौधे लगाए हूँ। हमारा हर पौधा लगभग 50 केजी फल जरूर दे देता है, और इस तरह मैं साल में लगभग 2 बार पपीते के पौधे को लगाती हूँ। इस तरह साल में मुझे 25 से 30 हज़ार रुपये का फायदा हो जाता है।
9: इसके लिए आपको क्या करना होता है? और मान लीजिए कि पानी उनी देने की बात आती है, तो कितने दिन पे लगभग पानी देती हैं आप?
8: 5-6 दिन में पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि
9: 5-6 दिन में या 10 दिन में, 7 दिन में पानी आप देती हैं। अब मौसम यदि अनुकूल हो तो फिर कोई बात नहीं।
8: हाँ, फिर तो प्रकृति अपने ही दे देती है पानी।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना हमारी मनोरमा बहन को कि एक गृहिणी नारी हो करके इनके मन में ये बात आई और इन्होंने उस पपीते की खेती को करना शुरू किया। ये कहते हैं ना, हाथ मैला ना गोड़ मैला, और सब काम एकदम टकाटक, तो उसी हिसाब से ये चल रही हैं। अपने घर के कारोबार को भी ये देख रही हैं और पपीते की खेती कर रही हैं, और खेती करके साल में 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक ये कमा पा रही हैं। तो अच्छा लगा इनसे मिल करके। मनोरमा बहन, आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए पुनः आपको एक बार फिर से धन्यवाद।
1: जी शंकर भाई, बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी इनकी जो कहानी है, सुनकर निश्चित तौर पे हमारी जो बहनें हैं और हमारी जो भाई हैं, उन्हें भी निश्चित तौर पर इस बात से बहुत ही प्रेरणा मिली होगी कि ऐसे ही घर गृहस्थी का काम करते हुए और अपने फल को आसपास हरा भरा भी हो गया और निश्चित तौर पर अर्थोपार्जन भी हो गया।
9: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो हमारी बहनें जो है, देख लीजिए शंकर भाई, कि अपने काम काज के साथ साथ अपने घर परिवार को सोचते हुए, समझते, उनके बारे में ख्याल रखते हुए भी और आय का उपार्जन भी करती हैं। बहुत ही प्रेरणादायी बात। अब शंकर भाई आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं एक मधुर सी पूर्वी।
9: आहा, चलिए सुनते हैं।
10: आधिया

0: जी शंकर भाई, बहुत ही अच्छी बेहतरीन लोक गायकी की एक मिसाल पूर्वी हमने सुनी। और अब शंकर भाई, हम लोग जानते हैं कि अमरूद के बाग हम कैसे लगाएं,
1: अच्छा
0: क्योंकि अमरूद जो है, आप ये देखिए कि जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है,
1: बिल्कुल।
0: और ये फल जो है स्वादिष्ट भी बहुत है और फायदेमंद भी
1: फायदेमंद
0: बहुत
1: भी
0: है,
1: है बिल्कुल।
0: और बहुत कम खर्च में इसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है, और आसानी से हम थोड़ी सी जगह में लगा सकते हैं।
1: बिल्कुल

0: तो इसके बाग से हम मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए हम अपने श्रोता भाई बहनों को बताते हैं कि अमरूद के बाग कैसे लगाएं, एक वार्ता के जरिए, पूर्व प्रसारित वार्ता के जरिए। आइए सुनते हैं।
1: अमरूद भारतवर्ष का एक प्रमुख फल है जिसकी खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। इसकी खेती प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा, बस्ती, फैजाबाद के साथ साथ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, गुजरात के उत्तरी एवं मध्य क्षेत्रों में तथा बिहार एवं झारखंड में सफलतापूर्वक की जाती है। अमरूद का फल ताजे रूप में खाने के अलावा परिरक्षित पदार्थ जेली, स्क्वैश, साइडर तथा जूस निकालने के बाद बचे गूदे से टॉफ़ी बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अमरूद के फलों में विटामिन सी, लौह एवं अन्य खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के 2009 के आंकड़ों के अनुसार भारतवर्ष में अमरूद का क्षेत्रफल लगभग 0.21 लाख हेक्टेयर तथा कुल उत्पादन लगभग 2.27 लाख टन एवं उत्पादकता 4.8 टन प्रति हेक्टेयर है। यूँ तो अमरूद की खेती सभी मिट्टी में की जाती है, परंतु उचित जल निकास युक्त बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त पाई गई है। मिट्टी जिसका पीएच मान सामान्य से थोड़ा कम हो अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह गर्म जलवायु का पौधा है और इसकी बागवानी आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के क्षेत्रों में आसानी से की जा सकती है। यह दूसरे फल की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अच्छी किस्म के फल और उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश अपना विशिष्ट स्थान रखता है और बिहार का स्थान दूसरा है। व्यावसायिक खेती के लिए अमरूद के पौधे वनस्पतिक विधि से तैयार किए जाते हैं। इस विधि से तैयार पौधे फलत जल देते हैं और किस्म की सत्यरूपता बनी रहती है। इस विधि में गुटी बांधना, दावा लगाना तथा चश्मा बांधना प्रमुख है। पौधा तैयार करने के लिए किसान भाई नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रायः पौधा तैयार करने का काम जून जुलाई में किया जाता है। अमरूद का बाग किसानों को अच्छा लाभ दे सकता है, क्योंकि अमरूद का पौधा जल्द ही फल देना शुरू कर देता है, इसलिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। अमरूद का पौधा छोटा कद का होता है, अतः इसे 5x5 मीटर की दूरी पर लगाएं। अमरूद के पौधे को आम, लीची, आंवला और कटहल के बाग में पूरक पौधों के रूप में भी लगा सकते हैं। पौधा लगाने का उपयुक्त समय जुलाई से सितंबर महीना है, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो वहां फरवरी मार्च में भी पौधा लगाया जा सकता है। पौधा लगाने के एक माह पहले निर्धारित दूरी पर 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें और उसे 15 दिन खुला छोड़ दें। फिर ऊपर की मिट्टी में 15 से 20 किलोग्राम गोबर की सरी खाद, 1 किलोग्राम करंज और नीम की खली तथा 600 ग्राम एनपीके का मिश्रण मिलाकर गड्ढे को अच्छी तरह भर दें। एक बरसात के बाद जब गड्ढे की मिट्टी दब जाए तब जुलाई के अंतिम या अगस्त माह में पौधा को गड्ढों के बीचों बीच लगाएं। पौधा लगाने के बाद उसके चारों किनारों की मिट्टी से अच्छी तरह दबा दें। पौधों के चारों तरफ एक थाला बनाकर 10-15 लीटर पानी दे दें एवं पौधों को पूर्णतया लगने तक समय समय पर पानी देते रहें। सर्दियों में 20-25 दिनों पर तथा गर्मियों में 10-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना उपयुक्त है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुराई एवं घास निकालते रहना चाहिए। यदि अमरूद के पौधे को बिना सगाई या कटाई छटाई के यूं ही छोड़ दिया जाए तो वे कुछ वर्षों के बाद बहुत बड़े हो जाते हैं, जिसका प्रबंधन करना कठिन होता है। ऐसे पौधों का फलन क्षेत्र घट जाता है तथा भीतरी हिस्से में कतई फल नहीं लगते। रोपण के 2-3 माह बाद जमीन से 60 सेंटीमीटर की ऊँचाई पर पौधों को काट दिया जाता है ताकि कटे हुए स्थान के नीचे नई वृद्धि उत्पन्न हो सके। 3-4 समान दूरी वाले प्रोहों को तने के चारों ओर छोड़ दिया जाता है, जिससे पौधों की मुख्य संरचनात्मक शाखा का निर्माण हो सके। कटाई के बाद इन प्रोहों को 4-5 महीने तक बढ़ने दिया जाता है, जब तक कि ये 40-50 सेंटीमीटर के नहीं हो जाते। इन चुनिंदा प्ररोहों को इनकी लंबाई के 50% तक काटा जाता है, जिससे कि कटे हिस्से के ठीक नीचे से कलों का पुनः सृजन हो सके। नए सृजित कलों को 40-50 सेंटीमीटर लंबाई तक बढ़ने देने के 4-5 माह बाद उनकी पुनः कटाई छटाई की जाती है। इसे मुख्य रूप से पौधों के वांछित आकार की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कटाई छटाई का कार्य पौध रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान भी जारी रखा जाता है। 2 वर्षों के बाद कैनोपी की परिधि के भीतर वाली छोटी शाखाएं सघन तथा सशक्त ढांचे का निर्माण करती है। सही तरीके से सघाई तथा छटाई द्वारा तैयार किए गए पौधों का व्यास 2 मीटर तथा ऊंचाई 2.5 मीटर तक सीमित रखने हेतु प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी तथा मई जून में कलों की छटाई की जाती है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग से अच्छी गुणवत्ता युक्त अधिक फल उत्पादन के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग आवश्यक होता है। आवश्यक खाद एवं उर्वरक को 2 भाग में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में तथा दूसरा भाग अक्टूबर माह में देना चाहिए। जून जुलाई में गोबर की सरी खाद, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा तने से 1 मीटर दूरी पर गोलाई में 15 सेंटीमीटर गहरी नाले में देकर मिट्टी से ढक दें। यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में पेड़ों के छत्रक के नीचे देकर मिट्टी में मिला दें। यदि बरसात नहीं हो रही हो तो खाद के बाद पानी देना आवश्यक होता है, जिससे नमी बनी रहती है। किसान भाइयों, अमरूद के 1 साल पुराने पौधों को 15 किलोग्राम गोबर की सरी खाद, यूरिया 250 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट की 375 ग्राम एवं पोटेशियम सल्फेट की 100 ग्राम मात्रा व्यवहार करें। इतनी मात्रा को पौधों के उम्र से गुना कर ज़्यादा उम्र के पौधों को खाद एवं उर्वरक की मात्रा व्यवहार करें। ध्यान रहे कि 5 साल के उम्र के पौधों को जो भोजन दे रहे हैं उसे ही और ज़्यादा उम्र के भी पौधों को भी वही मात्रा दें। किसान भाइयों, अच्छी उपज अमरूद का लेने के लिए पौधों को समय समय पर कीट एवं रोग से मुक्त रखना आवश्यक है। बरसात में फल के अंदर पिल्लू हो जाते हैं, जो फल मक्खी कहते हैं होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोगर दवा का 0.05% घोल का छिड़काव 10 दिनों के अंतर पर छोटे फलों पर 2-3 बार करें। छिलका खाने वाली इल्ली पौधे के छिलकों को खाकर तना और शाखाओं में गहरी सुरंगें बनाती हैं, जो प्रायः शाखाओं के जोर पर दिखाई पड़ती है। नियंत्रण के लिए रुई को पेट्रोल में भिंगोकर छेदों में भर दें। अमरूद का उकठा रोग बहुत खतरनाक है। इससे प्रभावित पौधों के शाखाओं पर का एक एक कर ऊपर से सूखना शुरू होकर नीचे तक सूख जाती है। रोगग्रस्त सूखी टहनियों को शीघ्र काटकर निकाल दें। कटाई ऐसे करें कि साथ में 10 से 20 सेंटीमीटर तक हरी टहनी का भाग भी कट कर निकल जाए। उपचार के लिए 20 से 30 ग्राम बेवेस्टीन को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति पौधे के हिसाब से पौधों की जड़ों के पास डालें। एक वर्ष में 4 बार क्रम से मार्च, जून, सितंबर, अक्टूबर में यह उपचार करें। साथ ही साथ 15 ग्राम जिंक सल्फेट और 5 मिलीलीटर मेटासिस्टॉक्स को 5 लीटर पानी में घोलकर वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में पौधों पर छिड़काव करने पर लाभ रहता है। बाग की उपज, बाग की देखरेख, पौधों की किस्में मौसम पर निर्भर होती है, परंतु 8 से 10 वर्ष के पूर्ण विकसित पेड़ से 1 से 1.5 क्विंटल फल प्रतिवर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: जी, बहुत ही अच्छी जानकारी शंकर भाई हम लोगों को प्राप्त हुई। और ये जो है अमरूद जो है निश्चित तौर पे हमारे भोजन का हिस्सा भी है। आप देखिएगा कि हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं, नमक के साथ लगा के भी खा सकते हैं, इसकी जैम जेली बनाकर भी हम खा सकते हैं, और बहुत इसको उपजाना भी बहुत आसान है। तो निश्चित तौर पे हमारे जितने श्रोता भाई बहन है उनको बहुत ही लाभ पहुंचा होगा।
2: एक बात और बता दूं जल्दीबाजी में जी, कि अमरूद को यदि आपको सर्दी हो रही है, नाक से पानी चू रहा है, तो आप नाश्ता करने के बाद उसको बढ़िया से धो लीजिए और छिलका सहित चबा के खा लीजिए, और 1.5 घंटे तक पानी मत पीजिए।
0: अच्छा।
2: उसमें जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो आपके नाक से पानी चूना बंद कर देगा।
0: बहुत ही बढ़िया शंकर भाई, और हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। विदा दें सबको, कमली का नमस्कार।
2: सबको शंकर का भी नमस्कार।

0: प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद टुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की दी चेतावनी। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। और अब समाचार विस्तार से। राज्य की दो राज्यसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस मतगणना में सबसे चौंकाने वाला मोड़ 3 वोटों का अमान्य होना रहा। अंतिम परिणामों के अनुसार विजयी प्रत्याशी वैद्यनाथ राम को 31 वोट और परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को केवल 19 मतों से संतोष करना पड़ा। परिमल नाथवानी की जीत पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके नाथवानी के अनुभव का लाभ राज्य को फिर मिलेगा।
1: एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को और साथ ही तमाम 81 विधायकों को भी हमारे ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। तो इसे आप समझ सकते हैं, झारखंड के जो मतदाता है, खास करके हमारे जो विधायक, काफी सुलझे हुए हैं, काफी समझदार हैं। परिमल नाथवानी ने 8 से 14 और 14 से उनका कामों को लोग देख चुके हैं, उनको लोग नजदीक से देखे थे और उन्होंने भी झारखंड को देखा है और झारखंड के लोगों से भी उनका अच्छा परिचय है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे, जिससे देश भर के 15 लाख से अधिक लाभार्थी सीधे लाभान्वित होंगे। झारखंड में भी इसके प्रादेशिक कार्यक्रमों की भव्य तैयारी है। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मुख्य अतिथि होंगे, जबकि बोकारो स्टील लिमिटेड के सभागार में होने वाले कार्यक्रम में सांसद डुल्लू महतो शिरकत करेंगे। गुमला के केंद्रीय प्रभारी अधिकारी अमित सतीजा ने आकांक्षी प्रखंड डुमरी का दौरा कर समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण को 100% करने और डॉक्टरों की कमी दूर करने के कड़े निर्देश दिए। बच्चों में कुपोषण पर चिंता जताते हुए उन्होंने रेडी टू ईट पोषण वितरण प्रणाली को तुरंत दुरुस्त करने को कहा।
2: जो हम लोगों ने कार्य किया है नीति आयोग के तत्वाधान और जिला प्रशासन के नेतृत्व में, उसमें जो गांव वालों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें कि बकरी पालन और मशरूम की खेती और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव विकास के तौर पे जो पहल स्कीम है, उसमें गांव वालों को देख के बहुत अच्छा लगा। गांव वालों को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 3 दिनों में देश भर में 1,47,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख PNG कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं।

0: 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
1: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने जंगल की सीमाओं के पास पत्थर खनन और स्टोन क्रशर पर रोक लगाने के झारखंड हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी चुनौती याचिका वापस ले ली है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
2: क्या आप खेती में नई तकनीक, नए अवसर और आधुनिक खेती किसानी की दुनिया को करीब से देखना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल पर झारखंड में पहली बार आयोजित होने जा रहा है एक भव्य खेती किसानी महाकुंभ, झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 रांची के मोराबादी मैदान में 16 से 18 जून तक, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। इस मेले में किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की लाइव डेमो, नई तकनीकों की जानकारी, किसान संवाद, विभागीय तकनीकी सत्र और स्टार्टअप के नए आइडियाज देखने को मिलेंगे। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, बागवानी, सहकारिता और समिति विभाग भी रहेंगे आपके साथ, क्योंकि अन्नदाता का सम्मान झारखंड का अभिमान।
3: झारखंडी व्यंजनों का स्वाद, आकर्षक प्रदर्शनी और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आइए झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 में, क्योंकि तकनीक से तरक्की, हर खेत में समृद्धि। और हाँ, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: कृषि व्यापार मेला 2026 ये उत्सव नहीं, महा उत्सव है, क्योंकि झारखंड में होने जा रहा है कृषि व्यापार मेले का भव्य आयोजन, जहां पारंपरिक खेती को मिलेगा आधुनिक अवतार और झारखंड के किसानों के लिए होगी एक नए युग की शुरुआत।
5: भाइयों एवं बहनों जोहार, झारखंड सरकार की ओर से कृषि मेला आयोजित हो रहा है। सरकार का यह प्रगतिशील सोच ये मेले में दिखेगा। मैं कृषि से जुड़े सभी उद्योगों को, इकाइयों को और निर्यात करने वाले लोगों को आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग इस मेले में उपस्थित हों। धन्यवाद, जोहार।
4: इस 3 दिवसीय कृषि व्यापार मेले का हिस्सा बने और देखें झारखंड के कृषि उद्योग की बदलती तस्वीर। 16, 17 और 18 जून को रांची के मोराबादी मैदान में कृषि व्यापार मेला 2026।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजधानी रांची के आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस ऑपरेशन के दौरान एक संदिग्ध घायल हुआ है, जिसका फिलहाल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सिटी एसपी पारस राणा ने इसकी पुष्टि की है।
7: रांची पुलिस के द्वारा जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया थी, और जब थाना में उनको पूछताछ के लिए रखा गया था तो उसी क्रम में जो एक आरोपी है जिसने बाथरूम जाने का बहाना किया और फरार हो गया था, और उसके पश्चात उसको दोबारा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने दूसरी बार फिर से उस भागने का प्रयास किया। इसमें इस बार उसने पुलिस का जो वेपन था उसको भी छीन कर भागने का प्रयास किया, और उसी प्रयास में जब पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई तो उसके द्वारा भी 2 से 3 राउंड फायर किए गए हैं। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई है, उसमें उसके पैर में गोली लगी है।
1: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने इरबा स्थित IQ डिजिटल परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 22 से 24 जून तक जारी रहेगी। भाकपा के झारखंड राज्य परिषद सदस्य और गुड्डा जिले के वरिष्ठ मजदूर नेता कॉमरेड रामस्वरूप पासवान का कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद आज निधन हो गया। उनके निधन पर भाकपा झारखंड के राज्य परिषद ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए पार्टी कार्यालय में झंडा झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कोडरमा जिले में तैयारियां जोरों पर है। इन तैयारियों के बीच झुमरी तलैया के रहने वाले एक दंपति की अनूठी पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदीप सुमन और सुषमा

0: सुमन नामक यह दंपत्ति पिछले 22 वर्षों से लगातार योग के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस दंपत्ति ने अब तक क्षेत्र में 10,000 से अधिक योग प्रशिक्षक तैयार किए हैं। योगी सुषमा सुमन ने बताया कि वे विशेष रूप से बुजुर्गों और महिलाओं को नियमित योगाभ्यास करा रही हैं।
1: एक ऐसा समय था कि जब कोई योग के बारे में जानता भी नहीं था, और धीरे धीरे प्रचार प्रसार करते आज पूरे कोडरमा जिला में लगभग 10,000 से ज्यादा योग शिक्षक भी तैयार हो गए हैं, जो जगह जगह योग क्लास लगाते हैं। लगभग 22 वर्ष से मोहल्ले मोहल्ले में जा करके प्रतिदिन योग सिखा रही हूँ।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत 17 जिलों में आज और कल भारी बारिश, तेज आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद और देवघर जैसे जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की प्रबल आशंका व्यक्त की है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मुकाबले में झारखंड की दीपिका सोरेंग ने शानदार गोल दागा। दूसरी ओर राज्य की उभरती साइकिलिस्ट सरिता कुमारी का चयन वर्ल्ड स्पोर्ट्स एक्सपोजर टूर के लिए भारतीय टीम में हुआ है। वह एक महीने तक यूरोपियन सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित। झामुमो के वैद्यनाथ राम और एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी ने दर्ज की शानदार जीत। प्रधानमंत्री कल 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का करेंगे वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित होंगे कार्यक्रम। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद भुल्लू महतो होंगे मुख्य अतिथि। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के स्टोन क्रशर और पत्थर खनन पर रोक के आदेश को रखा बरकरार। झारखंड में जंगलों और प्राकृतिक इकोसिस्टम को बचाने की जरूरत पर दिया विशेष जोर। राज्य के 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने रांची, हजारीबाग और धनबाद सहित कई इलाकों में आज और कल वज्रपात और तेज आंधी की चेतावनी जारी की। और FIH महिला नेशंस कप में भारतीय टीम ने उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। झारखंड की दीपिका सोरेंग ने दागा शानदार गोल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार हैं आशा देवी। आइए श्रोताओं कार्यक्रम में। कार्यक्रम में आइए इनसे सुनते हैं सबसे पहले ये देवी गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीत कार्यक्रम। कलाकार थी आशा देवी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: यार, कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
5: TLI है ना?
6: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि छात्राओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए राज्य के विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। वे पटना के गांधी मैदान में बिहार रक्षा वाहिनी के 9 नामांकित गृह रक्षकों के पासिंग आउट परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि करीब 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल से पुलिस दीदी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की, जिससे छात्राओं को सुरक्षित और सकारात्मक माहौल मिल सकेगा।
1: विशेष तौर पर जो बालिकाएं के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके सामने विशेष सुरक्षा देना है। लगभग 5000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कॉलेज और स्कूल के सामने हमारी जो बहने हैं, छोटी छोटी बहने, पुलिस दीदी उनका संरक्षण करने का काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी का सशक्त और आधुनिक स्वरूप राज्य की प्रगति, विकास और बेहतर कानून व्यवस्था का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार के निर्माण में पुलिस बल तथा गृह रक्षा वाहिनी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है तथा कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा।
1: बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथियों। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो, इनका दायित्व तो बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है। और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा।
0: मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1121 रुपए किया गया है। उन्होंने 9 प्रशिक्षित जवानों से अनुशासन, निष्ठा और जन सेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह की आज जयंती है। इस अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विभूति की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर पटना के अनुग्रह नारायण कॉलेज का स्थापना दिवस भी आज मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था और बुनियादी संरचना विकसित करनी है, जिससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और सशक्त हो सके। उन्होंने कहा, सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े, बल्कि उन्हें अपने ही राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हों।
1: हमने यूनिवर्सिटी बढ़ाया, कॉलेज बढ़ा रहे हैं, अब ये व्यवस्था खड़ा करनी है। यदि डीन यूनिवर्सिटी या किसी ओपन यूनिवर्सिटी की भी व्यवस्था इन कॉलेज में देनी पड़ेगी, मैं दूंगा, लेकिन पूरी संरचना खड़ा करना है। हमारे लोगों को पढ़ाना है, किसी बाहर के लोगों को नहीं पढ़ाना।
0: केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर पटना आ रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्री वैष्णव सुबह पटना पहुंचेंगे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया पटना का दौरा करेंगे, जहां वो सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री पाटलिपुत्रा जंक्शन पहुंचेंगे और वहां से रेल मार्ग से छपरा जाएंगे। छपरा रेलवे स्टेशन पर वो छपरा आनंद विहार टर्मिनल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर श्री वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ आनंद विहार टर्मिनल रेल सेवा तथा दोरीघाट ओडिहार रेल सेवा के वाराणसी तक विस्तार का शुभारंभ भी करेंगे। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री मढ़ौरा स्थित रेल इंजन कारखाने का दौरा करेंगे और वहां 91 निर्यात लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासन और रेलवे की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आशीष रंजन के साथ समाचार कक्ष से मैं निधिश्री।
0: वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बिहार के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। इस संबंध में विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उनकी नियुक्ति की है। श्री संजय पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इससे पहले वे भारत सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने श्री संजय को नया महाधिवक्ता नियुक्त किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। श्री सिंह मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल बेमिसाल केवल नारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के कार्यों की वास्तविक उपलब्धियों का प्रतिबिंब है। श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास कार्यों को और गति देंगे। भारत नेपाल सीमा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर आज मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में नो मैन्स लैंड, गायब सीमा पिलर के पुनर्गठन, सीमावर्ती क्षेत्रों से शीर्ष अतिक्रमणों को तत्काल हटाने तथा संदिग्ध वित्तीय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान बताया गया कि सीमा क्षेत्र में चिन्हित 1,359 अतिक्रमणों में से 1,349 को हटाया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। शीर्ष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: और इस गीत के बाद

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संकल्पों को पूरा करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री आज पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के पिपलावा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से राज्य सरकार के सहयोग पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने और लोगों की समस्याओं को पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की अपील की ताकि उनका त्वरित समाधान हो सके।
1: भाजपा के कार्यकर्ताओं से इतना आग्रह करूंगा कि जो गरीबों को दिक्कत है उसको सहयोग पोर्टल पर जरूर ले जाने का, क्योंकि गरीब का यदि भला हो गया तो वो जीवन भर आपको याद रखेगा साथी। इसलिए साथियों मैं फिर से यही आग्रह करूंगा कि मोदी जी ने इस भारत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है और आप लोगों को भी इस काम को आगे बढ़ाना है।
0: श्री चौधरी ने सीतामढ़ी में निर्माणाधीन माँ सीता मंदिर का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2029 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरभ तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में मॉनसून अब भी कमजोर बना हुआ है। हालांकि स्थानीय कारकों के प्रभाव से राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया में सबसे अधिक 69.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं विभाग ने पटना सहित 15 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 जून राज्य के बेगूसराय, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया, नालंदा, नवादा, पटना एवं शेखपुरा जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। इधर 42.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में कर्तव्यहीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में शाहबाद प्रक्षेत्र के DIG डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भोजपुर SP राज की अनुशंसा पर शाहपुर थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार सहित 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रदेश के 6 जिलों में 20 जून से पासपोर्ट सेवा केंद्र काम करने लगेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण के मोतिहारी, पश्चिम चंपारण के बेतिया, अररिया के फारबिसगंज, गोपालगंज, सिवान और गया जी में यह सेवा केंद्र खोले गए हैं। रोहतास जिले के धनगाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी के सहयोग से प्राकृतिक खेती पर जिला कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में किसानों को जीवामृत, बीजामृत और फसल विविधीकरण जैसी तकनीकों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विभिन्न प्रखंडों से आए लगभग 250 किसानों और जीविका समूह की महिलाओं ने भाग लिया तथा प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लिया। वहीं सारण जिले के सोनपुर विधानसभा क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग में प्राकृतिक खेती विषय पर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके लाभों से अवगत कराया गया। मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान दरभंगा के विभिन्न परीक्षा केंद्रों से 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित नवादा, गया, अरवल, रोहतास, भोजपुर और भागलपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों के पास से ब्लूटूथ, वॉकी टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। मामला को लेकर जिले के विभिन्न थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 102 ग्राम स्मैक और एक बिना नंबर की स्पोर्ट्स बाइक बरामद की है। अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे बसमतिया थाना क्षेत्र से पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 119 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। रोहतास के करगर थाना क्षेत्र के बाउर गांव में तालाब में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों और कॉलेजों के आसपास पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कल एक दिवसीय बिहार दौरे पर, कई रेल परियोजनाओं की देंगे सौगात। वरिष्ठ अधिवक्ता एसटी संजय बने राज्य के नए महाधिवक्ता, विधि विभाग ने जारी की अधिसूचना। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान बेगूसराय, लखीसराय और मुंगेर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
1: किशनगंज जिले में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं और धान की खेती की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या भी देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ को देखते हुए संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी प्रखंडों में 16 से 18 जून तक आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही आमजन की शिकायतों और समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने टेढ़ागाछ और बहादुर प्रखंड के शिविरों का निरीक्षण किया, लाभार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरित किए तथा अधिकारियों को लंबित आवेदनों और शिकायतों के त्वरित निपटारे का निर्देश दिया। शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना सहित कई योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान की जा रही है। पिछले दिनों जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।
2: पीएम स्वनिधि योजना में 74 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी परेशानी के लोन मिला। तो मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना जिसमें रोजगार मिला। इसलिए मित्रों, ये पीएम किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 4.3 करोड़ जो है उनके खाते में अभी तक ट्रांसफर किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को, माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को फायदा मिला। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.5 करोड़ खाते खोले गए। इसलिए मित्रों, 2014 से 2026 तक 12 वर्ष तक प्रगति पथ पर अग्रसर भारत सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के रूप में उभर कर निकला है।
1: इधर जिले में हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बिहार सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए 24.70 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परियोजनाओं के लिए 5,45,97,100 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का उपयोग रनवे विस्तार और एयरपोर्ट की तकनीकी सुविधाओं के विकास में किया जाएगा। नागरिक उड्डयन विभाग ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि रनवे विस्तार से किशनगंज सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि भविष्य में बड़े विमानों की आवाजाही का मार्ग भी प्रशस्त होगा। जल्द ही जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करेगा। बीते दिनों जिले में लंबे समय से हड़ताल पे चल रहे 30 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण यह कार्रवाई की है। जारी आदेश के अनुसार पंचायत सचिवों की अनुपस्थिति से पंचायत स्तर पर कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे थे, जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, वंशावली बनाना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सत्यापन और पंचायतों के दैनिक प्रशासनिक कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त सिस्टम राज्य वित्त आयोग योजना, 15वीं केंद्र वित्त आयोग योजना और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बाधित हो रहे थे। किशनगंज जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत स्कूलों, सरकारी कार्यस्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर पौधारोपण किया गया। जिला प्रशासन, वन विभाग, नमामि गंगे समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा सशस्त्र सीमा बल की ओर से विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया।
0: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार हैं उदय नारायण झा। आइए कार्यक्रम में श्रोताओं, उनसे सबसे पहले सुनते हैं नीरज का लिखा ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार थे उदय नारायण राय। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आइए आपको ले चलते हैं रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम में, जहां सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म दिल का क्या कसूर का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संदीप है नदीम श्रवण का।
1: Ah!

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की आवाज़ में फिल्म बाजीगर का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे रनी मलिक ने, संगीत था अनु मलिक का।

0: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for rupees 10.99 lakh with a battery EMI of just rupees 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म कहो ना प्यार है का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं सावन कुमार ताक ने, संगीत दिया था राजेश रोशन ने।

0: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
1: तिलका मांझी तो बहुत।
0: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
2: बख्शी जगबंधु तो
1: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: दोस्तों रजनीगंधा कार्यक्रम में अब सुनिए कुमार सानू की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

दोस्तों, रजनीगंधा कार्यक्रम में यह सिलसिला अब अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है। तो सुनते हैं फिल्म बेवफा सनम से उदित नारायण की आवाज़ में ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं योगेश ने, संगीत था निखिल विनय का।

और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव में है, तो सुनिए रजनीगंधा कार्यक्रम का आज का आखिरी गाना, कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म आशिकी से, जिसके बोल लिखे थे मदन पाल ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे रजनीगंधा फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मिंच ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएससीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
6: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था, हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
3: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at VivaTech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparation for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. 4 Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation.

0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में डायरेक्टर उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि माल्टा के झंडे वाला एलएनजी जहाज दिशा, जिस पर 62,370 मैट्रिक टन एलएनजी है, कल सुबह गुजरात के दहेज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ये जहाज पीर को आबनाए हुरमुस से निकला था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक बड़े नए जाब्ते को मंजूरी दी है, जिसके तहत सोशल मीडिया के लिए कम से कम उम्र 15 बरस तय की गई है। इस बड़े कदम का मकसद डिजिटल स्पेस में बच्चों के तहफ्फुज़ को मुस्तहकम करना है। शेख मोहम्मद बिन राशिदुल मख्तूम की सदारत में मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने यह फैसला किया। इस करारदाद के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और चलाने की इजाजत नहीं होगी और न उन्हें इंटरेक्टिव फीचर्स से, जैसे किसी मवाद को पोस्ट करने, उस पर कमेंट करने या उसे शेयर करने या पब्लिक ग्रुपों को ज्वाइन करने तक रसाई हासिल होगी। 15 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों को महदूद रसाई हासिल होगी, लेकिन वो सख्त निगरानी में ही रसाई हासिल कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स को इन जाब्तों पर पूरी तरह से अमल करने के लिए 12 महीने का वक्त दिया गया है। चीन के गियांग में जारी आलमी मुक्केबाजी कप 2026 में आज भारत की मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। मीनाक्षी ने खवातीन के 51 किलोग्राम जुमरे के 16 प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में पोलैंड की नटालिया को 5-0 से शानदार जीत हासिल की। 51 किलोग्राम के खवातीन के जुमरे में मीनाक्षी का मुकाबला कजाकिस्तान के अलाउ बाल्की बेकोवा से, जबकि 65 किलोग्राम जुमरे में स्नेह का मुकाबला पोलैंड की किंग करोका से होगा। क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम जुमरे में प्राची का मुकाबला चीनी ताइपे की चैंग यू यांग से होगा। 55 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में निखिल का मुकाबला आजरबाईजान के अमीन मोहम्मद ज़ादा से होगा। खवातीन मुकाबलों में 48 किलोग्राम जुमरे में ज्योति और 85 किलोग्राम में जुगनू ने पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत के लिए तमगे को यकीनी बना लिया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी से तरक्की की राह सिर्फ इसी सूरत में हमवार होती है जब इसकी रसाई सब तक हो। उन्होंने पेरिस में वीवा टेक समिट में भारत की तेज रफ्तार डिजिटल कायापलट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के बड़े कारोबारी लीडरों के साथ भारत में सरमायाकारी के मौके और तौसी के मंसूबों पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर-ए-तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के इतवार को होने वाले दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आला सतह की एक मीटिंग की सदारत की। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमरीका के दरमियान 9 दस्तखत शुदा मफाहमत नामों को एक तारीखी दस्तावेज करार दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनाए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म सरस्वती चंद का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं इंद्रवर ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब आगे सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कोरा कागज का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे MD हशमत ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म बीवी हो तो ऐसी का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे समीर ने।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में फिर से बढ़ते हैं एक कदम आगे और आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म ब्लैकमेल का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं रविंद्र कृषेन ने, संगीत है आनंद जी कल्याण जी का।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म कारवां का ये गाना, जिसके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था आर डी बर्मन का।

और अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म लेकिन से। इस गाने के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में साहित्य परवेज से सुनिए सितार वादन राग झिंझोटी में।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में साहित्य परवेश से सितार वादन राग झिंझोटी में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। तो दोस्तों, इस सफर में आइए आपको ले चलते हैं और सबसे पहले सुनाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म फकीरा का ये गाना। इस गाने के बोल लिखे थे रविंद्र जैन ने, संगीत भी था रविंद्र जैन का।

दोस्तों, फिल्मी गीतों के इस सुहाने सफर में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको सुनाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं मजरूह ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

दोस्तों, इस सुहाने सफर पे आपको ले चलते हैं अगले गाने की ओर और सुनाते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म यादों की बारात से ये गाना, जिसके बोल लिखे हैं मजरू ने, संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर, और इस सफर में आगे बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। और ये गाना है फिल्म आराधना से। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, इस गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, और संगीत है SD वर्मन का।

दोस्तों, फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुहाना सफर का अंतिम गीत सुनिए। फिल्म अमर अकबर एंथनी से इस गाने को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों

ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों

प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

के 11:10 हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी आज की यह सभा यहीं समाप्त होती है। हम अपनी कल की सभा के समस्त कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:48 पर पुनः उपस्थित रहेंगे। अभी हमें दे इजाजत, शुभ रात्रि, जय हिंद।